0: ऊपर कालिए ऊपर कालिए
1: थोड़ी जित सेवे सुख पाइए सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों घालिए मंदा मूल की जे दे लमी नदर निहालिए ज्यो साहेब नाल नहारिए ते वेहा पासा ढालिए पिछला हे ऊपर कालिए पिछला हे ऊपर कालिए।

0: नानक साकर महार साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
1: एक नहीं चकनी जित भाव खसम ना जाए नानक सेवक कर।

0: हर जुग जुग भगत उपाया कर प्रहलाद कराया
1: श्लोक महला पहला।

0: नदर करे महला दूजा
1: आपे साजे करे आप जाइब रखे आप तिस विच जंतु पाए कह देखे था पुफा किसनु कहिए लाल का सब किछ आपे।

Hallelujah.

जो से सुन रहे थे सुफियाना कलाम इस दिन आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तीन दी पंजाबी सेवा दी पहली सभा इत्थे समाप्त हुंदी है। साडा अगला प्रसारण कुछ पला बाद एफएम चैनल तों।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 पिनवर सेखा सवाए तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिजिटल सगना है प्रोग्राम शुरू थी चुका है डिटेल्स क्लियर नजर आए थोड़ी देर में तमा हमेशा भगत कोराम साहब जन जे सदाबार आवाज में कलाम बुधना तेखा पर तफसरो पेश कंदो आवा प्रोग्राम नशर कयो वेंदो सजन तो के खबर केड़ी खास खास खबरों प्रोग्राम जे आखिर में नशर कई वेंदियूं प्रोग्राम की डिटेल्स आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुधा हिंसर छो भगत कोराम साहब के बुधूँ

तमाम भगत कौरम साहब जन जे मिठड़े आवास में कलाम दी रहे आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है हिर पेश है तबसरो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल जिका के एक हलाक थियल अवामी क्षेत्र की कंपनी है सा इन वक्त पेंजे पान के बीहर मुतासर कंदर जिंदा कहानी लिखी रही है। यह सब कुछ थी रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरप्राइज है छोजो मैस बिन साल के अंदर उन्हें काफी तरक्की हासिल कई है। डॉक्टर चंद्रशेखर प्रेमसानी इन तब्दीली के ललकारींदर ए दिलजा कंदर करे कोठो है। हलाक कंदर क्षेत्र के रोशनी में आंदो जड़ो के कम करण की सकाफत है। इनका अलावा टावर्स की हालतों पुठते पैल बुनियादी ढांचो इन सभी में तब्दीली आंदी वही है। गुरु मौसलात ए रूरल डेवलपमेंट के सूबाई वजीर अवाम के बीएसएनएल में आंदल तब्दीली बाबत जान डी। डॉक्टर पेमसानी जा चो तो अस बीएसएनएल के वरी खां सुजाग करण की सस्तेवार कोशिश कई है। इनमें खानगी खेत्र जड़ो डिसिप्लिन रखो है। नतीजा तह सी अगे आन सदन फाइनेंस मजबूत आन टेक्नोलॉजी डेही है पूरे भारत भर के दूरान इलाकन के पान में जोड़े रखो है। बीएसएनएल की तरक्की की कहानी के वर्णिते सूबे वजीर बुधा तो फाइनेंशियल टर्न अराउंड मुतासर कंदर है। बीएसएनएल जो रेवेन्यू मैस बिन साल के अंदर वी का पंजी सैकड़ो वी है। सो एक हजार करोड़ में वी कर पंजी हजार करोड़ रुपये से पहुंची वो है। इन सब का अहम गाल इब्ता सा पचास करोड़ रुपये में वी कर लगभग सत हजार करोड़ रुपये से पहुंची वही है। तेमा पतो तो पवे कि यो इदारो न फकत मुनाफे के हासिल कर रहा है पर बेहतर नमूने कार्रवाई कर रहा है।

वापार खांदो वियो ऐं सभ खे बाक़ायदा जाचियो वियो ऐं ज़िमेवारी पिण मुक़ररु कई वई। इन सभ में हिकु मैल जो पथर आहे, ॿी 4G टेक्नोलॉजी BSNL पारां आरणु। ॿुधायो त BSNL ॾेही 4G टेक्नोलॉजी 1,00,000 टावर्स में आंदी आहे सुबुह महज़ 1 साल जे अंदरि, ऐं हिन वक़्तु हू आलमी दर्जनि ते बराबरि ते बीठा आहिनि। हिन वक़्तु भारत आलम जो 5 नंबर मुल्क आहे आलम में जंहिं ॾेही 4G टेक्नोलॉजी तयारु कई आहे। अवामी अक़ीदे खे ॿीहर खां बरपा करण जे मौज़ू ते वज़ीर शफ़ी राय ज़ाहिर कयो। हुन चयो त BSNL में इहा तब्दीली को रातो राति कोन आई आहे ऐं जेके टैरिफ्स आहिनि से खांगी प्लेयर्स जे भेट में तमामु घटि आहिनि। हिकु रुपए में BSNL पूरे भारत भर में पोस्ट ऑफिस ज़रिए सिम ॾेई रही आहे ऐं माण्हू इन सेवा खे आज़माए सघंदा आहिनि। BSNL भारतीय पोस्ट सां गॾिजी करे कम करे रहियो आहे ऐं ॻोठाणनि इलाइक़नि में सिलाई आणे रहियो आहे, जिते पोस्टल खाते जा मुलाज़िम BSNL जे सुधारियल सेवाउनि बाबति आवाम में सुजाॻी आणे रहिया आहिनि। डॉक्टर टोमसन जी रोशनी में हूंदो त इन सभु जो हिकु अहम नतीजो आहे ॿुढ़ा ऐं क़बीलाई इलाइक़ा लॻभॻि 35,000 ॻोठनि में, जिते अॻे कंडाको कोन हूंदो, जिते टेक्नोलॉजी कोन हूंदी, तंहिंखे हाणे 4G नेटवर्क सां ॻंढियो वियो आहे। इन्हनि इलाइक़नि में 25,000 खां बि वधीक टावर्स लॻाया विया आहिनि ऐं 10,000 टावर्स हिन वक़्तु प्रोग्रेस में आहिनि। डॉक्टर पवन सिंह ज़ोर ॾींदे चयो त दूर मुआसरा बुनियादी ढांचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे 2047 ताईं विकसित भारत जे दूरांदेश तहत आहे। इहो महज़ टावर्स ऐं केबल्स जी ॻाल्हि कान्हे, पर अवाम में तब्दीली ऐं अवामी इदारनि जे सकाफ़त बाबति तब्दीली आणणु आहे। सवाई वज़ीर ॿुधायो त ईंदड़ 5 सालनि में BSNL में तमामु घणी तब्दीली ईंदी ऐं उहा 3 अखरनि ते कमु कंदी, साए अक़ीदो, फ़ख़्रु ऐं मुनाफ़ो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। अलावा तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड रेडियो फ्री डिश ते बुधी सकंदा आहियो।

नुकसान थियो, हिकु बोगी बिल्कुलु बुरी तरह सां तबाह थी वई, अञा घणेई माण्हू ज़ख़्मी बि थिया जिन जो को अतो पतो कोन्हे को, जिन जो को सही अंग पण कोन्हे। लेकिन दहशत अंगेज़ी जा इहे वाकिया अञा बरक़रार रहिया त न फ़क़त घणो नुक़सान थींदो पर पाकिस्तान में सरमाएदारी अची पण कोन सघंदी, तरक़ियाती रेखाऊं बंदि पयूं आहिनि ऐं आवाम वधि में वधि भोगे रहियो आहे। आम शहरी खे सिक्योरिटी कान्हे का ऐं हुन लाइ ज़िंदा रहण महाल थी पियो आहे। आसाम एक्सप्रेस में शायदि एडिटोरियल ॿुधी रहिया, टाइटल हो कोयटा में ट्रेन हमिलो।

सिंध में औरतों सां जेको बुरो हाल कयो पियो वञे तंहिं सां वाबस्त आहे एडिटोरियल शाया थियो आहे सिंध एक्सप्रेस में। उनवान आहे गला यारो कारा इल्ज़ाम जे वर चढ़ियल औरत। एडिटोरियल में लिखियलु आहे कि साल 2026 सिंध जी औरतुनि लाइ हिकु अहिड़ो साल साबित थी रहियो जंहिं में वॾे अंग में वॾे

तादाद में औरतूं कतल थे वियो आहिनि। सभिनि औरतुनि खे कारी करे मारण जा वाकिया ॾींहों ॾींहुं वधी रहिया आहिनि ऐं इन जी सूरत हाल अञा ॾींहों ॾींहुं वधीक बदतर थी थींदी वञे, छो त इन्हनि वाकियुनि खां पोइ मामूली कानूनी कार्रवाई पण नथी नज़र अचे। कातिल ॾोह जो एतराफ़ करे गिरफ़्तार थिए थो, पर पंहिंजे पाण खे गैरती मुड़ुसु चवाराए बिना कंहिं पछताए जे औरत खे क़तल करण खां पोइ मुतमिन नज़र थो अचे। सभिनि औरतुनि खे मारण या कराइण जो इल्ज़ाम हणणु हाणे हिकु आम मामिलो थी वियो आहे। ताज़े सखर में हिकु अहिड़ो मामिलो आयो, इन खां अॻु में पिण अहिड़ा मामला आहिनि जंहिं खेसि अदालत में पेश कयो वियो त हुन पाण खे बरी कराए छॾाए वरितो। अॻिते लिखियल आहे, सिंध में औरतुनि ते कारण जो इल्ज़ाम हणी मारण को मसइलो कोन रहियो आहे। औरतूं वीचारियूं रड़ंदियूं रहनि थियूं कि संदनि मथनि लॻल ई इल्ज़ाम कूड़ा आहिनि, इन्हनि में काई सचाई कान्हे, पर संदनि को बि दाद फरियाद नथो ॿुधे। नतीजनि कातिल जे हथ में मारिजी थी वञनि ऐं कातिल आज़ादी सां ॿाहिरि घुमनि फिरनि पिया। ईअं थो लॻे कि मुल्क में किथे बि कानून जो नालो निशानी कोन आहे। सिंध एक्सप्रेस में शाया थियल एडिटोरियल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो, घणा यारो कारण इल्ज़ाम जे वर चढ़ियल औरत।

ਤੇਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਣ ਤਾਂ ਗੋੜਨ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪਸ ਨੱਚਣ।

अॼु लाइ प्रोग्राम सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं तारीख़ मामले जो वज़ीर डॉक्टर एस जयशंकर काला साइप्रस में साइप्रस जे सदर निकोलस क्रिस्टोडोलिट सां मुलाक़ात कई क़ौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत दोवल दहशत ख़िलाफ़ फैसलेदार कार्रवाई करण जो सॾु ॾिनो आहे एयर इंडिया इज़राइल ना पंहिंजे उड़ामन खे जुलाई महीने जे आख़िर धारे ताईं सस्पेंड रखियो आहे जो ओलह एशिया में अञा ताईं जोग्राफ़ी सियासी बेबकाई बरक़रार आहे आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स अॼु शाम जो अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स सां मुलाक़ात कंदा संदन मुक़ाबिलो थींदो

और आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हिंसर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रो है वहीं उन मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक सुबह जो साढ़े छह तेसी तीन डींदा इजाजत सब एंकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में

0: लेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले तीन दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, "Their dedication to the tribal community is truly commendable." He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Kerala. Beginning today, the Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. The CBI has arrested Giribala Singh in the Trisha Sharma death case. Giribala is Trisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Giribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, "Keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sporting facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics." The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for

सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर नारायण पाठक द्वारा गाय भजन। इसी के साथ संगीतिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7:23 और 25 सेकेंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो, जहां बातें होती हैं दिल की, जहां मुस्कानें मिलती हैं हर सुबह की चाय में, और जहां छोटी छोटी खुशियां बन जाती हैं जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत। मैं हूं आपकी आज की रेडियो होस्ट चंद दोस्त, और आज ये प्यारी सी महफिल, छोटा सा कार्यक्रम जो है, खूबसूरत गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम जो है, वो सजा है खुश मिजाजी के साथ।

दोस्तों, जिंदगी में परेशानियां तो सबके पास होती हैं, लेकिन जो इंसान मुस्कुराना सीख लेता है ना, वही असली बादशाह कहलाता है। वो कहते हैं ना कि हंसते रहो तो दुनिया साथ देती है, हंसते रहो तो दुनिया साथ देती है, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जवाब देती हैं। कभी सोचा है कि हम कितनी जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन खुश होने के लिए कितने बहाने ढूंढते हैं? कभी सोचा है आपने, छोटी छोटी बातों पे हम बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब हमें खुश होने का मौका मिलता है

की खुशी एक अल्टीमेट लेवल पर होती है, ये तो सभी जानते हैं। तो दोस्त, खुश होने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशी आपके आसपास ही होती है। तो बस उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप महसूस कीजिए, किसी भी चीज में आपको खुशी इजीली मिल जाएगी।

जी दोस्तों, खुश रहना या खुश होना या फिर किसी को खुश करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस छोटी छोटी बातों में अपना दिल लगाना सीखिए जिससे आपको दिल की खुशी मिले, आपका मन खुश हो। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। तो

रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही अंदाज दिलों को है जो भाता। और सच बताऊं ना दोस्तों, सबसे खूबसूरत इंसान वो नहीं होता जो बहुत अमीर होता है, बल्कि वो होता है जिसकी बातों से सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। क्योंकि कभी कभी किसी को सिर्फ इतना पूछ लेना कैसे हो, उसके पूरे दिन को बेहतर बना देता है।

और आजकल की खुशी का राज पता है क्या है, आपको खुशी किस चीज से होगी, क्योंकि गर्मी बहुत जोर से पड़ रही है, बहुत जोरों की गर्मी पड़ रही है भाई, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। फिलहाल जो खुशी देगी वो देगी बारिश। जिया झमाझम बारिश तपती धरती पे, जब झमाझम बारिश पड़ती है ना, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। उसमें जो दिल भीगते हैं, जो मन झूमते हैं, बस कुछ ऐसा ही माहौल होता है। और जो उस माहौल में जो खुशी मिलती है, उसे आप कितना महसूस करते हैं, इस गीत को सुनकर आपको पता चली जाएगी।

यह रिश्तों को धीरे धीरे थका देती है और एक हद पर जाकर खत्म भी कर देती है। तो थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी और थोड़ा प्यार, यही तो है जिंदगी का असली म्यूजिक। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तो कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। बस यही जो विचार है अपने दिल में रखिए सामने वाले के लिए, ताकि उसे भी दिल की खुशी मिले। और एक बात याद रखिए, अगर आप खुद खुश रहेंगे तो आपकी खुशी दूसरों तक भी पहुंचेगी, यानी आप दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे सुबह की पहली धूप जो खुद भी चमकती है और दुनिया को भी रोशन कर देती है।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:49 और पूरे 46 सेकंड्स। आप सुन रहे हैं गीतो भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ आज इस कार्यक्रम में मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना।

यह स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:53। वक्त भी बहुत तेजी से दौड़ा चला जा रहा है इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। दोस्तों, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो अक्सर दुखी ही रहते हैं। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। अगर अपने दिल की खुशी चाहते हैं तो काम वही करें, फैसले वही लें जिसमें आपके दिल की खुशी हो।

तो दोस्तों आज खुद से एक वादा कीजिए कि बिना वजह भी मुस्कुराएंगे, छोटी छोटी खुशियों को अपनाएंगे और हाँ हर दिन को दिल से जिएंगे। तो चलती हूँ मैं, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगी कि हंसी बांटते रहो जनाब, हंसी बांटते रहो जनाब, दुनिया में दुख देने वाले बहुत हैं। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए हमें यहाँ पर इस गीतों वाली गुड मॉर्निंग को। और होपफुली आपको ये प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा और ऐसे ही और कार्यक्रमों के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए, स्वच्छता रखिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं।

0: हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मिल जाएगा सबको। अपना मिक्सर मिक्स तैयार, पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीवी की हार।
1: मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से 1 दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत

0: कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में पेशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरामैया ने छोड़ी

0: मुख्यमंत्री की कुर्सी कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। मनोरमा टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है। और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जेन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृषि में जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says, Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess the requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, would submit its report within a year. Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue. Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia,

0: In its editorial piece titled "Death Blow to Online Gaming, the Asian Age Welcomes the Supreme Court's Decision Upholding GST on the Full Amount Deposited by Online Gaming Participants, Seeing It as a Strong Step to Curb Betting and Its Damaging Social Consequences." The paper argues that the distinction between skill-based and chance-based betting is too blurred to be meaningful in practice, and says the ruling could severely hit the industry. At the same time, it notes that retrospective taxation, though legally upheld, creates uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi Wildlife Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirements of war to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia, and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतह कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतह कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मसनूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि यह कमेटी मुल्क भर में हो रही मसनूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वह जरूरी इस्लाही इकदाम पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
3: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
2: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगी बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात

0: इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी पेश गई जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरीबाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई के शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्रिशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: दिल्ली तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: इम्तिहानात के निकात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट सीयूईटी यूजी 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। एनटीए ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। आईएमडी के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मॉनसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह बैनुलअक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में डिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल टी20 बैनुलअक्वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा टी20 बैनुलअक्वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नजर आज राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजरे आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाए अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के लिए राह हमवार की।

सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने एलएसी और सरहद से मुतालिक तनाजे पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमायां खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की छह सुर्खी है, इश्क रोमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनू आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतह कमेटी इस मामले से निपटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निपटने के सिलसिले में दोहरा मियार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर टू के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकेंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृष्ण शर्मा द्वारा गिटार पर बजाया राग चारुकेशी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे। कृष्ण शर्मा द्वारा गिटार पर बजाए राग चारुकेशी का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है स्वरोजगार और खेती के महत्व पर गांधी जी के विचार। आलेख गौरव कांतु शर्मा और सर कमल किशोर बराइक।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने केवल राजनीतिक आजादी का मार्ग ही नहीं दिखाया, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना भी देखा जो आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से आत्मनिर्भर हो। उनके विचारों में स्वरोजगार और खेती का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, इसलिए देश के विकास का आधार भी गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही होना चाहिए। स्वरोजगार के विचार में गांधी जी का दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट और व्यावहारिक था। वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के बल पर अपनी आजीविका कमाए। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का सिद्धांत दिया, जिसके अंतर्गत भारतीय संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन और उपभोग करने पर बल दिया गया। चरखा और खादी गांधी जी के लिए केवल वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका विश्वास था कि यदि गांवों में कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। स्वरोजगार व्यक्ति को आत्मसम्मान देता है और उसे दूसरों पर निर्भर होने से मुक्त करता है। खेती के विषय में गांधी जी के विचार और भी गहरे थे। उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना। उनके अनुसार किसान न केवल अन्नदाता है बल्कि राष्ट्र की समृद्धि का आधार भी है। गांधी जी प्राकृतिक और पारंपरिक खेती के समर्थक थे। वे रासायनिक खादों और अत्यधिक मशीनों के प्रयोग के विरोधी थे, क्योंकि इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम हो। गांधी जी ने स्वरोजगार और खेती को एक दूसरे का पूरक माना। उनका विचार था कि खेती के साथ साथ यदि ग्रामोद्योग जैसे हस्तशिल्प, दुग्ध उत्पादन, बुनाई आदि को बढ़ावा दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इससे शहरों की ओर पलायन कम होगा और समाज में संतुलित विकास भी संभव हो सकेगा। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगी बल्कि सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगी। आज के आधुनिक युग में भी गांधी जी के ये विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा कहीं न कहीं गांधी जी के सिद्धांतों से ही प्रेरित है। आज जब बेरोजगारी और पर्यावरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब स्वरोजगार और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व और

0: अधिक बढ़ गया है। यदि हम गांधी जी के विचारों को अपनाएं तो एक सशक्त, संतुलित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में है और वहां के लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी का सिद्धांत दिया, अपने ही संसाधनों से उत्पादन और उपभोग, कुटीर उद्योगों का समर्थन। चरखा और खादी उनके लिए प्रतीक थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति कोई न कोई काम स्वयं करे। स्वरोजगार को उन्होंने बेरोजगारी खत्म करने का सबसे प्रभावी उपाय माना। उनका मानना था कि खुद के श्रम से कमाई गई आजीविका सबसे सम्मानजनक होती है। उनका प्रसिद्ध विचार था, भारत का भविष्य उसके गांवों में बसता है। गांधी जी के अनुसार खेती केवल भोजन उत्पादन का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। वे रासायनिक खादों के बजाय प्राकृतिक तरीकों के पक्षधर थे। उनका सपना था कि हर गांव आत्मनिर्भर हो, अपना भोजन, कपड़ा और आवश्यक वस्तुएं स्वयं पैदा करे। उन्होंने किसान को समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना। गांधी जी ने स्वरोजगार और खेती दोनों को एक दूसरे से जोड़ा। खेती के साथ ग्रामोद्योग यानी विलेज इंडस्ट्रीज जैसे हस्तशिल्प, दुग्ध उत्पादन, बुनाई आदि, इसे गांव में स्वरोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। शहरों की ओर पलायन कम होता है, समाज में संतुलित विकास होता है। आज भी गांधी जी के ये विचार बेहद प्रासंगिक हैं। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा उसी सोच से प्रेरित है। स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर स्वरोजगार का आधुनिक रूप है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और लोकल उत्पादों की मांग बढ़ रही है। गांधी जी के अनुसार स्वरोजगार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, खेती समाज को स्थिर और समृद्ध बनाती है। दोनों मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जहां हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और देश आर्थिक और नैतिक रूप से मजबूत बन सके। इसीलिए कहा जा सकता है कि गांधी जी के अनुसार स्वरोजगार और खेती केवल आर्थिक गतिविधियां नहीं है बल्कि ये जीवन को सम्मान, स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाले आधार स्तंभ है। उनके विचार आज भी हमें सही दिशा दिखाते हैं और एक उज्जवल भविष्य की प्रेरणा देते हैं।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था स्वरोजगार और खेती के महत्व पर गांधी जी के विचार। आलेख गौरव कांत शर्मा और स्वर कमल किशोर बराइक।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक। तो आइए सुनते हैं ये पंजाबी कार्यक्रम।

सामिन, अब से कुछ देर बाद सुबह 9:35 पर सुबगाही प्रोग्राम के तहत आज आप नाते रसूल करीम सुनेंगे। 9:45 पर प्रोग्राम नश्र किया जाएगा आज सवेरे। खबरें आप हसब मामूल 9:50 पर सुनते हैं। अकवाल जर्री पर मबनी प्रोग्राम शम्मी फरोजा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे दिन के 10 बजे। 10:05 पर हुस्न गजल प्रोग्राम के तहत आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह और अंजना चोपड़ा की आवाजों में गजलें। कलाम होगा डॉक्टर बशीर बद्र, मजरू सुल्तानपुरी, नजीर बनारसी और जानिसार अख्तर का।

10 बजकर 30 मिनट पर हम हाजिर खिदमत होंगे प्रोग्राम कंट्री वाइड के साथ। 10 बजकर 45 मिनट पर फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद आप सुन सकेंगे। ये प्रोग्राम 11 बजकर 30 मिनट तक जारी रहेगा। 11 बजकर 30 मिनट पर हम आपकी खिदमत में एक ड्रामा पेश करेंगे, मेहमान होगा मीर नगार। 12 बजे खबरें नश्र की जाती हैं।

मिनट से 12:45 तक फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मैंने सुर मेरा तुम्हारा आप सुन सकेंगे। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम नश किया जाएगा। सुर्खियों में ये प्रोग्राम हम पेश करेंगे 12:45 पर। दिन के 1 बजे आलमी खबरें नश की जाएंगी और इसके साथ ही 1:15 पर आज की हमारी पहली मजलिस की नशात इख्तिताम पजीर होंगी। सामीन, ये था मुख्तसर तारुफ आज की पहली मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: 19 वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबहानी प्रोग्राम के तहत लीजिए सामिन समाप्त फरमाई नाते रसूल करीम।
1: नाते रसूल पेश खिदमत है, मुलाहिजा कीजिए।

0: 1970 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और खास बात यह कि 1947 में हीराबाई ने अपने जीवन की सबसे खास प्रस्तुति दी। 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ तो उन्हें लाल किले पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। सुनते हैं उनके स्वर में ये खूबसूरत राग।
1: सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नश्र की जाएंगी।

प्रोग्राम के आगाज में अभी आप समाप्त फरमा रहे हैं डॉक्टर बशीर बद्र की खूबसूरत गजल। गजल सरा है जगजीत सिंह।

0: سامعین، ابھی آپ جان نثار اختر کی غزل سے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام حسن غزل اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام کنٹری وائڈ.
1: जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है. धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है. मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है. एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है. नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव. आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव. पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसमें स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी.
1: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है? बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
2: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, इस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है. कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है. जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए. लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खासतौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून है, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है. गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए.
1: डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं. वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
2: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है. लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है. लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए. कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए. तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से.
1: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
2: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी लग रही है, या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान जैसा आपने कहा बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
1: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
2: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें। साल भर भी देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पर पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे

0: इनको पानी की आपूर्ति नहीं होती है, तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गाँव चले जाते हैं, वहाँ उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल ये है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी है, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती महिलाएं हैं इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकले, जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाएं, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 करने के बाद आप जाए, धूप रहते मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाए तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाए। अगर धूप है उस समय तो छतरी कर लें, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10-15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का, और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आए, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए, और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल, पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं, वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ जाता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?

0: तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
1: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें। तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटे नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं। तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोता इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
0: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती है। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

सामिन, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वीराज कपूर 3 नवंबर 1906 को बरतानवी दौर के जो हिंदुस्तान था उसके शहर में पैदा हुए थे। उनका खानदान तालीम याफ्ता और बावकार समझा जाता था। बचपन से ही उन्हें अदब, फन और अदाकारी से गहरी दिलचस्पी थी। इब्तदाई तालीम पेशावर में हासिल की, मगर किस्मत उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां वो बरसगीर के सबसे बड़े फनकार शुमार होने वाले थे। 1928 में वो मुंबई यानी मौजूदा मुंबई में पहुंचे ताकि फिल्मी दुनिया में अपना मकाम बना सके। ये वो दौर था जब हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में खामोश फिल्मों से बोलती फिल्मों की तरफ

सूरत है भोली सी कातिल हर कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे पिता कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने मैं तो कहता हूँ उनको खुदा।

कली से है नाजुक, फूलों से भी हसी, मेरे यार जैसा कोई भी जमाने में नहीं। उस जैसी नाजनी, उस जैसी दिलनशी, दिया लेके भी जो ढूंढो तो मिलेगी ना।

उनके बेटों में शामिल थे राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर। बाद में यही खानदान कई नस्लों तक फिल्म दुनिया में मशहूर रहा। राज कपूर अक्सर कहा करते थे, मेरे वालिद सिर्फ मेरे बाप नहीं मेरे उस्ताद भी थे। पृथ्वीराज कपूर ने अपने बच्चों को फन, मेहनत और नज्म जब्त का दर्ज दिया और यही उनकी कामयाबी का एक जरिया बना। पृथ्वीराज कपूर की शख्सियत इंतहाई बावकार थी, लंबा कद, भारी आवाज, शानदार अंदाज गुफ्तगु और मुतासिर कुन चेहरा उनकी पहचान थे। वो सेट पर वक्त की पाबंदी करते थे और नौजवान फनकारों की रहनुमाई भी किया करते थे। आइए सामने सुनते हैं एक और नगमा उन्हीं की फिल्मों से।

0: पृथ्वीराज कपूर सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि हम अजहद शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने थिएटर, फिल्म और फनून लतीफा के जरिए आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन रास्ता छोड़ा। आज भी जब क्लास की अदाकारी का जिक्र होता है तो पृथ्वीराज कपूर का नाम एहतराम से लिया जाता है। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन ही 29 मई 1972 को यजीम फनकार इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया, और लेकिन अपनी अदाकारी से, अपनी शख्सियत से हजारों दिलों पर वो आज भी राज करता है। जी हाँ, आज हम याद कर रहे थे अजीम फनकार पृथ्वीराज कपूर को, जिनकी आज बरसी है। आज का आकाशवाणी की उर्दू सर्विस की जानिब से मेरी पसंद प्रोग्राम उन्हीं के नाम वक्फ था, खराज अकीदत के तौर पर। आइए सुनते हैं इख्तितामी कौल नगमा उन्हीं की फिल्म से।
1: रंग बदल

0: ये गाड़ी आगे ले जाएगी, सारे मुसाफिर उतर जाए। ये रेलगाड़ी आगे ले जाएगी, ये रेलगाड़ी आगे ले जाएगी।
1: ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब?
2: मीर नगर है, मीर नगर। वो सुना नहीं आपने? कुली कह रहा है ना, ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, यहीं खत्म हो गई है ये गाड़ी।
3: आगे नहीं जाएगी ये गाड़ी मीर नगर? मगर मुझे तो मुरादनगर जाना था।
2: मुरादनगर? वो तो कब का निकल भी चुका।
3: निकल चुका? ओह, मगर मैं
2: आजी जनाब, आप तो गहरी नींद में पड़े सो रहे थे जब मुरादनगर आया। मैं खुद सवार हुआ हूँ वहां से इस ट्रेन में।
3: नींद, गहरी नींद। अच्छा एक बात तो बताइए।
2: जी पूछिए।
3: यहाँ कोई जगह, मेरा मतलब है कोई होटल वगैरह है जहाँ रात गुजारी जा सके?
2: गांव में चले जाइए, वहां कोई बंदोबस्त हो जाएगा, कुली ले जाएगा आपको अपने साथ।
4: वो नया नया आया हो क्या?
3: वो जरा आंख लग गई थी।
4: आंख लग गई किससे?
3: नहीं, मेरा मतलब है मैं जरा सो गया था और वो मुरादनगर निकल गया।
4: कोई बात नहीं, अब क्या ख्याल है?
3: बस वापस मुरादनगर जाना है।
4: ठहरोगे?
3: हाँ, वो गांव कितनी दूर है यहाँ से? कोई होटल वगैरह तो होगा वहाँ?
4: गांव तो हो रहा सामने, होटल तो है नहीं, एक सराय है वहाँ, वहीं ठहर जाना। क्या हो गया बाबू, मैं पहुँचा देता हूँ। आओ।
3: अच्छा तो मेरा वो सामान ट्रेन से जरा बाहर ले आओ।
4: बहुत अच्छा जी।
0: हाँ चलो बाबू, डरो नहीं, मैं साथ हूँ तुम्हारे, आ जाओ।
3: ये कदमों की छाप कैसी है हमारे पीछे?
4: कैसी कदमों की छाप?
3: तुम्हें सुनाई नहीं दे रही ये छाप? वो देखो, वो सुनो, वो छाप हमारी बिल्कुल नजदीक होती जा रही है। ये कौन हमारा पीछा कर रहा है?
4: अरे मुझे तो कोई चाप आप सुनाई नहीं दे रहे, चले आज तुम मेरे पीछे पीछे बेकार ही घबरा रहे हो।
3: मगर ये रास्ता, ये घुंघरू की आवाज, कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। ये आवाज कहां से आ रही है? ओह, तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है?
4: कैसी आवाज है? अरे बेकार ही डरे जा रहे हो तुम तो।
3: डर नहीं तो सुनो कुली,
4: क्या बात है?
3: देखो जरा मेरे साथ साथ चलो, इतने आगे ना निकल जाया करो कि मैं रास्ते से भटक जाऊं।
4: अच्छा जी चलो, ला ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो।
3: हाँ, ये, हाँ अब चलो।
4: ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा?
3: पसीना नहीं तो।
4: देखो तो सही, जरा इस कड़ाके की सर्दी में भी तुम तो पसीने से ना रहे हो।
3: नहीं तो
4: अजी, बस हिम्मत करके मेरे साथ चले आओ बाबू।
3: अब कितनी दूर है वो बस्ती?
4: बस मुश्किल से 15-20 मिनट और चलना होगा।
3: अच्छा देखो एक बात तो बताओ।
4: पूछो।
3: इस बस्ती के रहने वाले कैसे हैं?
4: बहुत अच्छे हैं। इस बस्ती में ये रात तुम्हारे लिए पहली और आखिरी रात होगी।
3: आखिरी रात?
4: नहीं, मेरा मतलब है ये रात यादगार रात होगी तुम्हारे लिए।
3: यादगार रात?
4: हाँ, याद रखोगे इस रात को और इस बस्ती के लोगों को।
3: कौन? कौन हो तुम?
4: अरे मैं हूँ कुली।

0: क्या हो गया?
1: तुम चुप रहो, मैं इससे पूछ रहा हूँ।
2: किससे?
1: मैं क्या, तुम कौन? तुम कौन हो और हमारे साथ साथ क्यों चल रहे हो?
2: अरे तुम्हारा सामान फिर कौन उठाएगा अगर मैं नहीं चला तुम्हारे साथ? तो
1: तुम नहीं, ये जो चल रहा है हमारे साथ साथ, ये
2: अरे कौन है बाबूजी? यहाँ कोई नहीं है हमारे साथ, तुम और मैं हूँ।
1: तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा क्या?
2: नहीं तो ये तुम्हारा शक है बाबू। वैसे भी यहाँ हर अजनबी को ऐसे ही शक होने लगता है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है यहाँ। आओ अब चुपचाप मेरे साथ चले चलो, थोड़ी दूरी तो और चलना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब देख लेना अपनी आंखों से।
1: अपनी आंखों से सब देख लेना? क्या देख लेना?
2: अरे वाह बाबू जी, उस सराय में थोड़ी दूरी तो है वो सराय।
1: वहां क्या है? क्या है उस सराय में?
2: वाह बाबू, अजय तुम तो बच्चों की तरह डर रहे हो।
1: नहीं नहीं नहीं, तो
2: हिम्मत रखो। अरे मुझे देखो, मैं डर रहा हूँ क्या?
1: डर नहीं, तो नहीं नहीं मैं कहाँ डर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डर रहा।
2: ये क्या
1: सानी खोपड़ी इस जगह?
2: अरे कुछ नहीं है बाबू जी, ये रास्ता तो है इतना खतरनाक, ऐसे हादसे तो यहाँ आए दिन होते रहते हैं।
1: हादसे? कैसे हादसे? कौन करता है क्या हादसे?
2: ये तो आज तक किसी को भी नहीं मालूम हो सका कि कौन करता है।
3: इतने बुजदिल थे तो हमारी नगरी में क्यों आए? वहीं रहते हमारी सरहद के उस पार।
1: तुम कौन हो?
3: हम इस बस्ती के राजा हैं और ये कुली सब मालूम हो जाएगा तुम्हें थोड़ी देर में। बस खामोशी से चले चलो, अब तुम हमारी बस्ती में हो, हमारे कब्जे में हो।
1: कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे?
3: वहीं जहाँ तुम्हें जाना है।
1: मगर मैं वापस जाना चाहता हूँ, वापस रेलवे स्टेशन।
3: रेलवे स्टेशन? वो तो बहुत पीछे रह गया, अब तुम्हें हमारे स्टेशन पर चलना होगा।
1: और अगर मैं जाने से इनकार करूं तो?
3: इसका अंजाम वही होगा। तुमने अभी अपने हाथों में क्या उठाया था?
1: वो खोपड़ी, वो इंसानी खोपड़ी, वो
3: समझ लो यहाँ आने वाले दूसरे इंसान एक दिन इसी तरह तुम्हारी खोपड़ी उठाएंगे, इसलिए चुपचाप चले चलो।
1: मगर मैं वो
2: अरे बाबू जी ना करो, अगर तुमने इनकार किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। खामोशी से मेरे साथ आ जाओ, चलो।
1: नहीं नहीं हरगिज़ नहीं, मैं एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा।
2: अरे शायद वो आ गई बाबू, जल्दी चलो यहाँ से।
1: कौन कौन आ गई?
2: अरे वही जिसने तुम्हें यहाँ तक बुलवाया है। मैं कह रहा हूँ जल्दी से अपने कदम उठाओ, चलो।
1: ओहो कौन आ गई, कौन है वो?
2: अरे वो तुम पे मर बेटी।
1: क्या भक्ते हो, मुझ पर मर बेटी है?
2: इसीलिए तो तुम्हें मुराद नगर में ट्रेन से नीचे नहीं उतरने दिया। अपना दिल दे बैठी तुम्हें।
1: ट्रेन? ट्रेन से उतरने?
4: तो तुम भी मुराद नगर जाओगी?
5: मैं तो मीर नगर जाऊंगी।

0: नए खिलाड़ी मालूम होते हो।
1: मैं इस वक्त तो माफी चाहूंगा, राबिया और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे मेरे घर पर।
0: ओ, तो तुम?
1: हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और 3 बच्चों का बाप भी हूँ।
0: खूब, मगर सुनो, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मीरनगर मेरे साथ ही चलते, फिर कभी वहाँ आए तो क्या पता तुमसे मुलाकात हो ना हो।
1: क्यों, क्या ये मुलाकात ना काफी है? जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही जाएगी।
0: जिंदगी? तुम्हें जिंदगी पर बड़ा भरोसा है?
1: बिल्कुल, मैं तो जिंदगी की कदर करना जानता हूँ, इसलिए उसे अजीज रखता हूँ।
0: अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ तुम मुरादनगर के रहने वाले हो?
1: नहीं, मैं तो वहाँ से सैकड़ों मील दूर हिम्मतनगर का रहने वाला हूँ। मुरादनगर में तो मुलाजमत के सिलसिले में रह रहा।
0: हिम्मतनगर?
1: क्या तुमने देखा है हिम्मतनगर?
0: हाँ, कुछ याद तो पड़ता है, ये नाम मेरे कानों में गूंज रहा है। हम हिम्मतनगर। हाँ, हिम्मतनगर।
1: तुम्हारा क्या ताल्लुक है उस जगह से?
0: ऐसा लगता है मेरा कोई ताल्लुक जरूर रहा है हिम्मतनगर से।
1: क्या?
0: बहुत पहले का ताल्लुक, शायद सदियों पहले का।
1: क्या बात कर रही हो, सदियों पहले का?
0: हाँ, सदियों पहले का। अरे मुझे तो सब कुछ याद आ रहा है, वो बाग, वो महल, वो कनीजे, वो तुम, वो मैं, हम राज किया करते थे हिम्मतनगर पर।
1: औरत, तुम होश में तो हो? महल, बाग, कनीजे, तुम, मैं, राज, क्या कह रही हो तुम?
0: मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सच है मेरे विजय सिंह।
1: विजय सिंह? कौन विजय सिंह?
0: तुम ही तो विजय सिंह, मेरे विजय सिंह, जिसकी तलाश में सदियों से मेरी रूह भटक रही है।
1: देखो देखो, तुम जरूरत से ज्यादा बह चुकी हो।
0: तुम पहले भी मेरी बातें सुन सुनकर इसी तरह कहा करते थे, रूपवती तुम बह चुकी हो। वही बात आज भी कह रहे हो।
1: रूपवती? तो तुम रूप?
0: हाँ, मैं हूँ तुम्हारी रूपवती, जिसे तुमने टूट कर चाहा। सदियां बीत गईं तुम्हें दोबारा पाने के लिए।
1: मगर मैं वो नहीं, मैं तो मसूद हूँ, मसूद कंजर्वेशन ऑफिसर। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है।
0: नहीं मेरे प्रीतम, नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम ही विजय सिंह हो। हाँ, मेरे महबूब, मेरे प्रीतम।
1: देखो छोड़ो मुझे, मैं तो खामोश हो जाऊं। बकवास बंद करो। विजय सिंह, रूपपति, हिम्मतनगर, सदियों पहले की बातें, ये सब बकवास।
0: तुम मुझे चुप करा के चैन नहीं पा सकते विजय सिंह, मैं तो सिर्फ रूह।
1: रूह?
0: रूह। ये जिस्म तो आरजी और मांगे का है, तुम्हें पा लेने के लिए शक्ल बना ली है मैंने। अब तुम मिल गए हो तो मुझे चैन आ गया है।
1: रू, रू, रू, ठहरो, ठहरो, मैं अभी फैसला किया देता हूँ, मैं अभी फैसला किया देता हूँ, तुम्हें बेनकाब कर देता हूँ, ठहरो। ढांचा, ये इंसानी ढांचा, क्या खुदा, क्या
0: मैं सच कह रही थी ना, क्या अभी मेरी बातों का यकीन नहीं आया तुम्हें विजय? अब लड़ो इस ढांचे से, तुमने इसको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, इसे बेनकाब कर दिया है तुमने।

0: अब वो तुमसे बदला लेगा। बच सकोगे इसके वार से तुम?
1: नहीं नहीं नहीं, दूर दूर दूर दूर मुझसे, दूर इधर आओ। नहीं मैं कहता हूँ वहीं रहो। मैं कहता हूँ आगे मत पढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा।
0: शूट कर दोगे? गोली मार दोगे? इस ढांचे को, इस मोटा को? प्रीतम तुम
1: इसे हटो, इस हटाओ, इस रुको रुको।
2: याद आया, सब कुछ याद आ गया। और मुझे जब होश आया तो मुरादनगर कब का निकल चुका था। ट्रेन मीरनगर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वहां तुम थे और चंद दूसरे मुसाफिर जो इस गाड़ी से उतरे थे।
3: बस बाबू, तो फिर समझ लो तुम्हारी रूपवती तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे वो तुम्हें चाहती है।
2: मगर वो मुझसे चाहती क्या है? मैं अब उसके लिए विजय सिंह तो नहीं बन सकता।
3: वो तो तुम्हें दिलो जान से चाहती। उसकी तसल्ली के लिए तुम्हें विजय सिंह तो बनना ही पड़ेगा।
2: विजय सिंह बनना पड़ेगा? लेकिन लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या दिलचस्पी है? आखिर तुम कौन?
3: अरे ये किस्सा छोड़ो बाबू, तुम्हें सब पता चल जाएगा।
2: तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हें उस रूह से इतनी दिलचस्पी क्यों है।
3: मैं उस रूह का सेवक हूँ।
2: तो गोया तुम भी?
3: हाँ बाबू, मैं भी एक रूह हूँ।
2: क्या?
3: ये जिस्म तो खोखला है, इससे घबराना नहीं।
2: मगर तुम हो कौन?
3: मैंने कहा ना बाबू, मैं रूपवती का सेवक हूँ, तो मैं भी रूह हूँ।
2: रूपवती का सेवक?
3: अजय नहीं मालिक, मैं तो आपका भी सेवक हूँ। आप मुझे क्यों भूल रहे हैं सरकार?
2: आपको बस सारी बातें याद नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जानता किसी विजय सिंह को, मैं नहीं जानता किसी रूपवती को।
3: विजय सिंह हो या मसूद अली खान, तुम कुछ भी हो मगर तुम रूपवती के हो। उसके सिवाय तुम पे किसी का कोई हक नहीं है, समझे? तुम्हें उसका बनकर रहना होगा।
2: नहीं, हक इस नहीं, मैं राबिया का हूँ। राबिया और मेरे बच्चों का ही मुझ पर हक है। मैं नहीं जानता किसी रूपवती को।
3: अच्छा ठीक है, फिर उसका फैसला वही होगा।
2: वही कहाँ?
3: उस सराय में जहाँ रूपवती तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तो दुल्हन की तरह सज धज के बैठी होगी तुम्हारे इंतजार में। लो, और फिर आ गई हमारी मालकन रूपवती।
4: विजय सिंह, तुम अब तक नहीं पहुंचे वहां? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
2: देखो, मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं विजय सिंह नहीं, मैं मसूद हूँ, मसूद।
4: इसका फैसला तो वहां ही होगा कि तुम कौन हो, विजय या मसूद। और देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, इस बात का फैसला करने के लिए तुम्हें सराय में आना ही होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें किसी किस्म का खौफ ना होगा। मैं तुम्हारी हिफाजत जो करूंगी वहां।
2: आखिर आखिर तुम चाहती क्या हो?
4: वही जो एक प्रेमिका अपने प्रेमी से चाहती है।
2: प्रेमिका, प्रेमी? मगर मेरा तुमसे ये रिश्ता कब रहा?
4: सदियों पहले के रिश्ते को तुम भूल सकते हो, मैं नहीं।
2: फिर वही सदियों पहले का रिश्ता?
4: हाँ, इसका फैसला करने के लिए तुम्हें सराय में ले जाया जा रहा है।
2: लेकिन वो
4: मैंने कहा ना, तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं, वहां तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें वहां।

0: वादा करती हूँ।
1: अच्छा चलो तुम चलो, मैं उस कुली के साथ वहां पहुंच रहा हूं।
2: हाँ बाबू, यहाँ अपना नाम पता दर्ज करा दो।
1: तुम सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, तुम ही लिखवा दो।
2: अच्छा अच्छा, तुम अपना दस्तखत तो कर दो इस रजिस्टर पे।
1: ठीक है, लाओ रजिस्टर, यहाँ ले आओ।
2: हेलो बाबू। ये क्या बाबू, तुमने तो अपना नाम मसूद अली खान लिख दिया, मैंने तो सराय के मालिक को तुम्हारा नाम विजय सिंह बताया।
1: बकवास बंद करो, मैंने कहा ना मैं विजय सिंह नहीं हूँ, मसूद अली खान हूँ, समझे? चलो मुझे अपना कमरा बता दो।
3: चलो जी, वहां ऊपर इस तरफ है वो कमरा, कमरा नंबर 13।
1: अच्छा सुनो कुली
3: जी,
1: एक बात बता, इस सराय में और मुसाफिर भी आकर ठहरते हैं क्या?
3: हाँ ठहरते हैं, तुम जैसे कई मुसाफिर जिन्हें सुबह की ट्रेन से जाना होता है।
1: मगर ये सराय तो बड़ी सुनसान, बड़ी वीरान नजर आ रही है, यहाँ तो कोई मुसाफिर नजर नहीं आता।
3: हो सकता है आज कोई मुसाफिर ठहरा ही नहीं हो इस सराय में।
1: लेकिन ये लाइट, ये बार बार जल बुझ क्यों रही है?
3: अरे जब कोई नया मुसाफिर इस सराय में आता है ना, तो लाइट इसी तरह जलती बुझती है। लो जी आ गया तुम्हारा कमरा, अंदर आ जाओ।
1: तुम पहले सामान रख दो अंदर, और हाँ वो बिजली भी जला दो जरा।
3: ठीक है ठीक है, लाइट जल जाए तो तुम भी आ जाना। हाँ बाबू।
1: हाँ हाँ तुम जाओ। कुली, ए कुली, अरे कहाँ चले गए तुम? भाई अपनी मजदूरी तो ले लो, कहाँ हो तुम? कुली
0: आओ मेरे महबूब, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, दरवाजा बाहर से बंद है।
1: लेकिन वो कुली, वो कहाँ है?
0: वो तो कब का जा चुका मेरे सरदार।
1: जा भी चुका, लेकिन लेकिन मैंने तो देखा नहीं उसे बाहर जाते हुए।
0: तुम उसे देख भी नहीं सकते थे विजय सिंह, तुम ये भूल रहे हो, वो भी मेरी ही तरह एक रूह है, और रूह जब चाहे जिस तरह चाहे जहाँ चाहे आ जा सकती है।
1: अच्छा ये बता, तुम उसे क्या चाहती हो?
0: मिलन।
1: तुम रूह हो और मैं जिस्म वाला इंसान, तुम जिस्म की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती और मैं जिस्म को छोड़कर रूह की शक्ल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
0: वही तो करना है मुझे।
1: क्या?
0: सुनो, जिस्मों का मिलाप अगर मुमकिन नहीं तो रूहों का मिलाप तो बोलो मुमकिन है ना?
1: तुम नहीं, मैं विजय सिंह नहीं हूँ, मैं विजय सिंह नहीं हूँ, ये मिलन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
0: हो सकता है, ये मिलन होगा प्रीतम, मेरी बाहों में आ जाओ, तेरा आंख उठाकर तो देखो ना, देखो देखो ना, मैं सुहाग के जोड़े में कैसी लग रही हूँ?
1: मुझे क्या लेना है तुम्हारे सुहाग जोड़े से, मैं कहता हूँ देखो देखो मेरी तरफ ना बोलो।
0: अरे
1: रुक जा,
0: तुम तो बहुत घबरा रहे हो मेरे महबूब। देखो मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी।
1: मगर तुम अपने वादे से मुकर रही हो।
0: तुम भी बहुत भोले हो साजन। मैं वादे से कहाँ मुकर रही हूँ, मैं तो तुम्हें इस जिस्म के आजार से आजाद करना चाहती हूँ, ताकि तुम भी मेरी तरह ही रूह बन जाओ। हाँ फिर हमारी शादी होगी, हमारा मिलन होगा, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, और फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा, न तुम्हारे पिता न तुम्हारी बुर्राबिया, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे।
1: नहीं, मैं तुम्हारा नहीं, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे जाने दो यहाँ से।
0: जाने दो? तुम्हें जाने दो यहाँ से? विजय सिंह तुम सदियों के बाद तो मिले हो मुझे। तुम्हारे मिलन की आस लिए मैं कहां कहां भटकती फिरी हूं। अब तुम मिल गए हो तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी। देखो देखो मेरी तरफ।
1: ये तुम क्या होगी रूपा थी? ये लंबे लंबे दांत, ये नाखून, ये खट, तुम कौन हो? कौन हो
4: मेरे महबूब? आओ ना। मेरी बाहों में समा जाओ। मेरे ये दो दांत तुम्हारी गर्दन है। जरा सी तकलीफ होगी तुम्हें और फिर हमेशा के लिए तुम मेरे हो जाओगे।
1: अगर एक कदम भी इस तरफ बढ़ा तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ।
2: शायद कर्नल मसूद ने हमें सिग्नल दिया है, देर नहीं करनी चाहिए, हमें धावा बहुत देना चाहिए। चलो जल्दी करो, जल्दी सारे को चारों तरफ से घेर लो। मैं ऊपर जाता हूँ।
5: अब ये नाटक यही खत्म होगा। कांस्टेबल मजीद।
6: यस सर।
5: अरेस्ट प्लीज कॉन्फ्रेंस।
6: ओके सर। सर उन लोगों ने सरेंडर कर लिया है, उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
5: वेरी गुड। हाँ इंस्पेक्टर, अब नीचे चलो।
6: यस सर।

थैंक यू फ्रेंड्स, आज आप जैसे जिम्मेदार सहाफियों को यहां इसलिए तकलीफ दी गई है कि मैं उन वाकयात की तफसील आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो मीरनगर में मेरे साथ पेश आए। दोस्तों, हमें इत्तला मिली थी कि मीरनगर में भूत प्रेत के नाम पर कुछ मुजरिम बेगुनाह और मासूम लोगों का खून कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि वहां एक गिरोह काम कर रहा था, स्मगलरों का गिरोह। मीरनगर बॉर्डर के पास होने की वजह से यहां इन लोगों ने इसे अपना गढ़ बना रखा था और भूत प्रेतों का डर सा फैला रखा था ताकि कोई इस तरफ का रुख न करे। हमारे कई ऑफिसर्स यहां सर्वे के लिए आए मगर वापस नहीं जा सके। वो सराय जहां भूतों का असर बताया जाता है, दरअसल वो इन बदमाशों का अड्डा थी। ये जो बड़ी सी मशीन आप देख रहे हैं, इसकी सिफ्त यह है कि इसका एक बटन दबाने से इसके सामने खड़े हुए इंसान की शक्ल खुद बखुद बदल जाती है। उसका कद दराज मालूम होता है, उसके दांत और नाखून बड़े दिखने लगते हैं। और ये देखे, ये टेप्स हैं, इनमें मुख्तलिफ आवाजें रिकॉर्ड की हुई हैं। रेल में रूपपति नाम की जो औरत मुझे मिली थी वो इसी गैंग की एक फर्द थी। दरअसल इस साजिश के जरिए गैंगस्टर्स इस प्रोजेक्ट को नाकाम बनाना चाहते थे जिसकी बुनियाद मीरनगर में डाली जा चुकी थी। खुदा का शुक्र है कि हमने आज इस साजिश को खत्म कर दिया। इसके लिए मैं अपने साथी इंस्पेक्टरों और दूसरे जिम्मेदार सिपाहियों का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू।

वायरस से निपटने के सिलसिले में दोहरा मयार नहीं हो सकता। मगरबी एशिया में जारी जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरतहाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। भारत और कनाडा ने साल के आखिर तक सेपा बातचीत मुकम्मल करने के अज़्म का इरादा किया है। बाहमी इक्तसादी ताल्लुकात और कारोबारी शराकतदारियों को फरोग देने के लिए तिजारत और सरमायाकारी फोरम का आगाज किया है। फीफा आलमी कप 2026 से पहले इबोला वायरस के फैलने के पेश नजर अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने सफर से मुतालिक इकदामात का ऐलान किया है। मौसमियात से मुतालिक आलमी तंजीम ने कहा है कि आइंदा 5 बरस में आलमी दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफे का इम्कान है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निपटने के सिलसिले में दोहरा मयार नहीं हो सकता। रूस में बैन अलाक़वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार ममालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और यह फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों को मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निपटने के लिए फैसलाकुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैन अलाक़वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैन अलाक़वामी सिक्योरिटी को लाहक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया में जारी सियासी और जोग्राफियाई गैर यकीनी सूरतहाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी की है। इस खबर एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया है कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जोग्राफियाई सूरतहाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फिजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना है जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। एयर इंडिया परवाजों में तातुल की वजह से इसराइल में रिहायश पजीर 40,000 से ज्यादा भारतीयों में तश्वीश का माहौल है जो जाति या पेशावराना वजूहात से या फिर खत्ते में जारी गैर यकीनी सूरत हाल से भारत आना चाहते हैं। सफर से मुतालिक ऑप्शंस कम होने का सीधा मतलब सफरी अखराजात में इजाफा होना है जो भारतीय अफराद के लिए बाइस तशवीश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इंकसार उफो दरगुजर और महजब रवैया शख्सियत का असली जेवर है। संस्कृत के एक श्लोक को शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन खूबियों के साथ मुल्क के अवाम एक तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील के लिए तेजी के साथ सरगर्म अमल है। भारत और कनाडा ने इस साल के आखिर तक जामे इक्तसादी शराकतदारी मुहिदे सेपा से मुतालिक मुजाकरात से इत्तफाक करने के तई अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया है। तजारत और सरमायाकारी फोरम पर भारत और कनाडा के मुश्तरक बयान में सनअत और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल और कनाडा के बैन अलाक़वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू ने बाहमी तौर पर सूदमंद सेपा मुआहदे को आगे बढ़ाने के तई अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया। दोनों वज़रा ने दोनों मुल्कों में कारोबारी मौके और मआशी तरक्की को फरोग देने वाले नतायज हासिल करने के लिए दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी को मुस्तहकम करने के इरादे का भी इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने कनाडा भारत तिजारत और सरमायाकारी के फोरम का आगाज एक ऐसे कलीदी प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जो भारत और कनाडा के कारोबारी रहनुमाओं को यकजा करता है और कारोबारी शराकतदारी को फरोग देता है। जनाब सिद्धू ने माहौलियात के लिए साजगार तवानाई अहम मादनियात मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में इश्तराक को वसत देने से मुतालिक मौके को भी उजागर किया।
کامرس و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے 50 سے زیادہ

0: सरबराहों के साथ एक गोलमेज में शिरकत की। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसलर जनरल और भारत अमरीका कलीदी शराकतदारी फोरम ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज रफ्तार तरक्की से मुतालिक असलाहत पर मबनी तजारती माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसीतर मौके पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने अफ्रीका के हिस्सों में इबोला वायरस के फैलने के पेश नजर अफ्रीकी खित्तों से आने वाले अफराद के लिए सेहत आमा से मुतालिक सफरी इकदाम के सिलसिले में एक सह फरीकी बयान जारी किया है। इसका मकसद फीफा आलमी कप 2026 के दौरान इम्कानी तौर पर इसे देखने आने वाले लाखों अफराद, मद्दाहों, खिलाड़ियों और सयाहों को तहफ्फुज फराहम करने के साथ साथ सफर और तिजारती सरगर्मियों को बरकरार रखना है। मौसमियात से मुतालिक आलमी तंजीम ने कहा है कि आइंदा 5 बरस में आलमी सतह पर दर्ज हरारत में रिकॉर्ड इजाफे का इम्कान है। WMO की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2026-23 के दौरान जमीनी दर्ज हरारत 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जो औसत 1850-1900 से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का 86% इम्कान है कि 2026 से 2030 के दरमियान कम से कम एक साल रिकॉर्ड में मौजूद सबसे गर्म साल 2024 से तजावुज कर जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्मी और हब्स से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटे तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी IRGC ने कहा है कि जनूबी ईरान में अमरीका के रात भर के ताजा हमलों के बाद उसने खत्ते में अमरीकी फिजाई अड्डे को निशाना बनाया है। कुवैत में जहां अमरीकी हवाई अड्डा मौजूद है, उसने कहा है कि मिसाइल और ड्रोन्स को बीच में ही रोक लिया गया, लेकिन उसने निशाने की तस्दीक नहीं की है। अमरीका की जानिब से अबनाए हुरमुस पर ईरान की ड्रोन्स और जनूबी ईरान के अहम शहर बंदर अब्बास में एक फौजी ठिकाने को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान की जानिब से मिसाइल हमला किया गया है। 3 दिनों में यह दूसरी मरतबा है कि अमरीका ने ईरान में ठिकानों को निशाना बनाया है और कहा है कि ये खुद का दिफा करने की खातिर किए गए हैं। इन कार्रवाइयों से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंगबंदी टूटने का खतरा पैदा हो गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्रा सिंह बैन अलाक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना करेगी। गुजरात टाइटन्स की टीम क्वालिफायर 1 में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस लानत से निपटने के सिलसिले में दोहरा मैयार नहीं हो सकता। मगरबी एशिया में जारी जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। भारत और कनाडा ने साल के आखिर तक सेपा बातचीत मुकम्मल करने के अज़्म का इरादा किया है। और मौसमियात से मुतालिक आलमी तंजीम ने कहा है कि आइंदा 5 बरस में आलमी दर्ज हरारत में रिकॉर्ड इजाफे का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: डीडी वेव्स 1078 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से सामेन अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रोग्राम तारीख साज।
1: पृथ्वीराज कपूर एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक फनी अहद और अहसाजी का इस्तेहारा है। यह एक ऐसा नाम है जिसके राज का सिलसिला आज भी फिल्मी दुनिया पर कायम है। पृथ्वीराज कपूर हिंदुस्तानी फिल्म सनत के मेहमानों में से एक है जिनका नाम लिए बगैर न फिल्म की तारीख मुकम्मल हो सकती है और न ही हिंदुस्तानी थिएटर का तस्करा पूरा किया जा सकता है। सख्त और संगीन हालात से गुजरकर उन्होंने अपने फन की एक रंगीन दुनिया आबाद की है। उनकी आवाज की खनक, आंखों का जलाल और वजूद का विकार हर फिल्म बीन के जहन पर उस वक्त भी सवार था और आज भी गालिब है। 20वीं सदी का इब्तदाई हिस्सा हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तामीर तश्कील का दौर है। उस वक्त इस मैदान में ग्लैमर से ज्यादा हुनर की कदर कीमत थी, बल्कि कहना ज्यादा सही होगा मशक्कत, अकलेजी और फन की कदरदानी का वो दौर था। इसलिए फनकारी और अदाकारी का जौहर रखने वाले ही इस कारजान में कदम रखते थे। इस दुनिया में बसने वालों के पास वसाइल कम और जज्बा इसार ज्यादा था। हम याद दिला दें कि फिल्म सनत का इब्तदाई दौर महजिब समाज के लिए काफी देर तक नाकाबिल कबूल और नापसंदीदा रहा। चूंकि इस दौर के फिल्मी पर्दे पर कहवा खाने का गलबा था, इसलिए शरफा और तालीम याफ्ता और आला मकाम घरानों के लिए फिल्मों में काम करना मायूब समझा जाता था। ऐसे पुराजमाइश दौर में पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म सनत की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। कहा जा सकता है कि आज हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पृथ्वीराज कपूर की रहीन मिन्नत है। जज्बा इशारो जुनू देखिए कि उन्होंने पै दर पे अपने तीन नौनिहाल खोए जो कम उम्र में ही फौत हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज कपूर ने हौसला नहीं हारा और अपने तख्लीकी अमल में मसरूफ रहे। पृथ्वीराज कपूर बुनियादी तौर पर थिएटर आर्टिस्ट थे। उनका यह तामीरी और खुशगवार जुनून उरूज को पहुंचा। उन्होंने अपनी तालिबिल्मी के जमाने में थिएटर करना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उनके अहले खाना उनको कानूनदा और पेशे से वकील बनाना चाहती थी, लेकिन उनका जहन कानून के बजाय फन की तरफ मायल रहा। इसी इसमें में पृथ्वीराज कन्फ्यूजन और द्वैत का शिकार हो गए और तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने अपनी एक राह मुतायन की और वकालत के पहले साल के बाद ड्रॉप आउट हो गए। पृथ्वीराज कपूर 3 नवंबर 1906 को लायलपुर में पैदा हुए। कपूर के वालिद विशेष्व अमित कपूर एक पुलिस ऑफिसर थे और पेशावर में तैनात थे और उनके दादा केशवमिल कपूर तहसीलदार के मनसब पर फायज थे। इस एतबार से घराना तालीम याफ्ता और बारसूख माना जाता था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अहले खाना पृथ्वीराज कपूर को कानून दा मनाना चाहती थी, लेकिन उनका रुझान तो किसी और जानी मायल था। यह 1928 का जमाना था। पृथ्वीराज कपूर की उम्र उस वक्त महज 22 साल की थी। उन्होंने अपनी एक अजीजा से कुछ रकम कर्ज ली और किस्मत आजमाई के लिए बम्बई आ गए। यहां आकर उन्होंने इम्पीरियल फिल्म कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। 1929 में पृथ्वीराज कपूर ने एक एक्स्ट्रा अदाकार के तौर पर फिल्म दुधारी तलवार में काम किया। यह उनकी अवलीन फिल्म खामोश थी। उस वक्त कौन जानता था कि एक्स्ट्रा अदाकार फिल्म जगत का बड़ा मेहमान और बड़ा नाम बनेगा। इसके नाम से दुनिया में इस देश की फिल्म इंडस्ट्री की पहचान होगी। इसी साल उन्होंने फिल्म सिनेमा गर्ल में काम किया और इस तरह 9 खामोश फिल्मों में काम करने के बाद 1931 में

0: है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी तरह विराम लग गया। विपक्ष के इन सवालों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय रावत जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950

0: मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
1: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें SIR का कितना महत्व रहता है?
2: बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू है और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है SIR के जरिए, और थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे, और घटेंगे क्यों, अच्छे कारण से घटेंगे, अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, ये इनका कोई महात्म्य नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो, या जो चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के उन लोगों का नाम हो, या जो लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो, तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए, और जो लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए, और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया, क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है, वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिविजन, उसमें क्या है, उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं इसमें, लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्टोरल रोल आपके सामने रखा गया है, और जो लोग रहना चाहिए वो रहते हैं, जो लोगों को नहीं रहना है उनको निकाला जाता है, मतलब वो नाम को, लोगों को नहीं उस नाम को, और 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो इससे लगता है कि अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल अगर इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है आर्टिकल 324 के तहत, तो वो काम जो 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
1: जो प्रक्रिया हुई, जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकंड फेज में, और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया SIR को लेकर, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले?
2: देखिए, जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के है। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका

0: चीजें निकालना, इन सब इलेक्शन कमीशन का काम है, सिंबल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि भाई एसआईआर क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई एसआईआर इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है, इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए, जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए और बार बार प्रश्न हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है उस सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करेक्शन कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। 60 करोड़ लोगों का एसआईआर हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नोलेज करना पड़ेगा और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है उसका मतलब ये है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काठगड़े में खड़े करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज। एक है कि भाई जो डेड है, जो डुप्लीकेट है, जो माइग्रेटेड है, इनका नाम को जरूर निकलना है, एसडी वोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए, लोगों का एलिजिबिलिटी उनके हिसाब से, उनको अगर नहीं है तो उनको निकालना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए। नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन। इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संवैधानिक बात होता है, राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी है इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, टू थ्रो द बेबी टुगेदर विद बाथ वाटर, अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को भी फेंक देंगे क्या? तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था, लेकिन आज की तारीख में खास करके आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन के साथ बाकी एसआईआर की जितना प्रक्रिया है, ये वाली और आने वाली कभी भी एसआईआर होगा वो ठीक से हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है जो जो सवाल करें सुझाव दें, सुने जो सवाल करें उसके जवाब दें।
1: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
0: एक तो क्या आप आर्टिकल 3326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टेड होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए। तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन डालेगा। तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है बहुत सही बोला है, क्योंकि एसआईआर सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर बाहर के नागरिक ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है। एसआईआर सोल्यूशन नहीं है ना, नागरिकता किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिटीजनशिप एक्ट अलग है, उसका अथॉरिटीज अलग है और वो जो अथॉरिटीज है वो देखें कैसे लोगों को बाहर देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का काम अलग है, सिटीजनशिप एक्ट है इनका है। एक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसी के तहत लेकिन जो इलेक्टोरल रोल में रखेंगे वो नागरिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायलमा को या ये जो चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया था इलेक्शन कमीशन, ये तो मेरे को लगता है कि जो जजमेंट था बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था। ये इतना सारे महीनों से चल रहा है ये सारे हियरिंग्स कि इसमें बहुत कीमती ऑब्जर्वेशन दिया है बीच में सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनली जजमेंट में कन्वर्ट हुआ कल। लेकिन उसने बोला है कि जो फाइनल सिटीजन कोई है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट टू इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है। वो एक लिमिटेड पर्पस अगर माने, लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा

0: पर्सनालिटी है एक सिटीजन का, वो डिसाइड करेगा, उसके लिए एक्ट है, अथॉरिटीज अलग है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है और ये भी सही है, पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है और ये भी सही है।
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूँ बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, ये सब स्थिति ज्यादा था। एक तो पॉलिटिकल साइड से, एक बार रियल टोपोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल सेंस में या हिस्टोरिकल सेंस में या सोशियोलॉजिकल सेंस में, वहां इस इशू का ज्यादा एक रिलेवेंस था, वैलिडिट था और पॉलिटिसाइज तो था ही, तो इसीलिए वहां से अगर निकल गया है। और अभी मैंने जैसे कहा ना 60% आबादी जो है, वोटर्स आबादी जो है 100 करोड़ मान लो रफली थे 2024 में, शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया 40 करोड़ का, तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था। उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें, तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छे नतीजा आया था। जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन में भी, उसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि इस SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, ये उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो लेकिन जो एलिजिबल है देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि वो नाम लोगों का निकल जा रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए कि जो जो लोग देश में जहां जहां है जो एलिजिबल है आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए, फिर जोड़ने का मुहिम अच्छी तरह हो पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
2: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप NewsOn AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, आलमी खबरों के साथ मैं शाहिद अबीद। पर इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर फितरी वजूहत के सबब मौसमी आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का जायजा लेगी कि इस मामले से निपटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मियार नहीं हो सकता। मगरबी एशिया में जारी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरतहाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। भारत और कनाडा ने साल के आखिर तक CEPA बातचीत मुकम्मल करने के अजम का इरादा किया है। बाहमी इक्तसादी ताल्लुकात और कारोबारी शराकत दारियों को फरोग देने के लिए तजारत और सरमायाकारी फोरम का आगाज किया है। फीफा आलमी कप 2026 से पहले इबोला वायरस के फैलने के पेश नजर अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने सफर से मुतालिक इकदाम का ऐलान किया है। मसलियात से मुतालिक आलमी तंजीम ने कहा है कि आइंदा 5 बरस में आलमी दर्जे हरारत

0: दूसरी मरतबा है कि अमरीका ने ईरान में ठिकानों को निशाना बनाया है और कहा है कि ये खुद का दिफा करने की खातिर किए गए हैं। इन कार्रवाईयों से वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंगबंदी टूटने का खतरा पैदा हो गया है। भारत के लिए पेट्रोल लाने वाला तेल टैंकर निसोस केरोस ने कामयाबी के साथ आबदाई हुरमुस पार कर लिया है और वो विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। तवक्कुल है कि वो 3 जून तक वहां पहुंच जाएगा। मार्शल जजायर परचमबरदार जहाज 21 मई शारजा से रवाना हुआ था। ईरान की न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है कि ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने जारी कशीदगी के पेश नजर 24 घंटे के अंदर आबनाई हुरमुस के रास्ते 23 तजारती जहाजों को गुजरने के सिलसिले में सहूलतकारी की। सदर ट्रंप की क्यादत में अमरीका ने आबनाई हुरमुस के रास्ते के जरिए समुद्र में जहाजों की आजादाना नकल व हरकत की जरूरत पर जोर दिया। भारत और कनाडा ने इस साल के आखिर तक जामे इकतसादी शराकत दारी मुआहिदा CEPA से मुतालिक मुजाकरात से इतफाक करने के तय अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया है। तिजारत और सरमायाकारी फोरम पर भारत और कनाडा के मुश्तरका बयान में सनअत और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल और कनाडा के बैन अल-अक़वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू ने बाहमी तौर पर सूदमंद CEPA मुआहिदा को आगे बढ़ाने के तय अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया है। अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने अफ्रीका के हिस्सों में इबोला वायरस के फैलने के पेश नजर अफ्रीकी खित्तों से आने वाले अफराद के लिए सेहत आम से मुतालिक सफरी इकदामात के सिलसिले में एक सह फरीकी बयान जारी किया है। इसका मकसद फीफा आलमी कप 2026 के दौरान इम्कानी तौर पर इसे देखने आने वाले लाखों अफराद, मद्दाहों, खिलाड़ियों और सयाहों को तहफ्फुज फराहम करने के साथ साथ सफर और तिजारती सरगर्मियों को बरकरार रखना है। मौसमियात से मुतालिक आलमी तंजीम ने कहा है कि आइंदा 5 बरस में आलमी सतह पर दर्जे 4 हरारत में रिकॉर्ड इजाफे का इम्कान है। WMO की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2026 से 2023 के दौरान जमीनी दर्जे हरारत 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जो औसत 1850 से 1900 से ज्यादा है। भारतीय मौसम महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हबस के हालात से राहत मिली। चेम्सफोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंदर सिंह बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सामना करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर जरूरी फितरी वजूहात के सबब मौसमी आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का जायजा लेगी कि इस मामले से निपटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस लानत से निपटने के सिलसिले में दोहरा मियार नहीं हो सकता। मगरबी एशिया में जारी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

रेडियो मिर्ज 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैरकानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मसनूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का जायजा लेगी कि इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलेकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मयार नहीं हो सकता। मगरबी एशिया में जारी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरतहाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई तक के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। भारत और कनाडा ने साल के आखिर तक सेपा बातचीत मुकम्मल करने के अज्म का इरादा किया है। बाहमी इक्तिसादी ताल्लुकात और कारोबारी शराकत दारियों को फरोग देने के लिए तिजारत और सरमायाकारी फोरम का आगाज किया है। और मौसमियात से मुतालिक आलमी तंजीम ने कहा है कि आइंदा 5 बरस में आलमी दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफे का इम्कान है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी पहली मजलिस की नशरियात अभी तक आपने सुनी। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

चाहता हूं गाइड सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये कहानी थी बंधनों से आजादी की, कला की और इंसान के भीतर छिपे भगवान तक के सफर की। जब रोजी अपने घुंघरू बांधती तो वह सिर्फ नाचती नहीं, वह अपने समाज की बीड़ियों को तोड़ती है, और जब वो गाती है ना तो लगता है जैसे जिंदगी खुद झूम रही हो।

क्या बात है, श्रोता इस गाने को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज और वहीदा जी का वो बेबाक डांस। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब राजू अपनी बनाई दुनिया में खो जाता है। प्यार, धोखा, गलतफहमी।

और फिर जेल का सफर। फिल्म का दूसरा भाग हमें एक अलग ही दर्शन की ओर लेकर जाता है, जो एक आम इंसान परिस्थितियों के चलते महात्मा बन जाता है।

श्रोताओं, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में जो दर्द इस गाने में है वो सीधे दिल में उतर जाता है और छूता है दिल को। राजू का अकेलापन, उसकी तड़प, विजयानंद ने इस फिल्म के क्लाइमेक्स को जिस सूफिया और जिस अंदाज में पेश किया है वो आज के दौर के डायरेक्टर्स के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह है। मौत और आत्मा का वो संवाद, न सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं और सिर्फ मैं हूं।

दोस्तों, अगर आपने आज के दौर की भागदौड़ में इस क्लासिक फिल्म को नहीं देखा या इसके गानों को तसल्ली से नहीं सुना तो आज की रात घंट के नाम कर दीजिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी कुछ अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: हम अपने श्रोताओं को ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे और आपको इस फिल्म के दो गीत जरूर सुनवाएंगे। और आइए आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है, जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। ठंडे मन से बात सुनूंगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूं।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इसी कार्यक्रम को हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं। और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें है अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, ऐसे ही और भी श्रोता हैं हमारे, संजय साहू, धर्मेंद्र चीपा, लाल गिरी, बबलेश पवार, प्रकाश वर्मा, स्वर्ण सिंह, सुरेश यादव, अमोल टैंडे, राजकुमार डूडी, देव नारायण साहू, संजय और अनिल मोहन, बिट्टू, और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को इतने प्यार से सुन रहे हैं। और चलते चलते आपको इस कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनाते हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

पैनल लगाई। सर्वोच्च अदालत ने देखिए साल भर की अदालतों ने अपने फैसले वास्तव में रखने के 3 महीनों के अंदर अंदर उसने समान दिन निर्देश दिए। भारत के कैनेडा ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते तहत इस साल उसका कारोबार पूरी करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई। पंजाब दी 102 स्थानक इकाइयां लई होईआं चोणां वास्ते वोटां दी गिणती सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ जारी। एशियन अंडर 20 एथलैटिक चैंपियनशिप च भारतीय खेडां ने ट्रैक ते फील्ड मुकाबलें च शानदार प्रदर्शन कीता। आईपीएल क्रिकेट विच अज दूजे क्वालीफायर मुकाबले च राजस्थान रॉयल्स दा मुकाबला नू चंडीगढ़ विखे शामी 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स नाल होवेगा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के खेत्र में एक इतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय

निकाट अब आप उम्मीदवार निकाट बीजेपी ने 11 से 12 पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। कमीशन मुताबिक सूबे भर 1,973 वार्डा 80 वार्ड अजिहे ने जिथे कई उम्मीदवार सर्वसम्मति चुने जा चुके ने। इन्होंने चोणों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी श्रोमणी अकाली दल आजाद समेत कुल 7,554 उम्मीदवार चुनाव मैदान च ने। आखिरी गिनती राज चुनाव कमिश्न वालों जल्द ही जारी की जाएगी। इन्होंने चोणों 26 मई वोटा पईआं सन जिस विच कोई 35 लाख तो वध वोटा 22,38,247 वोटा ने वोटा पाईआं सन जिस नाल लगभग 64% पोलिंग दर्ज की गई सी। उपराष्ट्रपति सी वी राधाकृष्णन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सबका प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने उन्होंने बरसी से श्रद्धांजलि भेंट की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय पेंडू विकास के किसान भाईचारे के सशक्तिकरण प्रति चौधरी चरण सिंह की अतुट वचनबद्धता हमेशा याद रखी जाएगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सबका प्रधानमंत्री का पूरा जीवन देश के किसानों मजदूरों के पिंडों के उन्नति में समर्पित सी। अमित शाह ने कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने आजादी संग्राम से लेकर एमरजेंसी के समय तक लोकतंत्र कदरों कीमतों को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। जम्मू में कठुआ और माधोपुर रेल हिस्से के दरमियान स्थित रेलवे पुल नंबर 17 के मरम्मत का काम पूरा होने के बाद 31 मई तक दोनों रेल पटरियों और रेल सेवाएं पूरी तरह बहाल कर दी जाएंगी। यह पुल पिछले साल हड़ां कारण नुकसान आ गया था। इसके अलावा उत्तरी रेलवे के जम्मू डिवीजन ने गर्मी की छुट्टियों दौरान बढ़े हुए मुसाफरों के ट्रैफिक को पूरा करने दो रेलगड्डियों से स्थायी तौर पर वाधू डब्बे जोड़ने का फैसला किया। 6 जून से 12 जून तक जम्मू तवी नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में एक वाधू थर्ड एसी डब्बा जोड़ा जाएगा। 6 से 13 जून तक ही माता वैष्णो देवी कटरा नवी दिल्ली एक्सप्रेस में एक स्लीपर क्लास डब्बा जोड़ा जाएगा। जम्मू के सीनियर डिवीजनल कमिश्नर मैनेजर उचित सिंगल ने कहा कि यह कदम मुसाफा में पुष्टि की गई टिकटों प्राप्त करने मदद करेगा। एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय सीटों ने ट्रैक टू फील्ड मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संगीन तय किया है। IMD ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील दें। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जाती आजादी के मामलों में तेज रफ्तारी से किए गए फैसलों की जरूरत होती है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा

0: कि जमानत की दरखास्तों में फैसले उसी रोज सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और अपलोड कर देना चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशा होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। डीडी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि बगैर किसी गलती के एक मुनज्जम और मुनासिब ढंग से दोबारा इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। तलबा से खिताब करते हुए प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है। जो रक्षक था वही रक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारे प्रयास।
0: वजीर मौसूफ ने इस बात का फिर यकीन दिलाया कि बढ़ती हुई तशवीश के पेश नजर गलती से पाक इम्तिहान का इनेकाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इम्तिहान के अमल में मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। भारत ने माहौल के लिए साजगार तवानाई के अपने सफर में एक तारीखी संग मील तय किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 40 लाख घरों को छत पर नस्ब किए जाने वाले शमसी तवानाई के निजाम की सहूलत फराहम कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि काबिल तजदीद तवानाई से मुतालिक एक पहल से भी ज्यादा इस अक्सर तब्दीली लाने वाली स्कीम से शहरी महज तवानाई के खर्च करने वाले लोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वो बिजली के पैदाकार भी बन गए हैं। इस स्कीम से कुंबे अपने बिजली के अखराजात में कमी कर सकेंगे, सरकारी सब्सिडीज से फायदा उठा सकेंगे और बिजली के अखराजात पूरी तरह खत्म कर सकेंगे। वजीर मौसूफ ने खासतौर पर कहा कि हर घर में जब शमसी तवानाई होगी तो मुल्क तवानाई की यकीनी फराहमी, माहौलियाती इस्तेहकाम और खुद कफील विकसित भारत के तसव्वुर को पूरा करने की जानिब बढ़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैन अलाकवामी सरहद से मुतसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरमी नाला और क्रीक इलाके का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे और सीनियर अहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सामने के सिलसिले में तबादले ख्याल करेंगे। टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि भारत वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभरा है और इस्लाहात और साजगार पॉलिसी की बदौलत टेक्सटाइल शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है। आंध्र प्रदेश के अपने दो रोजा दौरे के दौरान वजीर मौसूफ ने कृष्णा जिले में मल्लावली सनती पार्क में मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत टेक्सटाइल मार्केट 15 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा के बकदर है और हुकूमत इसे 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक ले जाने के लिए काम कर रही है। जनाब सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल सनत तेजी से वसत पा रही है और उन्होंने भारतीय दस्तकारों को वसी आलमी मंडी तक रसाई फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि पैदावार से व्यवस्था तरगीबात की स्कीम पैदावार बढ़ाने में मदद कर रही है और भारतीय ब्रांड्स को फरोग दे रही है। इसके अलावा टेक्सटाइल शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को रागब कर रही है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तिजारत और सनत के 50 से ज्यादा सरबराहों के साथ एक गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसलेट जनरल और भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज रफ्तार तरक्की इस्लाहात पर मबनी तजारती माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसी तर मौके पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में आलमी सरमायाकारों के लिए मौके वसी करने इस्लाहात पर मबनी कारोबारी माहौल बनाने के तहत भारत के अजम को दोहराया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज अकवाम मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के बैन अलाकवामी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली यूएन अमन फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने अकवाम मुत्तहिदा के अमन कायम करने के मिशन के तहत अकवाम मुत्तहिदा की अमन फौज में खिदमत अंजाम देने वाली बहादुर मर्द खवातीन फौजियों की सताइश की जो आलमी सतह पर अमन सलामती को बरकरार रखने के

0: मैं अजमतल कायम है। यह खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारतीय मौसमियात महकमा IMD ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश की पेशगोई की है। 2026 के मानसून के लिए दूसरे मरहले की ज्यादा दिन की पेशगोई करते हुए IMD ने डायरेक्टर जनरल डॉ मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में इस मुद्दत के दौरान मामूल की बारिश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि शिमाल मगरिब वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत में इस साल जून और सितंबर के दरमियान मामूल से कम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कम से कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेरे तामीर पुल गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। ये पुल मोरा कंद्र से कंदौर गांव को मिलाता है जो बेतवा दरिया पर तामीर किया जा रहा है। यह हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया जब कुछ कारकुन बारिश के दौरान एक हाइड्रा मशीन के नीचे खड़े थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इको निजाम मजीद आगे बढ़ेगा। 2026 की एशियन Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलीट्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में कई रिकॉर्ड बनाए। खवातीन के 100 मीटर मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल भारत की पहली खातून बन गई हैं। नितिन गुप्ता ने 5000 मीटर के रेस वॉक में खिताब जीता और खवातीन की ट्रिपल जंप में साधना रवि ने 12.78 मीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह बिन लखवामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का सामना करेगी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा संगमील तय किया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Nipam wins bronze at women's 100 meter at Under-20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. We have a report. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to the litigants, underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi

0: निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, तो अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को भेज किया गया है, जो रक्षक था वही रक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रूपये से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है।

0: उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरू में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरू में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री महिंदा सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई

0: यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
1: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्णलहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरूष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जो पर्दे पर आता है तो खुद गायब हो जाता है और सिर्फ उसका किरदार जिंदा रहता है। एक ऐसा एक्टर जिसे देखकर नई पीढ़ी अभिनय सीखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के उस नायाब कलाकार की जिसे दुनिया पंकज कपूर के नाम से जानती है। यही नहीं, चाहे वो दूरदर्शन के जमाने में गाजर चबाने वाला जासूस करमचंद हो या फिर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटता लाचार मुसद्दीलाल, उन्हें हर रंग को ऐसे जिया है वो किरदार अमर हो गए हैं। आज के इस सफर में हम उनकी थिएटर लाइफ, आइकॉनिक टीवी शोज और सिनेमा के उन किरदारों की बात करेंगे जिसने उन्हें एक्टर्स का एक्टर बनाया। तो चलिए सफर की शुरुआत।

क्या बात है श्रोताओं, कितना खूबसूरत गीत थे। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कलाकार। पंकज कपूर साहब का जो जन्म है वो पंजाब के लुधियाना में हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते दिल थिएटर की तरफ धड़कने लगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचे और वहां से जो निखर कर निकले तो कमाल कर दिया। श्रोताओं, क्या आपको याद है साल 1985 जब भारत में रंगीन टेलीविजन नया नया आया था। उस दौर में एक जासूस आया जो अपनी जेब में गाजर रखकर चलता था, बात बात पर अपनी असिस्टेंट किटी से कहता था, शट अप किटी। जी हां, करमचंद। पंकज जी ने उस जासूस को इतना देसी और इतना दिलचस्प बना दिया कि बच्चे बूढ़े सब उसके दीवाने हो गए। उस दौर में लोग टीवी के सामने से हिलते नहीं थे। तो आइए पंकज कपूर के इसी कमाल के अंदाज को याद करते हुए सुनते हैं एक और बेहतरीन निगमा।

कार्यक्रम एक कलाकार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बहुमुखी कलाकार पंकज कपूर साहब की। दोस्तों, टीवी पर नाम कमाने के साथ साथ पंकज कपूर जी ने समानांतर सिनेमा का एक मजबूत स्तंभ बनाया। फिल्म जाने भी दो यारो, इसका वो भ्रष्ट कोयला माफिया तरनेजा आपको याद होगा। साल 2003 में जब विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ पर फिल्म बनाई, जी हां, फिल्म का नाम था मकबूल, पंकज कपूर ने जहांगीर खान उर्फ अब्बा जी का किरदार इसमें प्ले किया और इस किरदार में उन्होंने जान फूंकी। उसे देखकर हॉलीवुड क्रिटिक्स भी दंग रह गए। उनकी वो झुकी हुई कमर, वो ठहरी हुई आंखें और वो आवाज बिना चिल्लाए भी पर्दे पर खौफ पैदा कर देते थे। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए इस फिल्म का एक गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। साल 2001 में टीवी शो आया ऑफिस ऑफिस। पंकज कपूर ने इसमें मुसद्दी लाल का किरदार निभाया, एक आसाम आदमी जो रिटायरमेंट के बाद अपने ही पैसे के लिए, अपनी पेंशन के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चपले घिसता है। पंकज जी ने इस किरदार में कॉमेडी और ट्रेजेडी का ऐसा अनूठा मिश्रण पेश किया कि मुसद्दी लाल हर घर के, या हम यूं कहें कि हर घर का हिस्सा बन गए। वैंग किसे कहते हैं और बिना लाउड हुए कॉमेडी कैसे की जाती है, यह पंकज कपूर ने इस शो से साबित किया। पंकज कपूर साहब सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि वो एक बेहद संवेदनशील लेखक और निर्देशक भी हैं। उनकी आवाज में जो ठहराव है, वो जब कविताएं पढ़ते हैं या मंच पर दुपही जैसे सुर प्ले करते हैं, तो पूरा ऑडिटोरियम मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनता है। उनकी विरासत को उनके बेटे शाहिद कपूर और बेटी सना कपूर भी आगे बढ़ा रही हैं। पंकज जी आज भी जब पर्दे पर आते हैं तो ये साबित कर देते हैं कि स्टारडम से कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक्टिंग की बादशाहत तो रहती है। तो आज आपको सुनाते हैं पंकज कपूर जी की फिल्म का ही एक और सुकून भरा गीत।

दोस्तों, वक्त जो है वो पंख लगाकर उड़ जाता है जब हम बात करते हैं किसी खास कलाकार की। आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने पंकज कपूर के फिल्मी सफर के कुछ पन्नों को पलटने की कोशिश की। करमचंद की गाजर से लेकर अब्बा जी के पान चबाने के अंदाज तक पंकज कपूर हमेशा हमारे दिल में एक बहुमुखी कलाकार के रूप में रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल ऐसे कार्यक्रम में एक नए कलाकार की कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें सुनते रहिए और अपने दोस्त मनोज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो घड़ी में दिन के 3 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: मेरी म्यूजिक 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसले 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज का यकीन दिलाया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निपटने के सिलसिले में दोहरा मयार नहीं हो सकता। पीएम सूर्य घर स्कीम ने 40 लाख घरों को रूफटॉप सोलर की सहूलत फराहम करके एक बड़ा समय मील तय किया है। भारत और कनाडा ने साल के आखिर तक सीईपीए बातचीत मुकम्मल करने के अनु का इरादा किया है। और भारतीय एथलीट निपम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा हासिल किया है। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क के सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि वो अपने महफूज किए गए फैसलों को 3 माह के अंदर अंदर सुना दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फैसलों को सुनाने में ताखीर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि जाती आजादी के मामलों में तेज रफ्तारी से किए गए फैसलों की जरूरत होती है, जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि जमानत की दरख्वास्तों में फैसले उसी रोज सुना देने चाहिए और अगर उन्हें महफूज रखा जाता है तो फिर उन्हें अगले ही दिन सुना देना चाहिए और अपलोड कर देना चाहिए।

आशा भोसले की आवाज में ये कलाम अभी आपने उमराव जान फिल्म से सुना। अब सुनिए भूपेंद्र को, फिल्म है बाजार।

आशा भोसले की गाई हुई इस गजल के साथ ही जो आपने सुनी मजदूर फिल्म से, आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। समीन गुज़श्ता रोज उर्दू के मारूफ शायर डॉ बशीर बद्र इस दारे फानी को अलविदा कह गए। उर्दू सर्विस की जानिब से पेश है उर्दू अदब के इस दरख्शां सितारे के नाम पुरखलूस खिराज अकीदत ये ताजियती प्रोग्राम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। समीन एक ऐसा शख्स इस जहां से उठ गया जिसने पीढ़ियों को अपने खूबसूरत दिलगुदाज अशार से मुतासिर किया। उनकी शायरी कभी नगमा बनकर तो कभी जिंदगी का फलसफा बनकर हमारे इर्द गिर्द सांस लेती रही। उस शख्स का नाम है डॉक्टर बशीर बद्र। बशीर उर्दू के उन शोरा में से थे जिन्होंने शायरी को सहल अंदाज में लोगों तक इस तरह पहुंचाया गोया सबके दिल की ही बात हो, और अपने इसी अंदाज या इसी उसलूब की बदौलत वो हर खासवाम के दिल की जबान बन गए। उनका चले जाना गोया शायरी के एक मुकम्मल दौर का खात्मा है, लेकिन अपनी शायरी अपने अल्फाज और अंदाज के साथ हमेशा वो हमारे दिलों में रहेंगे और हमारे लबों पर उनके गीत उनकी गजलें हमेशा यूं ही मचलती रहेंगी। उनकी गजलों में मोहब्बत

0: डॉक्टर बशीर बद्र, जिन्होंने मोहब्बत, जुदाई, जिंदगी और इंसान दोस्ती को नहायत सादा मगर दिल में उतर जाने वाले अंदाज में बयान किया। बशीर बद्र उर्दू शायरी का एक ऐसा मोतबर नाम थे जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी मुनफरिद गजलों के जरिए कायरीन और सामईन के दिलों पर राज किया। उनकी शायरी में मोहब्बत, जुदाई, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत, यादों की कसक और इंसानी जज्बात की सादगी भरपूर अंदाज में झलकती है। वो जब भी किसी मुशायरे में शरीक होते थे तो सामईन बड़ी बेताबी से उनका इंतजार करते थे। उनका मुनफरिद लहजा और सादा मगर दिल में उतर जाने वाला अंदाज उन्हें दिगर शोरा से मुमताज बनाता था। बशीर बद्र की शायरी आने वाली नस्लों के लिए भी एक कीमती अदबी सरमाया रहेगी और उर्दू अदब में उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू शायरी का वो मोतबर नाम है जिन्होंने गजल को जदीद एहसासात से जोड़ा।
1: उनका असल नाम बशीर अहमद है, लेकिन दुनिया उन्हें बशीर बद्र के नाम से जानती है। 15 फरवरी सन 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पैदा होने वाले डॉक्टर बशीर बद्र ने इब्तदाई तालीम के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और पीएचडी मुकम्मल की। बाद अज़ां उन्होंने तदरीसी जिंदगी का आगाज किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद तकरीबन 17 साल तक मेरठ कॉलेज में उर्दू शोबे के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बशीर बद्र ने सिर्फ 7 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी जबानों पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उनकी शायरी की सबसे नुमाया खूबी शायरी की सादगी और जज्बाती गहराई थी जिसने

0: करते रहे, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी हमारा साथ बना रहा। मैं कह सकता हूं कि हमारी गजल की दुनिया का एक अजीम सितारा इंतकाल कर गया।
1: चराहों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम और मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।

तो ही आप सुन रहे थे मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बद्र पर उर्दू सर्विस का ये पुरखलोस खराज अकीदत, एक ताजियती प्रोग्राम। पेशकश नवीन कुमार की थी। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश हैं चंद फिल्मी नगमे।

कुमार सानू की आवाज में यह नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कसूर। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर कर रहे हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म है तुम सा नहीं देखा।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये नगमा था प्यार झुकता नहीं फिल्म से। अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश। आवाजी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म है मिस्टर आशिक।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये नगमा हमने आपको बॉबी फिल्म से सुनवाया। इसके साथ ही फिल्मी मौसीकी का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शाहिद हबीब। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बेमिसाल कामयाबी थी, जहां भारत ने पाकिस्तान को चार दिन के अंदर जंगबंदी की दरखास्त करने पर मजबूर कर दिया। भारत आने वाला तेल टैंकर निसोस के रोस ने कामयाबी से आबनाई हुरमुज को पार कर लिया है और वो अगले महीने की 3 तारीख तक विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया है। आईएमडी ने जून के महीने में पूरे मुल्क में मामूल से कम मानसून बारिश और कुछ रियासतों में मामूल से ज्यादा गर्मी की पेशगोई की है। और भारतीय एथलीट निगम ने हांगकांग में 20 साल तक की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में खवातीन की 100 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। ऑपरेशन सिंदूर पर मबनी यादगारी किताब का इजरा करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक गैर मामूली कामयाबी थी, जिसमें भारत ने सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को जंगबंदी की दरखास्त करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन उन तमाम जंगों से मुख्तलिफ था जो भारत ने अब तक लड़ी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में राजनाथ सिंह ने कहा कि यह इशात सिर्फ तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इस पे बहादुर फौजियों के जाती तजुर्बात और जज्बात की भी अक्कासी की गई है। उन्होंने कहा कि यह किताब जदीद अंदाज की जंग के इंसानी पहलुओं को भी उजागर करती है, जहां क्यादत, जुरत, दबाव के माहौल में दुरुस्त फैसला साजी और अज़्म वाबस्तगी हिकमत अमली को कामयाबी में बदल देते हैं। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि यह किताब उन जाबाजों को खराज तहसीन है जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम दिया और अवाम को फौजियों की कुर्बानी, लगन और साबित कदमी से करीब से रोशनास कराती है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि इस किताब से तहरीक हासिल करें और ऐसे जिम्मेदार शहरी बने जो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ्फुज के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों की कदर कर सकें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इनकिसारी, अफो दरगुजर और महजब रवैया शख्सियत का असली जेवर है। संस्कृत का एक कौल शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन खूबियों के साथ मुल्क के अवाम एक तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील के लिए तेजी के साथ सरगर्म अमल हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज अक्वामे मुत्तहिदा की अमन कायम करने वाली अफवाज के माबैन बैन अक्वामी दिन के मौके पर दुनिया भर में अमन कायम करने वाली यूएन अमन फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने अक्वामे मुत्तहिदा के अमन कायम करने के मिशन के तहत अक्वामे मुत्तहिदा की अमन फौज में खिदमत अंजाम देने वाली बहादुर मर्दों ख्वातीन फौजियों की सताइश की जो आलमी सतह पर अमन और सलामती को बरकरार रखने के अपने अज़्म पर कायम हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तिजारत और सनत के 50 से ज्यादा सरबराहों के साथ एक

गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। न्यूयॉर्क में भारत के कौंसुलेट जनरल और भारत अमरीका स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम ने मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग में उन्होंने भारत की तेज रफ्तार तरक्की इस्लाहात पर मबनी तजारती माहौल और आलमी सरमायाकारों के लिए वसी तर मौके पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आलमी सरमायाकारों के लिए मौके वसी करने, इस्लाहात पर मबनी कारोबारी माहौल बनाने के तई भारत के अजम को दोहराया। जनाब गोयल ने कहा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत की मजबूत तरक्की की दास्तान को उजागर किया। उन्होंने भारत अमरीका तिजारत को वसी करने, सरमायाकारी में इख्तरा पैदा करने और मुश्तरका खुशहाली के लिए सप्लाई चेन शराकत दारी के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। भारत और कनाडा ने इस साल के आखिर तक जामे इक्तिसादी शराकत दारी मुआहिदा CEPA से मुतालिक मुजाकरात से इत्तफाक करने के तय अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया है। तिजारत और सरमायाकारी फोरम पर भारत और कनाडा के मुश्तरका बयान में सनअत और तिजारत के वजीर पीयूष गोयल और कनाडा के बैन अल-अक़वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू ने बाहमी तौर पर सूदमंद CEPA मुआहिदा को आगे बढ़ाने के तय अपनी अहदबस्तगी का इरादा किया। वजीरों ने दोनों मुल्कों में कारोबारी मौके और माशी तरक्की को फरोग देने वाले नतीजे हासिल करने के लिए दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को मुस्तहकम करने के इरादे का भी इरादा किया। भारत के लिए पेट्रोल लाने वाला तेल टैंकर निसोस के रोस ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है और वह विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। तो है कि वह 3 जून तक वहां पहुंच जाएगा। मार्शल जजायर परचम बरदार जहाज 21 मई शारजा से रवाना हुआ था। ईरान की न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है कि ईरानी पासदारान इनकलाब की भारिया ने जारी कशीदगी के पेश नजर 24 घंटे के अंदर आबनाए हुरमुज के रास्ते 23 तिजारती जहाजों को गुजरने के सिलसिले में सहूलतकारी की। सदर ट्रंप की क्यादत में अमरीका ने आबनाए हुरमुज के रास्ते के जरिए समुन्द्र में जहाजों की आजादाना नकलो हरकत की जरूरत पर जोर दिया है। अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने अफ्रीका के हिस्सों में इबोला वायरस के फैलने के पेश नजर अफ्रीकी खित्तों से आने वाले अफराद के लिए सेहत आमा से मुतालिक सफरी इकदाम के सिलसिले में एक से फरीकी बयान जारी किया है। इसका मकसद फीफा आलमी कप 2026 के दौरान इम्कानी तौर पर इसे देखने आने वाले लाखों अफराद, मद्दाहों, खिलाड़ियों और सयाहों को तहफ्फुज़ फराहम करने के साथ साथ सफर और तिजारती सरगर्मियों को बरकरार रखना है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक तलबा के तहफ्फुज़ का यकीन दिलाया है। जनाब प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशा होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए। डीडी न्यूज के साथ खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि बगैर किसी गलती के एक मुनज्जम और मुनासिब ढंग से दोबारा इम्तहान का इनेकाद किया जाएगा। तलबा से खिताब करते हुए प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। वजीर मौसूफ ने इस बात का फिर यकीन दिलाया कि बढ़ती हुई तशवीश के पेश नजर गलती से पाक इम्तहान का इनेकाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इम्तहान के अमल में मुस्तकबिल में किसी भी नाखुशगवार वाकये को रोकने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को भारत में सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमी कंडक्टर इको निजाम मजीद आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कम से कम 6 कारकुन हलाक हो गए। ये लोग देर रात एक तूफान के दौरान एक जेरे तामील पुल गिर जाने के हादसे में हलाक हुए हैं। ये पुल मोराकंदर से कंदवर गांव को मिलाता है, जो बेतवा दरवया पर तामीर किया जा रहा है। यह हादसा कल रात तकरीबन 2 बजे पेश आया, जब कुछ कारकुन बारिश के दौरान एक हाइड्रा मशीन के नीचे खड़े थे। NDRF और SDRF ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। कठुआ और माधोपुर रेल सेक्शन के दरमियान वाकई रेलवे पुल नंबर 17 पर बहाली के काम की तकमील के साथ 9 महीने से ज्यादा अरसे के बाद 31 मई से जम्मू के लिए और जम्मू से मामूल का रेल ट्रैफिक बहाल कर दिया जाएगा, जिसे अचानक सैलाब की वजह से पिछले साल काफी नुकसान हुआ था। भारतीय मौसमियात महकमा IMD ने मुल्क में इस साल जून से सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिश की पेशगोई की है। 2026 के मानसून के लिए दूसरे मरहले की ज्यादा दिनों की पेशगोई करते हुए IMD के डायरेक्टर जनरल

मैं मंगती मौला अली दी मैं क्यों घबरावा असदुल्लाह दा वजुल्लाह दा करमुल्लाह दा एनुल्लाह दा विरद पाकाने मैं मंगती मौला अली दी मैं क्यों घबरावा मैं मंगती

चेहरा देखो है रजपाली, सब दे दर्द बंडावे, खुशियां झोली पावे, पुल दे भाग जगावे, परचम अब

विश्वकर्मारे करण चरागालो के सारे जग मग देव जग दे देव रहमत दे लश्कारे ओ रंग लग जावे जगरा वास तपावे पौधे भाग जगावे परचम अब्बास दा गाजी अब्बास दा सोने अब्बास दा परचम हो परचम

सच्चा तेरा नाम सच्चा सच्ची बात है तेरी दिल को महताब बना दे लालन हस्ती मेरी तू सच्चा तेरा नाम सच्चा सच्ची बात है तेरी दिल तो महताब बना दे लालन हस्ती मेरी जदों की ताजी कर कलंदर दा जदों की ताजी कर कलंदर दा मैं हर एक मुश्किल पली पली मेरी रूह विच वसदा नाल सखी मेरी रूह विच वसदा नाल

मर जावा, रोंदी रोंदी ना मर जावा, मेरी पीड़ा तेरे खड़ी खड़ी, मेरी रूह विच वसदा लाल सखी।

ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਓਏ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਹੋ

0: снимать.
1: मैं तेरी ईमानदारी तो खुश होके तेनु इनाम देना। कलयुग में मैं तेरे वर्गे ईमानदार इंसान घट ही देखे ने। मैं चलदा नारायण नारायण नारायण।
2: ये घोड़े तो काफी परे ने, इन्हां नूं वेच के मैं किन्ने घोड़े खरीद सकता, पर हुण मैनूं लकड़ा कट्टण दी लोड़ नहीं है। हुण मैनूं छेती छेती घर जाके ये खबर अपने घर वाले नूं दसनी चाहीदी है। हाँ।

ਠੀਕ ਆ।

ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ।

मो तुम्हारे नहीं पैसे बारे होगे मेरे यार मोहब्बत वाले नहीं पैसे बारे

0: ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਤੀਜੇ ਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਕੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਨੀਰੀ ਚੰਗੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम दे रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

0: बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को राम राम।
1: और कृषि जगत कार्यक्रम इसमें लेकर के हाजिर हैं हम माने यमुना और
0: मैं वीरेंद्र।
1: बिल्कुल। और बात जो चलती है चर्चा हम करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, उसके बहुत से फायदे भी होते हैं। और खास करके
0: जी
1: आज कार्यक्रम में बताएंगे कि फल सब्जी और मिलेट्स का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें क्या फायदे होते हैं।
0: जी इनके इतने फायदे हैं कि हम उन सब फायदों को भूल गए हैं और अब समय के साथ उन सब चीजों को याद करने की आवश्यकता पड़ रही है। फल हम ना जाने कितने हजारों सालों से खाते आ रहे हैं लेकिन अब उनका औसत थोड़ा सा कम हो गया है यमुना बहन, तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, हमारा स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है। और अगर हम इन्हें निरंतर खाते रहते हैं तो हमारे अंदर मजबूत जो इम्यूनिटी होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बनी रहती है। और इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं, वो हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसको अच्छे से निभाते रहते हैं। इसलिए फल खाने चाहिए और सारे मौसमों के फलों के
1: जो आपने कहा
0: असर अलग अलग होते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे इसमें खरबूजा है, कुल मिला के पानी की मात्रा ज्यादा है, खीरा है, तरबूजा है, आम तो फलों का राजा है। अब सीजन है इस समय फलों का, तो आम खूब सेवन करें, खूब खाएं। और आम के तो बहुत से ऐसी वैरायटी हैं, अचार से लेकर के आम पापड़ से लेकर के उसका एक शेक बनाते हैं, वो भी पी सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं हमारी, फलों में इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा क्षमता है।
0: जी तो उदर पूर्ति में जो 1% मतलब प्रतिशत हिस्सा फलों का भी रखना चाहिए।
1: और साथ ही साथ हम सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जी जरूर खाना चाहिए। और खास करके अगर देखें तो जो मौसमी, जैसे मौसम होता है फलों का वैसे सब्जियों का भी होता है। इस समय आप देखोगे तो हरी सब्जियां भी मौजूद है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाती है। खास करके हम पुदीने की बात कर लें, धनिया पुदीने और आम की चटनी बनाइए। और साथ ही साथ अगर आप जब चटनी बनाती हैं उसी को आप घोल जैसा बना के पीजिए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और मिलेट्स की अगर हम बात करें तो सत्तू इस समय कितना फायदेमंद है,
0: वैसे ही खाया जाता है। सत्तू को तो वैसे ही खा भी लेते हैं तो इतना आनंद आता है।
1: मीठी सत्तू भी खाते हैं और थोड़ा सा नमकीन सत्तू भी लोग खाते हैं पुदीने की चटनी के साथ।
0: हमारे पूर्वज हजारों सालों से सत्तू खाते हुए आ रहे हैं और उसी से गर्मी से दो दो हाथ कर लेते थे।
1: बिल्कुल। और आटे की हम बात करें तो जैसे हम मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं तो जैसे हम आटा अगर सीधे सीधे केवल आटे की रोटी बनाते हैं तो उतना फायदेमंद नहीं होता जितना अगर उसमें थोड़ा सा मिलेट्स मिला ले, मतलब थोड़ी सी रागी, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा मक्का, थोड़ा सा चना, थोड़ा सा। लेकिन अगर गर्मी का सीजन है तो थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि तपिश है तो इसमें थोड़ा सा बचाना चाहिए सीजन में। जैसे बाजरे की हम बात कर रहे हैं तो तापीर गर्म होती है तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। तो है छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अगर आप मिलेट्स को मिला की खाते हैं आटे में तो बहुत ही फायदेमंद और तंदुरुस्ती बनाने वाला होगा।
0: जी तो आप अगर आपको अपने आप को चंगा बनाना है और तगड़ा और तंदुरुस्त बनाना है तो भाई आपको मिलेट्स मोटे अनाज खाने चाहिए, अपने भोजन में उन्हें जरूर शामिल करें। जैसे यमुना बहन आप बता रही थी कि कुछ की तासीर गर्म होती है तो जरूरी नहीं है हम 1 किलो खाएं, हम
1: थोड़ा सा मिला सकते हैं समय के अनुसार, मौसम के अनुसार थोड़ा सा मिला के खा सकते हैं। खास करके गर्मी का मौसम चली रहा, थोड़ा सा तो मौसम बदला, करवट लिया मौसम ने, थोड़ा सा आराम मिला है जीव जंतु से लेकर इंसानों तक।
0: आपकी बात है ना, भगवान जी जरूर सुनते हैं। आज देखो बारिश से होने लगी है, उसका

0: स्वागत करना चाहिए हमें।
1: हाँ,
0: तो
1: बिल्कुल, लेकिन गर्मी से जब जी घबराता है तो मुंह से कुछ न कुछ ऐसे ही निकलता है, जैसे कि अशोक कुमार अपने इस गीत के जरिए कुछ कहना चाह रहे हैं।
0: जी, मेरा भी जिया घबराने लग जाता है।
2: हर गर्मी से

0: तो साथियों शिमला घूम आए हैं हम, अशोक कुमार ने हमें अच्छे से घुमा दिया है शिमला, और अब तो दिल्ली में ही शिमला बनने की तैयारी हो गई है। बादल आ गए हैं, झमाझम बारिश होगी ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, आशा हर चीज की करनी चाहिए। और खास करके इस समय हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 का, जो कि जिसका आयोजन नई दिल्ली में 28 से 29 मई तक चला, और इसमें गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत से हमारी साथी मंजीत कौर ने क्या बात की, चलिए सुनते हैं।
2: ये जानना चाहेंगे, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन यहाँ दिल्ली में किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाई बहन?
3: निश्चित रूप से भारत सरकार किसानों के प्रति बहुत गंभीर है। जहाँ किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, उसी के साथ साथ अब खरीफ का सीजन आ रहा है, इसलिए भारत के माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान ने दिल्ली में भारत के समस्त प्रांतों के कृषि मंत्री आमंत्रित किए, कृषि वैज्ञानिक आमंत्रित किए और किसानों को भी आमंत्रित किया है, और उनके बीच में बातें सब रखी हैं कि हम आने वाली खरीफ फसल को अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं और उनमें रासायनिक खाद कम से कम कैसे डालें और प्राकृतिक खेती की ओर देश के किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करें, और इस दिशा में अगला एक महीना पूरा कृषि विभाग गांव-गांव में जाएगा, किसानों की संगोष्ठियां करेगा और लोगों के लिए जहर मुक्त भोजन कैसे प्राप्त हो जिससे लोगों का स्वास्थ्य बचे, पर्यावरण बचे, पानी बचे, धरती माता का स्वास्थ्य बचे, इस दिशा में बड़ी गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी किसानों के सुखद भविष्य की दिशा में मिलके काम कर रहे हैं।
2: एक अंतिम सवाल, खेत बचाओ एक बहुत बड़ी समस्या भी है, तो हमारे किसानों को इससे किस तरीके से जूझना चाहिए?
3: निश्चित रूप से खेत बचाओ का अभिप्राय यही है कि हमारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बचे, उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ जमीन मिल सके। ये रासायनिक खादों से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बुरी तरह से गिरा है और प्राकृतिक खेती उस ऑर्गेनिक कार्बन को नियमित रूप से बढ़ाने का काम करती है, इससे धरती माता बचेगी और धरती का स्वास्थ्य होगा तो खेती अपने आप बचेगी।
2: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
3: धन्यवाद।
1: हमारे साथी मंजीत कौर ने अभी बात की गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत से, और देखा जाए तो वाकई कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं
0: जी, और हम भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं, और गर्मियों में सब्जियों और फलों में कैसे हम परिवर्तन करके उनकी देखभाल कर सकते हैं, उसी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है
1: कि गर्मियों में सब्जी की फसलों में सिंचाई और उर्वरक जो हमारा प्रबंधन है वो कैसे हो, इसके बारे में विशेषज्ञ हैं जो बता रहे हैं। डॉक्टर बी एस तोमर जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग पोसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल, तो चलिए सुनते हैं।
4: किसान भाई नमस्कार, इस समय गर्मी का माहौल है और इस गर्मी के मौसम में जो हमारे खेतों में सब्जियां किसान भाइयों ने लगा रखी हैं उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है, और किस तरीके से उनका उत्पादन बढ़े नहीं तो घटे भी नहीं, किस तरीके से सिंचाई प्रबंधन करना है, उसकी इतनी गर्मी लू से उसे बचाना भी है, तो किस तरीके से सारा प्रबंधन करें इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बी एस तोमर जी को, जो कि अध्यक्ष रह चुके हैं शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके का इस समय मौसम है, इस मौसम को देखते हुए जो आपके किसान भाइयों ने खेतों में सब्जियां लगा रखी हैं, किस तरीके से उनकी देखभाल करें जिससे जो हमारी जनता है उसके लिए सब्जियां प्राप्त हो सके?
5: आप सभी जानते हैं कि गर्मी का जो मौसम है वो हम उसके अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, और 15 जून तक हम गर्मी का मौसम मानते हैं कि जो फसलें हमने

0: मध्य फरवरी में रोपाई की थी या मध्य फरवरी के बाद में बुवाई की थी, वो फसलें लगभग अपने चरम पर हैं और उनसे उत्पादन किसान भाई बराबर ले रहे हैं। लेकिन गर्मी में स्वाभाविक रूप से दिन और रात का तापक्रम में वृद्धि होना, ये गर्मी के मौसम की पहचान है। और दिन का तापक्रम के साथ साथ सब्जियों में पुष्पन और फल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें रात्रि का तापक्रम भी बहुत महत्व रखता है। अगर हम फसलों के अनुरूप जाएं तो जितनी भी हमारी टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, इनमें अगर दिन का तापक्रम 38 से 40 डिग्री जाता है तो इसमें पुष्पन तो होता है लेकिन फल बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। और अगर रात्रि का तापक्रम दिन का तापक्रम अधिक भी रहे परंतु रात्रि का तापक्रम कम रहे तो भी काम चल जाता। तो ये दिन और रात्रि का जो तापक्रम है दोनों को मिलाकर के हम देखें तो ये एक बहुत क्रिटिकल अवस्था है पौधे के लिए। इस दिन के 40 डिग्री प्लस और रात्रि का जो तापक्रम जैसे 26 से ऊपर जाता है तो ये बहुत ही अच्छा नहीं रहता पौधे के विकास के लिए भी, पुष्पन के लिए भी, फल बनने की प्रक्रिया के, और जो फल पहले से बने हुए भी हैं उनके विकास को भी बाधा करता है, बर्बाद भी नहीं हो पाती। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बैंगन में विशेष रूप से फलों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसका प्रॉपर रंग नहीं आता है। और इसी तरह से टमाटर में सन स्कैल्डिंग की संभावना बढ़ जाती है या मिर्ची में भी सन स्कैल्डिंग हो जाता है, शिमला मिर्च बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो। तो ये जो तापक्रम की स्थिति है, हालांकि ये जो फसलें हैं ये अभी अपने ग्रीष्मकाल की जो फसलें हैं वो अपने जीवन काल के अंतिम पहुंचे, लेकिन अभी भी किसान भाई उनसे 3-4 पीकिंग अभी बैंगन में, मिर्ची में, शिमला मिर्ची में और टमाटर में संभावनाएं ले सकते हैं। अब लेकिन इन परिस्थितियों से निपटे कैसे? तो इन फसलों में गर्मी के बढ़ते हुए तापक्रम को कम करने के 2-3 संभावनाएं हैं। एक तो हम सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रखें और सिंचाई का समय भी हम दिन में ना दें, प्रातःकाल में या दोपहर 4 बजे के बाद पानी खेत में लगाएं। अगर किसान भाई दिन में पानी देते हैं और वो पानी 10-11 बजे, 12 बजे तक, 1 बजे तक या दिन भर खेत में पानी ठहर जाता है तो तापक्रम बहुत तेजी से बढ़ता है और उसमें पौधे के उखटन या उनके विकास को अवरुद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। तो एक तो हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखे कि भाई पानी सीमित मात्रा में दे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसका अंतराल कम कर दें, जल्दी जल्दी दें, हल्की सिंचाई दें, नमी बनाए रखें।
1: मतलब यह है कि सिंचाई करें एकदम खेत में भरे नहीं।
0: तो एक तो ये सावधानी हमारे किसान भाई रख सकते हैं। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, आजकल पानी की कम उपलब्धता होती है तो किसान भाई नए नए जो वैज्ञानिक तरीके हैं कम पानी से हम ज्यादा क्षेत्रफल में उसका भी इस्तेमाल करते हैं और उसमें रेन गन लगाते हैं या ड्रिप फर्टिगेशन होता है, तो ड्रिप फर्टिगेशन में सुबह शाम फर्टिगेशन करने की आवश्यकता होती है। और रेन गन को हम तेज धूप की अवस्था में अगर हम रेन गन चलाते हैं तो उससे खेत के अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट का विकास होता है और उससे गर्मी के कारण होने वाली नुकसान को हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि भाई खेतों में आप साफ सफाई का ध्यान भी रखें, खरपतवार ना हो गए। जब खरपतवार बढ़ते हैं और बाकी खेत साफ होते हैं तो सारे आसपास के जो कीड़े हैं, खासतौर से जो होपर हैं, ब्राउन होपर और ग्रीन होपर, ये सारे के सारे कीड़े उस खेत में आ जाते हैं जहाँ खरपतवार होते हैं, फसल होते हैं, नमी होती है।
1: खरपतवार भी डाल सब, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, सिंचाई बार बार देनी होती है, जिस तरीके से मुख्य फसल बढ़ती है उस तरीके से खरपतवार भी बढ़ते हैं उसमें।
0: तो इसलिए यहाँ आवश्यक हो जाता है कि एक निराई गुड़ाई करना जरूरी है, क्योंकि इस अवस्था में कोई भी ऐसा खरपतवार नाशी नहीं है जिसकी संस्तुति की गई हो कि फसल की इस अवस्था में हम फसल को बिना नुकसान पहुंचाए, हम कोई खरपतवार नाशी की सिफारिश किसान भाइयों को कर नहीं सकते। तीसरी जो बात है कि हम उसमें होने वाले नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, ये भी है कि हम अपना उसमें थोड़ा पोटेशियम 1% का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। एक प्लेनोफिक्स एक रसायन आता है, गौ संवर्धक है, उसको जो है हम 2-3 ppm की मात्रा में उसको छिड़काव कर सकते हैं और उसमें जो है फूल तो आएंगे इस अवस्था में, बैंगन में, मिर्ची में, शिमला मिर्ची में, लेकिन फल नहीं बनेंगे। तो फल बने उसके लिए प्लेनोफिक्स का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो ये 4 बातें तो हमारे किसान भाई बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची और टमाटर के लिए कर सकते हैं। अब दूसरी जो समूह है दलहनी सब्जी है, जिसमें लोबिया है, ग्वार है, जो लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे तो स्वयं परागित है लेकिन फूलों का उत्पादन कम हो सकता है, फल झड़ सकते हैं या फलों में परागण नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए वहां पे भी जो हमने सिफारिशें यहाँ की कि खेत

0: में नमी का होना आवश्यक है और अगर खेत की दिशा में लगी हुई है जब लू चलेगी अभी तो उसके होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अस्थायी रूप से विंड ब्रेक का निर्माण भी खेत में कर सकते हैं। विंड ब्रेक क्या है, अभी जो पश्चिम की हवाएं चलेंगी और वो पूरी कम आर्द्रता के साथ होगी, आर्द्रता अभी 45 के आसपास आ गई है और ये और घट सकती है कि 40 डिग्री प्रतिशत तक हो सकती है। जैसे ही आर्द्रता कम होगी तो इससे पत्तियों में झुलसने की संभावना बढ़ जाएगी, तो हम इसमें किसान भाइयों को सुझाव देंगे कि अगर वो उनके पास कुछ पुराने शेड नेट हैं या प्लास्टिक हैं तो बैम्बू या लोहे के डंडे गाड़ करके पश्चिम दिशा में खेत के और 5-5 मीटर की दूरी में ब्रेक बना सकते हैं, जिससे कि गर्म लू फसलों के संपर्क में सीधे नहीं आएगी और जब हम नमी रखेंगे तो एक माइक्रो क्लाइमेट बनेगी तो उसे हम उसे बचाव कर सकते हैं इन फसलों में। अब तीसरी बात करते हैं कि जो बेल वाली फसलें हैं, क्योंकि ये प्रमुख रूप से अभी खेत में लगी हुई हैं और ये अभी चलेंगी, चाहे उसमें आपका लौकी है, तुरई है, खीरा है, खरबूजा तरबूज तो अब जितना फल बनना था बन गया, टिंडा है, सीताफल है, करेला है, खरबूजे और तरबूज को छोड़ के, क्योंकि इसमें नए फलों का निर्माण नहीं होगा, जो फल पहले से बने हुए अब वो पकेंगे। खरबूजा और तरबूज के लिए तो गर्म और लू हवाएं बहुत अच्छी हैं, उसमें फलों की मिठास बढ़ेगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और बीमारी रोग कीड़े कम लगेंगे। लेकिन दूसरी जो फसलें मैंने नाम लिया, लौकी है, तुरई है, सीताफल है, करेला है, ककड़ी है, खीरा है, टिंडा है, चिचिंडा है, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब इसमें क्या संभावनाएं रहती हैं नुकसान होने की, कि जब सनलाइट ज्यादा होती है तो ऐसे में क्या होता है, ज्यादातर बेल वाली सब्जी फसलों में, क्योंकि इनमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर आते हैं और इसलिए इनको हम मोनोसियस सेक्स फॉर्म बोलते हैं और परागण जो है वो मधुमक्खियां या दूसरे सहायक कीटों के द्वारा होता है, तो तापक्रम वृद्धि जैसी होगी तो इसमें नर पुष्पों का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जब नर ज्यादा होंगे मादा कम होंगी तो फलों की संख्या कम हो जाएगी तो उपज गिर जाएगी, तो किसान को सीधे सीधे उससे भी नुकसान होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हालांकि हमारे अनुसंधान में हम लोग अभी विकसित कर रहे हैं करेले में, खीरे में, इनमें तो हम दो में तो गाइनेशियस लाइन का इस्तेमाल करके संकरों का विकास कर रहे हैं, या दोनों पेरेंट भी गाइनेशियस हैं, तो ऐसे में जो नुकसान है वो कम होता है क्योंकि उसमें फीमेल फ्लावर ही आते हैं, जब फीमेल ही आएंगे तो जो मेल है वो तो आएंगे नॉर्मल, और जो हाइब्रिड है उसमें फीमेल फ्लावर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो जो गाइनेशियस बेस्ड हाइब्रिड जिन किसानों लगा रखे हैं उनके खेतों में नुकसान कम होगा,
1: यानी उनके जो फल बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है
0: उनके ज्यादा रहेगी, जिन जो संकर किस्में गाइनेशियस सिस्टम बेस्ड हाइब्रिड है और जो मोनोसियम सिस्टम बेस्ड हाइब्रिड है
1: पुराने वाले
0: सिस्टम है उनमें नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है।
1: वैसे ज्यादातर जो व्यवसायिक स्तर पर हमारे किसान भाई लगा रहे हैं वो नई किस्में ही हाइब्रिड ही लगाते हैं।
0: खीरे की अगर मैं बात करूं, खीरे में मोनोशियस इंटू मोनोशियस एक हाइब्रिड होते हैं, एक गाइनेशियस इंटू मोनोशियस हाइब्रिड होते हैं और एक गाइनेशियस इंटू गाइनेशियस हो रहे हैं, तीन तरह के हाइब्रिड अलग अलग जेनेटिक सिस्टम को यूज करते हैं, तो अगर गाइनेशियस बेस्ड F1 हाइब्रिड होते हैं तो उनमें नुकसान कम होता है क्योंकि उसमें फीमेल फ्लावर की मात्रा स्वतः ही आनुवांशिक रूप से अधिक पैदा होती है। अब लेकिन किसान भाइयों ने जिन्होंने अब खीरा लगाया हुआ है वो तो उसको बदल नहीं सकते, तो आगे के समय में हमारे किसान भाई ध्यान रख सकते हैं, जब बीज खरीदे या किस्म का चयन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई हमारा हाइब्रिड मोनोशियस इंटू मोनोशियस तो नहीं है, गाइनेशियस इंटू मोनोशियस हो या गाइनेशियस इंटू गाइनेशियस हो, तो इस स्थिति में खीरे के अंदर उत्पादन अच्छा मिल सकता है अगर गर्मी का तापक्रम भी ज्यादा बढ़ता है।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रहे मतलब कि क्या क्या सावधानी रखें किस तरीके से, लेकिन क्योंकि हमारे किसान भाइयों के इस बीच फसल तुराई का भी रहता है कि तुराई में भी सावधानी रखनी पड़ती है कि किस समय तुराई की जाए, तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें।
0: निश्चित रूप से जो तुराई का समय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्थानीय बाजार में अगर बिक्री के लिए भेजना है या किसान सीधे कहीं बाजार में खुशुम जाके बिक्री करता है तो ऐसी में तो किसान भाई सुबह के समय प्रातः भोर में 4 बजे जाके 5 बजे जाके अपनी हार्वेस्टिंग करके और 6-7 बजे अपने स्थानीय मंडी में अपना माल ले जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम होती है। अधिकतम किसान दूर मंडियों में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर अपना सब्जियों को भेजते हैं, या दिल्ली के आसपास की बात करें तो अधिकतम सब्जियां दिल्ली के आजादपुर मंडी में आती हैं और किसान उनकी तुराई दोपहर से ही शुरू कर देते हैं, और किसान की भी मजबूरी है अगर बड़ा खेत लगा है वो 3 घंटे में तुराई नहीं हो सकती, तो किसान भी सुबह से ही तुराई शुरू करता है। अगर किसी

0: पास 2 एकड़ की हार्वेस्टिंग करनी है तो निश्चित रूप से 4-5 लेबर उसको पूरा दिन लगानी पड़ती है। तो ऐसे में जो फल सुबह के समय तोड़े जा रहे हैं या दोपहर के समय ज्यादा गर्मी की अवस्था में तोड़े जा रहे हैं तो उसमें फल के अंदर तापक्रम बढ़ जाता है, गर्म हो जाते हैं। ऐसे में जब अगर गर्म फलों को आप तोड़ करके उनको बोरियों में भर देंगे या ट्रे में भर देंगे या डब्बों में भर देंगे तो उसमें उनकी हीट आपस में बनेगी, उससे एक शब्द बोला जाता है PLW, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट। ऐसे में तो वातावरण में गर्मी, ऊपर से आपने गर्म गर्म फल बंद कर दिए तो उससे वाष्पोत्सर्जन फल की सरफेस से ज्यादा होता है।
1: साथियों अभी आप सुन रहे थे बातचीत गर्मियों में सब्जी की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन विषय विशेषज्ञ थे डॉक्टर BS तोमर और उनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
2: इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम ही समाप्त होता है। सभी सुनने वाले किसान भाइयों बहनों को हमारा
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं गजल कव्वाली।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो रुसवा।

बहुत ही खूबसूरत कव्वाली सुन रहे थे आप मोहम्मद रफी और साथी की आवाज में, और ये कव्वाली थी फिल्म अमर अकबर एंथनी से। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार 21 जून को नीट यूजी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। दिल्ली नगर निगम ने शालीमार बाग में विश्व स्तरीय सभागार तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए एनबीसीसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय जनसंचार संस्थान ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की और दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर में अवैध रूप से रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि हाल ही में नीट परीक्षा के रद्द होने के कारण अनेक परीक्षार्थियों को दोबारा नीट परीक्षा देनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परीक्षार्थियों को उनकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हर संभव सहयोग और सुविधा उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800 11 800 4 पर संपर्क कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल 2.0 को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। श्री सिरसा ने बताया कि यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड ऑडिट, अलर्ट सिस्टम और कैमरा सेंसर डेटा के जरिए बताएगा कि किन साइट पर नियमों का पालन हो रहा है तथा कहां लापरवाही हो रही है। श्री सिरसा ने कहा कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट के माध्यम से समय रहते कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। इस व्यवस्था से हर साइट की सातों दिन 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग होगी, जिससे लापरवाही करने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं बल्कि धूल और प्रदूषण को रोकने की जवाबदेही तय करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड एनबीसीसी के साथ शालीमार बाग में विश्वस्तरीय सभागार

0: तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नगर निगम ने इसे राजधानी में सार्वजनिक अवसंरचना तथा सामुदायिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये समझौता ज्ञापन नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार तथा एनबीसीसी के अध्यक्ष डॉ के पी महादेव स्वामी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस ऑडिटोरियम में लगभग 1000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी तथा ये सार्वजनिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक आयोजनों, सरकारी कार्यक्रमों और सामुदायिक सभाओं के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज रोहिणी स्थित अम्बेडकर भवन में राजस्व विभाग के ई सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय भवन की स्थिति, नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और लोगों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। एक रिपोर्ट।
1: निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भवन की जर्जर हालत, खराब लाइट व्यवस्था, बंद एयर कंडीशनर, टूटे फर्श, गंदे शौचालय और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां रोज बड़ी संख्या में लोग अपने जरूरी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े काम कराने आते हैं, वहां ऐसी अव्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर भवन में मरम्मत का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा, डिजिटलीकरण तथा संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और सम्मानजनक सेवाएं प्राप्त हों। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने कहा कि किसी भी एलपीजी वितरक से रसोई गैस कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।
2: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी, सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
4: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि आईआईएमसी का मीडिया शिक्षा में लंबा अनुभव रहा है और इसने कई पीढ़ियों के मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। इस अवसर पर आईआईएमसी की कुलपति प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि यह अकादमी मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में एआई शिक्षा, व्यावहारिक कौशल और नवाचार के लिए देश का पहला राष्ट्रीय केंद्र है। उन्होंने बताया कि यह अकादमी दूरदर्शन, आकाशवाणी और पत्र सूचना कार्यालय जैसे संस्थानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और एआई टूल किट तैयार करेगी। दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये विदेशी नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन अवैध अप्रवासियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने चालान और यातायात प्रबंधन प्रणाली को अपग्रेड किया है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले नागरिक अब मौके पर ही डिजिटल पेमेंट तरीकों जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से चालान भर सकेंगे। इसके अलावा मौके पर मौजूद चालान अधिकारी के पास उपलब्ध हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, नागरिक अनुकूल, कुशल और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कृषि और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए समर्पित उनके ऐतिहासिक निर्णय और जन कल्याणकारी नीतियां सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का योगदान राष्ट्र निर्माण में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। दिल्ली के मंत्री प्रवीर साहिब सिंह, आशीष सूद और मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन मीडिया को बताया कि अब तक 9,76,000 किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज दिनभर हल्के बादल छाए रहने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार 21 जून को नीट यूजी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगी। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने धूल और प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार किए जा रहे नए डस्ट पोर्टल को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। दिल्ली नगर निगम ने शालीमार बाग में विश्व स्तरीय सभागार तथा सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए एनबीसीसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। और दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं विशेष नाटक 9 दशकों के 9 रस। लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: ये दादी इतनी उदास खड़ी आईने में क्या देख रही है?
3: दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार।
2: एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे देखा नहीं एक बार मेरे दिल में।
4: हम दो पल के लिए चुप क्या हुए साहबजादे कि तुम आप से तुम पर उतर आए? याद दिलाएं तुम्हें या खुद ही याद कर लोगे कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं दादी लगते हैं?
2: वाह वाह वाह वाह, क्या कमाल की एक्टर हो आप दादी, सच में। अरे आपकी एक्टिंग के आगे तो अच्छे अच्छे पानी भरते होंगे। वाह वाह, क्या डायलॉग डिलीवरी है आपकी।
4: हाँ ये तो है, जब मैं रेडियो में ड्रामा करती थी ना तो मैं अपने डायलॉग्स एक टेक में ही फाइनल कर देती थी।
2: अच्छा,
4: नो कट वन। ये तो शादी हो गई, वरना तो रेडियो पर ही नहीं बड़े पर्दे पर भी कमाल ही कर रही होती तेरी दादी।
2: 100% एग्री दादी, पर ये हाथ में क्या लेकर बैठी हैं आप? ओह, अपनी सुंदरता को निखारने का एक और जबरदस्त नुस्खा।
4: हाँ पर क्या करें, अब हाथ ही नहीं उठ रहे लगाने को।
2: क्यों भाई, ऐसा क्या इस पैक में? देखा,
4: अरे मुझे आज पता चला कि उम्र बढ़ना बुढ़ापे की निशानी नहीं होती। हाँ
2: अरे
4: अजय, सुनते हो रिदम आपको बूढ़ा कह रहा है?
5: बूढ़ा होगा तेरा पिताजी समझा। अरे हम तो अभी जवान हैं, 10 किलो आटा पिसवा कर खुद लेकर आ रहा हूँ। तेरे पिताजी में और तुझ में इतना दम?
2: अरे मतलब ही नहीं बनता दादाजी, अरे हम में दम है पर बहुत कम है, लेकिन इसका हमें नहीं कोई गम है।
5: बस बस बस बस, जान छुड़ा ली है कह के। सुबह सुबह उठकर 8 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ मैं, और तेरा पिताजी अभी तक तो बिस्तर तोड़ रहा है।
2: जी जनाब, और आज वो सारा दिन बिस्तर ही तोड़ेंगे क्योंकि आज छुट्टी है। आप सब कुछ छोड़े, दादी को देखे, वो इतनी उदास के बैठी है, देखो ना।
5: कहाँ तेरी दादी और उदास, और ये फेस पैक हाथ में लेकर उदास कौन होता है भाई? क्यों रुकमणी जी, गलत कह रहा हूँ मैं?
4: हाँ जी, आज तो आप गलत ही कह रहे हैं।
5: अरे
4: अजी, क्या फायदा है ऐसे फेस पैक का कि आप अपनी उम्र तो छिपा रहे हो पर आप जवान नहीं हो पा रहे हो।
5: अरे भाई, सभी उम्र ही छुपा सकते हैं, जवान थोड़ी हो सकते हैं। कौन है इस दुनिया में जो उम्र बढ़ने के साथ जवान हुआ हो, सिवाय मेरे? मतलब
4: बताओ,
2: कुछ भी है।
4: हमारा रेडियो सुनो, हमारा आकाशवाणी, 9 दशक हो गए और ये तो दिन पर दिन जवान ही होता जा रहा है। मालूम है 1936 से आज तक आकाशवाणी ने इतने नए नए कार्यक्रम बनाए हैं। मालूम है, विविध भारती से FM तक पहुंच गया आकाशवाणी।
5: हाँ,
4: नई नई आवाजें, नए नए प्रोग्राम्स, तो ये जवान होना ही हुआ ना जनाब।
5: हाँ बिल्कुल,
4: और हमारी जिंदगी देखो तो कोई नयापन ही नहीं है।
5: बेटा तुम्हारी दादी ने रेडियो जाना छोड़ दिया पर नाटक करना आज तक नहीं छोड़ा।
2: दादी सुन रहे हो,
6: क्या हुआ, इतनी मैसेज जमी हुई है यहाँ तो लगता है कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस हो रहा है।
5: हाँ बहू, हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम्हारी सास अपना कंपैरिजन रेडियो स्टेशन से कर रही है। 90 साल होने के बावजूद वो दिन पर दिन जवान होता जा रहा है, और ये बूढ़ी
6: क्या?
5: अरे बाप रे।
6: माजी माजी माजी, आप अपने नाटक करने ना फिर से शुरू कर दीजिए, मुझे लगता है आप रेडियो बहुत मिस करते हैं।
4: हाँ कभी कभी तो बहुत मिस करती हूँ। रेडियो 90 साल का हो गया है, बहुत गर्व होता है ये सोचकर कि ये वो जगह है जहाँ गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और अब हमारे मोदी जी देश की जनता को संबोधित करते आए हैं।
2: सच बोलो, मुझे तो सुनकर ही गूज़बम्स आ रहे हैं। कितनी प्राउड जगह है ना दादी ये रेडियो स्टेशन।
4: बिल्कुल, कैसे कैसे रेडियो बदलता चला गया, पर हमारे नाटकों

0: दुनिया नहीं बदली, आज भी हमारे नाटकों का कोई जवाब नहीं है।
1: हाँ दादी, मुझे याद है एक बार आप मुझे लेकर भी गई थी ना अपने साथ स्टूडियो में।
0: हाँ, एक बच्चे के दो तीन डायलॉग्स थे, मुझे लगा कुछ तो सीखा ही होगा तूने, पर तूने तो चौड़े में बेइज्जती करवा दी। अरे बिस्किट, चॉकलेट, कार, खिलौने सब तेरे आगे रख दिए, पर तू था कि टस से मस नहीं हुआ। खा सब कुछ लिया, कार और खिलौने भी अपने कब्जे में कर लिए, और फिर पता है क्या कहा? घर चलो।
2: और मदन माजी, तभी से इसका ये पैटर्न चला आ रहा है, चौड़े में ही बेइज्जती करवाते
1: हैं। कुछ भी हाँ, कुछ भी मम्मा हाँ। और अब कहाँ करवाता हूँ मैं चौड़े में बेइज्जती। और आप लोगों को याद है सरबत आंटी का बेटा नंबर कम लाया था और पिटाई पिटाई मेरी हुई। मैंने पूछा क्या गलती हो गई मम्मा, तो मम्मा ने कहा इतने कम नंबर लाया तो तेरी भी ऐसी ही पिटाई होगी।
3: भाई रुक्मणी, भाई क्या हुआ, तुम तो फिर से उदास हो गई। अच्छा भाई बताओ, आज चाय पर चर्चा का क्या टॉपिक है?
1: मेरे ख्याल दादी का मूड ठीक होगा आकाशवाणी के 9 दशकों के 9 रस इस टॉपिक से। इससे अच्छा टॉपिक और क्या होगा? क्यों
3: भाई, ये तो बहुत ही सुंदर टाइटल है, आकाशवाणी के 9 दशकों के 9 रस। वाह, नाटकों में ही 9 रस हो सकते हैं। क्यों रुक्मणी जी, आपने तो हर रस के भाव को छूता हुआ नाटक किया होगा ना।
1: दादी, आपका सबसे फेवरेट नाटक कौन सा था?
0: ऐसे तो बहुत नाटक थे, पर कुछ नाटक मुझे बहुत ही पसंद थे। चूंकि नाटकों में, अब देखो, हमें आपको सिर्फ सुनवाना तो नहीं है ना, आपको ये भी महसूस कराना है कि आप सुनने के साथ साथ जैसे देख भी रहे हो। एक नाटक याद आता है जिसमें जब माँ बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहे होते हैं तो क्या है कि एक एक सीन आप खुद ब खुद विजुअलाइज करने लगते हैं, आप उन आवाजों में से उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसे खो जाते हैं कि आपको वो कैरेक्टर्स, वो सीन जैसे अपने आप दिखने लगता है। यही होता है रेडियो के डायरेक्टर और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने वाले का कमाल, वो आपको सोचने का मौका ही नहीं देते कि आप देखने को मिस कर रहे हैं।
3: बिल्कुल।
1: अरे क्या बात है दादी, और पता है एक दिन मैं हवा महल सुन रहा था, मेरे एक दोस्त ने लिंक भेजा था, उसने कहा मैंने तेरी दादी का नाटक सुना है भाई, बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा।
1: और ये बात सुनकर तो मुझे लगा कि मैं एक स्टार का पोता निकला भाई। बड़ा गर्व होता है, ये फीलिंग ही अलग है नाटक आर्टिस्ट होना। क्यों दादी?
0: चल चल मस्केबाज।
1: नहीं सच में दादी, अब पता है रेडियो आर्टिस्ट तारीफ के काबिल होते हैं, और जो नाटकों को बनाते हैं उनको तो सल्यूट है भाई। कलाकार अपनी आवाज से और डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक से ऐसा माहौल बना देते हैं कि उस झलकी या नाटक से ध्यान ही नहीं हट पाता।
3: बिल्कुल।
1: आज तो इंसान एक सेकंड में चैनल चेंज कर देता है, पर यहाँ ऐसा होता ही नहीं है
2: भाई। यही तो खूबसूरती है रेडियो नाटकों की। क्यों? अच्छा माजी, वैसे कब से शुरू हुए होंगे ये रेडियो के नाटक?
0: हाँ भाई, आकाशवाणी के नाटकों या आकाशवाणी का इतिहास किसी को पता है कुछ?
1: मुझे नहीं भाई, नहीं, आई एम रियली वेरी बैड इन हिस्ट्री।
2: ओनली इन हिस्ट्री, बाकी में तो जैसे आप कोई तोप है। रिमशा, तुमने भी एंट्री क्या गजब के लिए है, आई लाइक दिस डायलॉग। वाह भाई वाह।
1: ये एक और आ गई मल्लिका ही एक्टर।
2: अच्छा भाई, अब रिमशा भी आ गई है ना, तो अब भाग के जाओ रिदम जी और चाय बनाकर लेकर आओ सबके लिए। आज तो चाय पर लंबी चर्चा होगी। और पता है रिमशा टॉपिक क्या है? आकाशवाणी के 9 दशकों के 9 रस।
4: 9 दशकों के 9 रस? सच?
2: हाँ
4: बिल्कुल आंटी, अब तो करनी है चर्चा।
3: वेरी गुड।
1: और एक्सक्यूज मी मिस रिमशा कुमारी, मत बोलो कि तुम मेरे ही कारण एक ड्रामा आर्टिस्ट बन पाई हो, समझी?
2: अच्छा, बताना कैसे, तुमने ऑडिशन में पास किया था मुझे, बोलो।
1: नहीं नहीं, लेकिन आप याद कीजिए, ना आप मुझसे मिलती, ना मैं तुम्हें घर लाता, ना ही तुम्हारी आवाज और मॉड्यूलेशन देखकर दादी कहती कि तुम्हारी आवाज अच्छी है और तुम्हें एक बार रेडियो में नाटक विभाग में ऑडिशन देना चाहिए। ना मैं वहाँ से फॉर्म लाता, ना आप भरती और ना ऑडिशन देती।

0: बताओ तुम कैसे टाइम आर्टिस्ट बनती?
1: हाँ, और अगर रिमशा की आवाज में दम ना होता ना तो वो ड्रामा आर्टिस्ट बनती ही नहीं। भाई आवाज में दम था तो ये सब मेहनत काम आई, वरना तो सिफर होता सब कुछ।
2: चाय?
0: हाँ ठीक है, कुल मिलाकर मुझे चाय बनानी ही पड़ेगी।
2: हाँ भाई चाय तो तुझे ही बनानी पड़ेगी, और वो भी चार कप तो तू ही पी जाएगा, तो भैया पांच बना लियो हैं।
1: क्यों तो हम नहीं है।
0: ठीक है डन, चाय के कप पांच, पर मेरे सवाल है तीन। अगर उन सवालों का जवाब रिमशा जी ने सही दे दिया तो मैं चाय बनाऊंगा, अगर नहीं तो फिर रिमशा चाय बनाएगी, पक्का बताओ।
3: डन, मेरी तरफ से भी डन। चलो पूछो सवाल।
0: आपका पहला सवाल, मिस्टर मार्कोनी कौन थे?
3: सिंपल, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के जरिए आवाज जा सके।
1: बिल्कुल।
0: ओके ओके, गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट। अच्छा बताओ, केव राम जिन्हें रेडियो में उनके निक नेम जिम से जाना जाता था, और बीबीसी के पहले जनरल मैनेजर जे रीथ कौन थे? दोनों सवाल एक साथ है बेटा, बताओ बताओ बताओ।
1: रुको जरा रुको भाई। हाँ तो
0: चल रही है।
1: रुको
3: दादाजी, दादी जी, आंटी आप तो बताएं, कौन तो मेरी मदद करे।
1: सॉरी डियर।
0: टिक टिक वन, टिक टिक टू।
2: ओ हे भाई, ये सब अंताक्षरी में करना, और ज्यादा भाव मत खा, बता दे ये लोग कौन थे, बता ना।
0: दादाजी सिर्फ आपके लिए, आप कह रहे हैं तो बता देता हूँ।
2: थैंक यू सो
0: मच। वरना तो खैर, बीबीसी के पहले जनरल मैनेजर थे जे रीथ, जो 1923 में ही चाहते थे कि भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हो।
4: और वैसे भी उन्हें भी नहीं पता जो ये कह रहे थे, ओनली इन हिस्ट्री।
3: अच्छा अच्छा, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। अब ये बताओ कि रेडियो स्टेशन बनाने में लागत कितनी आई थी?
0: उस समय 6.5 लाख की लागत से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी थी। पर 1930 तक ये कंपनी दिवालिया हो गई, और रेडियो का चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था।
1: सच में तो दोबारा तो शुरू किया ही गया होगा ना?
0: जी दादी जी, दिल्ली रेडियो की स्थापना की गई, स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, 1 जनवरी 1936 को हुई। पर जल्दी इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो सर्विस कर दिया गया।
2: Correct.
0: और पता है 1957 तक ये आकाशवाणी के नाम से ज्यादा पॉपुलर हो गया था।
1: भाई क्या बात है रिदम कुमार जी, आपने तो कमाल ही कर दिया है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकले। हाँ भाई, आखिर पोता किसका है
2: और नालायक किसका है?
1: आपका।
0: आपका। और सबको पता है कि रेडियो की सिग्नेचर धुन किसने बनाई थी?
3: अरे हाँ, ये धुन तो बहुत ही अट्रैक्ट करती है, आज भी कानों में गूंजती रहती है। बस
1: पता है कई लोग तो इसे रिंगटोन की तरह यूज करते हैं,
3: इट्स वेरी फेमस। पर ये धुन बनाई किसने थी ये तो बता दो मिस्टर रिदम कुमार जी।
0: श्योर श्योर, ये बनाई थी वाल्टर कॉफमैन ने 1936 में। वाल्टर कॉफमैन एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर थे, तब वो मुंबई रेडियो स्टेशन में काम कर रहे थे। वहीं उन्होंने इस धुन को इजाद किया था। इस धुन के ऑर्केस्ट्रा के संचालक मैली मेहता थे, जो जुबिन मेहता के पिता हैं। उनके साथ मिलकर उन्होंने आकाशवाणी की ये अमर सिग्नेचर ट्यून बनाई थी। और पता है ये राग शिवरंजनी में बनी है, और इसका एक वायलिन का पीस उन्होंने ही बजाया था।
2: वाह क्या बात है भाई, वाह।
1: अच्छा रिदम कुमार जी, ये तो बताइए वाल्टर कॉफमैन अंग्रेज थे क्या?
0: नहीं नहीं दादी, वो एक चेक यहूदी थे जो भारत में एक शरणार्थी थे।
3: वाह वाह क्या बात है, देखा सबने, मेरा बेटा आखिर कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है।
2: पोता किसका है?
1: आपका।
2: नहीं मतलब
3: तो मैडम रिमशा, अब आप जाइए और आप चाय बनाकर लाइए।
5: नहीं ये तो बहुत नाइंसाफी है जी।
3: बहुत नाइंसाफी, अभी कुछ देर पहले मेरी बेटी की शादी होने जा रही थी मैडम। अच्छा माँ जी, आप तो ये बताइए कि आपने नाटक कब और कैसे शुरू किए थे?
2: मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। अरे मेरी तो जब से शादी हुई है मैं इनके एक से एक नाटक देख और सुन चुका हूँ।

0: स्क्रिप्ट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो क्योंकि हम सबके हाथों में स्क्रिप्ट होती है, हम उसके डायलॉग्स में भाव डालकर बोलते चले जाते हैं, यानी अभिनय करते जाते हैं। क्यों हमेशा ऐसे ही होता है ना आज भी?
2: हाँ दादी, मेरे हाथ में तो जब पहली बार स्क्रिप्ट आई थी ना
3: तो तुम्हें तो चक्कर आ गए होंगे, क्योंकि आज तक तुम्हें दो का टेबल तो याद हुआ नहीं, तो ये कैसे याद होगी, वो भी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट।
2: एग्जैक्टली, पर जब कहा कि देखकर बोलना है तो बस मजा ही आ गया। बहुत फोकस करना पड़ता है अपने कैरेक्टर पर।
1: सच में?
2: हाँ, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल जाते हम लोग। अपने को आर्टिस्ट के साथ कई कई बार रिहर्सल करते हैं हम, पूरी तैयारी के साथ माइक पर आते हैं।
0: ठीक है ठीक है। हरमिशा हरमिशा, अरे मैंने सुना था तुम्हारा नाटक, अच्छी एक्टिंग करती हो तुम।
2: ऑल क्रेडिट गोज टू दादी जी।
1: थैंक यू थैंक यू। अच्छा, जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से तो बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाएं रेडियो नाटकों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।
0: एक मिनट, मुझे रुक्मिणी जी एक बात याद आ गई, रेडियो के नाटक लिखना चुनौती होता है ना।
1: लेखक कमाल के थे,
0: लेकिन रेडियो से लोगों को बांधना आसान थोड़ी होता होगा, जरा सा ध्यान हटा और लोगों ने सुई बदली।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात पकड़ी आपने। देखिए, नाटक की स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जिसको सुनकर श्रोता बंधा रहे रेडियो के साथ, और टाइट स्क्रिप्ट हो, अगर सीरियस है तब भी उसमें भाव और अभिनय का इतना समावेश होना चाहिए कि हम उससे अपना ध्यान ना हटा सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दूसरी बात यह कि हंसी मजाक का नाटक है तो वैसा ही होना चाहिए, कॉमेडी है तो कॉमेडी में हंसी आनी चाहिए, और थोड़ी बहुत अगर कोई कोई आप मैसेज दे सकें थोड़ा बहुत तो वो भी देने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन ठीक है, हर नाटक का काम आपको मैसेज देना नहीं है। और जहां तक श्रोतागण नाटक का पूरा आनंद उठा सकें इसके लिए डायरेक्टर, कलाकार, टेक्नीशियन सबका एक साथ कोऑपरेशन के साथ काम करना बहुत जरूरी होता था। जिस जमाने में मैंने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की तब लाइव ब्रॉडकास्ट होता था, यानी रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, एडिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी।
2: बहुत मुश्किल होता होगा।
1: बहुत मुश्किल होता था।
2: इसका मतलब दादी कि ये क्रेडिट जाता है सारा का सारा नाटक के डायरेक्टर को, जो स्क्रिप्ट पढ़ता है उसके हिसाब से कलाकार को चुनता है, और फिर वो ये सोचता है कि नाटक को कैसे और दिलचस्प बनाया जाए। फिर रिकॉर्डिंग होती है जिसमें साउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक को जोड़ा जाता है जिससे श्रोता डायलॉग के भाव के रस को और अच्छी तरह महसूस कर सके।
1: अब जैसे कि माजी का एक पुराना नाटक सुन रही थी मैं, सुनो ध्यान से सुनो, उसमें ये फील करवाना था कि वो शादी में बुआ के घर गए हुए, बुआ के घर वो अंक आवाजों से इस तरह से महसूस कराया गया कि जैसे जैसे सारे रिश्तेदार बस अड्डे पर खड़े हैं, किसी को देर हो रही है, कोई गर्मी से परेशान है, किसी को भूख लगी है, मतलब कोई बस के रुकने के साउंड है उसमें, उनके हॉर्न, चाय, चना जोर गरम, और पैकेट, ये पैकेट, वो पैकेट, जैसे कि बस स्टेशन पर, बस अड्डे पर जैसे आवाजें आती है ना, वो सारे लोगों की आवाजें, तो मुश्किल होता है ना। अमेजिंग जॉब।
2: हाँ हाँ जी, और इसका सारा क्रेडिट भी नाटक के डायरेक्टर को ही जाता है कि बैकग्राउंड साउंड क्या जाएगा। कुछ बात तो हम डायलॉग्स में ही करते हैं, जैसे सुनो रिदम, बाहर बर्फ पड़ रही है, तुम अपने को अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है? तो हमने बताया कि भाई बर्फ पड़ रही है, अब ये भाव फील होना चाहिए, हैं? ठंड का एहसास करवाना, ठंडी हवा का झोंका जो खिड़की खोल जाए वैसा फील होना चाहिए, जैसे सुनो एकदम, बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है, तुम अपने को अच्छे से कवर करके जाना, तो इस तरह का फील आना चाहिए, समझे? एक्टिंग में और साउंड में भी सेम ऐसा वाला फील आना चाहिए। तो इस तरह से हमें हर भाव को व्यक्त करना होगा कि एक्चुअल में एक्टर फील क्या कर रहा है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर, कलाकारों और साउंड रिकॉर्डिस्ट को, समझे?
0: इसका मतलब ये हुआ ना कि कुल मिलाकर ये टीम वर्क होता है।
1: हाँ ऑफ कोर्स, टीम वर्क और टीम स्पिरिट के बिना तो ये संभव ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलना पड़ता है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि नाटकों में ही नौ रस होते हैं।

0: जो साथ साथ चलते हैं।
1: करेक्ट।
2: हाँ, लेकिन दादी एक वक्त ऐसा भी आया था जब रेडियो का अस्तित्व जो था वो खत्म होने की कगार पे था।
0: हाँ, शायद कुछ नया नहीं हो रहा था, फिर सोचा समझा गया और प्राइवेट सेक्टर ने इंट्रोड्यूस कराया रेडियो FM। तब तो रेडियो सुनने की बाढ़ सी आ गई। तभी तो मैं कहती हूँ कि आकाशवाणी दिन पर दिन जवान हुआ है। अपने 90 दशक पूरे करने के बाद भी आप रेडियो की आवाज, उसके प्रोग्राम्स में किसी भी तरह की बोरियत नहीं ढूंढ पाएंगे, और यही निशानी है हमेशा जवान बने रहने की। सुन रहे हैं आप?
3: सच कह रही हैं दादी जी आप, बिल्कुल। हमारी आकाशवाणी का कल्चर ही कुछ और है, खासकर हमारे नाटक तो एकदम ओरिजिनल और पारिवारिक होते हैं।
0: भाई, लोगों ने रेडियो से अपने बड़े बड़े करियर बना लिए।
3: हाँ।
0: उन आवाजों को पब्लिकली पहचाना जाने लगा, अब वो सेलिब्रिटी हो गए थे। आकाशवाणी में भी FM गोल्ड, FM रेनबो की शुरुआत हो चुकी थी और ये लोगों के फेवरेट चैनल्स बन गए। और हाँ, आकाशवाणी के प्रोग्राम्स का स्तर ऊंचे से ऊंचा होता चला गया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: पर ना तो यहाँ की भाषा बिगड़ी ना सुर बिगड़ा, ये तारीफ की बात है। आज भी आकाशवाणी का एक शिष्टाचार बना हुआ है।
4: अरे देखो तो कोई फोन बज रहा है।
2: कोई कौन? मैं तो जाऊंगा ना उठाने के लिए।
5: हेलो जी, जी हाँ, हाँ जी जी जी, याद रहेगा। आप एक मैसेज जरूर भेज दीजिएगा इनविटेशन का। जी जी जी जी, मैं फोन नंबर शेयर कर देता हूँ। जी नो वरीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद लेकर आऊंगा। जी जी नमस्कार, धन्यवाद जी।
0: क्या हुआ, क्या हुआ रिदम, कौन है?
2: जो हमने नहीं सोचा था वही हुआ।
0: क्या हुआ?
3: बताओ ना, जल्दी बताओ।
2: आकाशवाणी ने सभी पुराने कलाकारों को बुलाया है।
3: क्या सच में?
2: जी, उनका आदर सम्मान करने के लिए।
1: अरे वाह।
2: और क्यों ना हो, 90 वर्षों की अमानत है ये कलाकार, और इसके बाद वही लोग एक लाइव नाटक भी करेंगे अपने दर्शकों के लिए।
1: अरे वाह वाह वाह। रुक्मिणी जी, मैं लेकर चलूंगा आपको। बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: दादाजी मैं जाऊंगा, क्योंकि पास तो मेरे नाम का बनेगा।
1: अरे वो तो वक्त बताएगा कौन जाएगा। अरे अभी चलो रुक्मिणी जी, एक नई साड़ी खरीद कर ले आते। उस दिन जब आप सब कलाकार लोग बैठेंगे ना, रेडियो के 90 दशक के 9 रसों को जियोगे आप। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं भाई?
0: माँ जी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। ऐसा लग रहा है जैसे रेडियो ने कितना बड़ा स्टार बना दिया अपने घर में। बस हम जब तक वहाँ थे तब तक हम वो वैल्यू ही नहीं समझ पाए। अब समझ आता है कि हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे रेडियो का और उसके नाटकों का भी।
3: दादी जी आप थे नहीं, आप हो।
1: बिल्कुल सर।
3: तभी तो आपको इतना सम्मान मिल रहा है आज भी रेडियो में।
1: अब चुप हो जाओ। अरे भाई रिदम, मेरी चाय ना हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई।
0: हाँ रिदम।
1: और रुक्मिणी जी आप शांत हो जाइए, हम बाहर चलते हैं और आज सेलिब्रेट करेंगे।
2: हाँ,
1: तैयार हो जाइए,
2: तैयार हो जाइए। ये बिल्कुल सही आइडिया।
1: सब लोग, वी विल एंजॉय।
6: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अभी आप सुन रहे थे विशेष नाटक 9 दशकों के 9 रस। लेखिका थी सुनीता अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे रघुवेंद्र तिवारी, राजेश बख्शी, प्रज्ञा झा, मयंक मनील मिश्रा, सुरेश दीप सिंह, नितिन गुप्ता, वैभव पॉल, हर्षित सिंगल, ऋषि उनियाल, दिव्यांका ठाकुर, नेहा शर्मा, सलीम खान, अदिता चौधरी।
7: अभी आप सुन रहे थे नाटक 9 दशकों के 9 रस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म वंश से। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीत मालिका तरन्नुम जहां के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत रूप कुमार राठौर की आवाज में और साथ हैं श्रेया घोषा।

कार्यक्रम गीत मालिका के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं कुछ बेहतरीन चुनिंदा नगमे। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म वीर से। आइए सुनते हैं अगला गीत साधना सरगम की आवाज फिल्म साथिया से।

0: पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले कोई फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही रक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टू ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टू मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management, leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan

बजकर 20 मिनट पर एक फनकार प्रोग्राम में आज की फनकारा हैं छाया गांगुली। 9:45 पर खबरें नशी की जाएंगी और रात 9:55 पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे आप स्टूडियो मुशायरा सुनेंगे और 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा तामिले इरशाद। 11:30 तक दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन और 11:30 पर प्रोग्राम पेश होगा सुर्खियों में

0: एक फनकार प्रोग्राम में आज की फनकारा थी छाया गांगुली। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। शब के 9:45 हुआ चाहते हैं। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर दाखिला अमित शाह ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और शहरियों को शामिल करते हुए 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का जखीरा कायम किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र

जाती है इसका, और जूस तो आप पीते ही हैं। जी हाँ लीची, क्योंकि मीठी और खट्टी मीठी होती है, और इसका जो जायका है वो वाकई आपको मदहोश कर देता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें जरूरी गजाए अज्जा पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के गजाए अज्जा इसमें दिगर और भी शामिल होते हैं, और इसके खाने से बहुत सारे फवाइद आपको हासिल होते हैं, खास तौर पे अगर हम बात करें सेहत के हवाले से। लीची में खास तौर से तकरीबन 82% पानी होता है और 16.5% कार्बोहाइड्रेट्स। अब लीची के कुल अगर गजाई अज्जा की बात की जाए फी 100 ग्राम, तो कुछ इस तरह से हैं। इसमें चिकनाई या फैट जो है तकरीबन 0.4 ग्राम यानी 0.4 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 16.5 ग्राम, फाइबर्स 1.3 ग्राम, प्रोटीन 0.8 ग्राम, और चीनी तकरीबन 15.2 ग्राम, और कैलोरीज की बात की जाए तो तकरीबन 66 कैलोरीज होती हैं। अब इसको खाने से क्या क्या फायदे आपको हासिल हो सकते हैं, उन पर बात करना भी जरूरी है। लीची उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें निज़ाम हाजमा से मुतालिक परेशानियां रहती हैं, और एक गिलास लीची का जूस पीना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है माहिरीन के मुताबिक कि ये बेचैनी को कम करता है, और इसमें फाइबर्स वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, तो ये आपके पेट को सही रखता है और खास तौर पे कब्ज की परेशानी को दूर करता है, और इसके अलावा ये एंजाइम्स की जो जिस्म में अफजाइश है उसमें इजाफा करता है, वजन घटाने में मदद कर सकता है, चूंकि इसमें फाइबर्स काफी पाए जाते हैं, तो लीची में चूंकि पानी की मकदार भी काफी ज्यादा होती है और इसमें फैट कम होती है, कैलोरीज भी कम होती हैं, तो लिहाजा वजन घटाने के लिए ये मुआविन साबित हो सकती है, और हड्डियों को मजबूती देती है लीची। इसके खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, चूंकि इसमें आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज वगैरह जैसे अज्जा पाए जाते हैं, और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने में मुआविन साबित होते हैं। और लीची में पाया जाने वाला जो कॉपर है, जिसमें आयरन जितना अहमियत रखता है उतना ही कॉपर भी रखता है, तो इस तरह के अज्जा अगर आपको चाहिए आपके जिस्म को, तो लीची एक अच्छा मुतबादिल हो सकता है और आपकी जिल्द को उम्दा रखता है। और कहते हैं चेहरे पर अगर झुर्रियां, दाग धब्बे और बारीक बारीक निशान दिखाई देते हैं, लकीरें दिखाई देती हैं चेहरे पर, तो इसके लिए लीची का इस्तेमाल आप करें। लीची में विटामिन ई की मौजूदगी सनबर्न में मदद करती है, जिससे जलन, दर्द और हमारे स्किन को जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन ये नुकसान से अगर बचना है तो आप लीची का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीची के फायदों में हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करना भी शामिल है। इसमें पोटेशियम की अच्छी मकदार पाई जाती है, सोडियम कम मकदार में होता है, जो जिसमें तरावट को जो है बनाए रखता है, और यही वजह है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है। इम्यूनिटी को ये बढ़ाने में, उसमें इजाफा करने में फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है। एक गिलास लीची यानी कि 7 लीची का जूस अगर बनाए तो इसमें विटामिन सी तकरीबन आपको 100% आपके जिस्म की जरूरत को पूरा कर सकता है, और ये उम्र के बढ़ने के प्रोसेस को आहिस्ता करता है, स्लो करता है अगर आप लीची खाते हैं, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी सेहत पे, क्योंकि उम्र के बढ़ने के लिए कई बार जिल्द आपकी इस तरह की हो जाती है कि उससे लगता है कि उम्र के बढ़ती उम्र के निशानात जाहिर होते हैं, और लीवर के लिए बहुत अच्छा है जनाब, जिगर के लिए पॉलीफिनॉल्स इसमें मौजूद होता है, तो लीवर के नुकसान को ये कम करता है यानी पॉलीफिनॉल, और इसमें चूंकि चर्बी कम होती है, फैट कम होती है, जिससे जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और

0: उनका लीवर फैटी हो जाता है, ऐसे लोगों को लीची का इस्तेमाल करना चाहिए, माहिरीन का यही कहना है। और ऑक्सीडेटिव जो टेंशन रहता है उससे भी बचने में जो है मुआविन होता है लीची का इस्तेमाल, और कैंसर के जो इम्कानात होते हैं उनको भी कम करने में ये मुआविन साबित हो सकता है माहिरीन के मुताल्लिक। तो ये थी चंद बातें उस फल के हवाले से जो देखने में भी खूबसूरत है, जायके में तो लज्जतदार है ही। हम बात कर रहे थे लीची के हवाले से, उसके तिब्बी फवायद भी आपको बताया, और वैसे भी आप इसको जायके के तौर पर खाना चाहें, जायके के फल के तौर पर, तो वो आपके लिए बहुत ही उम्दा साबित हो सकता है। ये थे चंद मशवरे सेहत, आपकी सेहत के हवाले से, मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशे खिदमत है मुशायरा।
1: सामईन कराम, अगर वो सकाफत किसी भी तहजीब का एक अहम हिस्सा होते हैं, अदब जिसे साहित्य लिटरेचर के नाम से हम जानते हैं, उसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है नसर, जिसमें किस्सा, कहानियां और तरह तरह के अफसाने बुने जाते हैं। दूसरी तरफ है नज्म, उस जुमले में हम शेरी असनाफ को डालते हैं। इस सिंफ में नज्म, गजल, कसीदा, रुबाई, मसनवी और भी कई तरह के शेरी पैराहन हमें देखने को मिलता है। मुशायरा हर जमाने में मकबूल व मारूफ रहा है। इस बज़्म में हम आपको उन शायरों के कलाम सुनवाते हैं जो शेरी दुनिया में अपना मकाम रखते हैं। शायर की यह खूबी होती है कि वो दरिया को कूजे में बंद कर दे और कूजे को दरिया बना दे। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बातों को या जिन एहसासात को हम लफ्जों में बयान नहीं कर पाते या हमारे लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं, ऐसे एहसासात को बयान करने के लिए हम शेर का सहारा लेते हैं, और ये अशआर हमारे एहसासात की बेहतर तर्जुमानी करती है। यही वजह है और यही शायरी का कमाल है। तो आइए सामईन, आपको सुनवाते हैं बज़्मे मुशायरा। आज इस मुशायरे को जीनत बख्श रहे हैं जनाब परवेज शहरयार, आसिफ अमान सैफी, अब्दुल नसीब खान, और निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं शकील जमाली। तो लीजिए समात कीजिए मुशायरा।
2: आज की इस नशस्त में जो शुराए किराम हिस्सा ले रहे हैं उनमें मोहतरम जनाब नसीब खान साहेब, जनाब परवेज शहरयार साहेब, आसिफ अमान सैफी और मैं शकील जमाली। तो सबसे पहले एक ताजा कार और खूबसूरत लब लहजे के शायर आसिफ अमान के रूबरू चलता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं उनकी शायरी के लिए। आसिफ अमान सैफी।
3: बेहद शुक्रिया। एक ताजा गजल के चंद अशआर मुलाहजा फरमाए। पलकों पे रखे ख्वाब से कुछ हो नहीं रहा, पलकों पे रखे ख्वाब से कुछ हो नहीं रहा, होठों पे इनकलाब से कुछ हो नहीं रहा।
4: बहुत क्या बात,
2: बहुत अच्छा।
3: कुछ और ही जहां हो ये मेरे हिसाब से,
2: क्या बात,
4: कुछ और ही
3: जहां हो ये मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं रहा।
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर,
4: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर,
3: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर, जब आपके जवाब से कुछ हो नहीं रहा।
4: क्या बात,
2: बहुत बहुत।
3: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर, जब आपके जवाब से कुछ हो नहीं रहा। अब फिर से माहताब की दरकार है उन्हें,
2: अब फिर से माहताब की दरकार है,
3: फिर से माहताब की दरकार है उन्हें, अब उनका आफताब से कुछ हो नहीं रहा।
2: क्या बात,
3: क्या कीजिए कि खत्म हूँ अंदर की उजलतें, क्या कीजिए कि खत्म हो अंदर की उजलतें, बाहर की आबो ताब से कुछ हो नहीं रहा।
2: बहुत अच्छा,
4: बहुत खूब।
3: कुछ सोचकर جناب

0: नहीं कर रहे हैं कुछ।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: कुछ सोचकर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं जनाब से कुछ हो नहीं।
2: क्या बात है, क्या बात है,
0: सोचकर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ,
1: ऐसा नहीं जनाब से कुछ,
0: ऐसा नहीं जनाब से कुछ हो नहीं रहा। हम पर मजीद कहर कोई पड़ना चाहिए,
1: हम
0: पर मजीद कहर कोई पड़ना चाहिए, बदलाव इस अजाब से कुछ हो नहीं रहा।
2: क्या बात, अच्छा, क्या बात,
0: बदलाव इस अजाब से कुछ हो नहीं रहा। एक गजल के चंद अशआर और देखेगा, बताए हुए कि सारे मजहब थे एक आंगन था।
1: क्या बात है,
2: सारे मजहब थे,
0: सारे मजहब थे एक आंगन था, काबिले फख्र अपना बचपन था। सारे मजहब थे एक आंगन था, काबिले फख्र अपना बचपन था, ये खला दोस्त भर नहीं सकते।
1: क्या बात,
2: ये खला दोस्त भर नहीं सकते,
0: ये खला दोस्त भर नहीं सकते, वो खुले दिल से मेरा दुश्मन था।
2: क्या बात,
1: बहुत अच्छा,
0: ये खला दोस्त भर नहीं सकते,
1: बहुत अच्छा,
0: वो खुले दिल से मेरा दुश्मन था। अब उसी बात पर पशेमा है, अब उसी बात पर पशेमा है।
1: क्या बात है,
0: मुझसे जिस बात पर वो बदजन था।
1: क्या बात,
2: क्या बात,
1: क्या बात है,
2: बहुत खूब।
0: अब उसी बात पर पशेमा है, मुझसे जिस बात पर वो बदजन था, तेरे दर से ही जी नहीं भरता,
1: तेरे दर से ही जी नहीं भरता,
0: तेरे दर से ही जी नहीं भरता, शहर देखे तेरा बड़ा मन था।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: अच्छा शेर,
0: तेरे दर से ही जी नहीं भरता, शहर देखे तेरा बड़ा मन था। और शेर देखे शेर आखिर की, एक दूजे के दिल में थे आजाद,
2: मतलब
0: एक दूजे के दिल में थे आजाद, कैसा मजबूत हुआ अपना बंधन था।
1: क्या बात, क्या बात,
2: वाह,
0: शुक्रिया। एक गजल और
1: जी फरमाइए।
0: यही तावीज का बस फायदा है,
2: यही तावीज का बस फायदा है,
0: यही तावीज का बस फायदा है, तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है।
1: क्या
2: बात, बहुत खूबसूरत,
0: तुम्हारे ही तावीज का बस फायदा है,
1: तुम्हारे हाथ का,
0: तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है, हमारे बीच एक रिश्ता बना है,
2: हमारे बीच एक रिश्ता बना है,
0: हमारे बीच एक रिश्ता बना है, तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है।
1: बहुत बहुत,
0: हमारे बीच एक रिश्ता बना है, तुम्हें भी नहीं धोखा दिया है, बहूठा दोस्त वापस आ गया है, बहूठा दोस्त वापस आ गया है, मगर बेसाख्ता पन जा चुका है।
1: बहुत अच्छा,
0: और बतौर खास के तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
1: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
0: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है।
1: क्या बात,
0: मेरी चेहरा वहीं उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है। ये रातें नींद से परहेज की हैं, ये रातें नींद से परहेज की हैं, इन्हें सोकर गुजारा जा रहा है।
1: बहुत अच्छा, बहुत
2: खूब।
0: और शेर देखें कि जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: क्या कहने वाला।
0: जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता है, चुराती है नजर मेरी ही आंखें, चुराती है नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है।
1: बहुत
2: वाह वाह,
0: चुराती है नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है, तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है।
1: बहुत अच्छा दोस्तों, ये थे आसिफ अमान सैफी साहब, जिनके कलाम से हम लोग महसूस हो रहे थे। अब हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है कि जो न सिर्फ शहरी सतह पे बल्कि

0: नाचता हुआ इंसान बेबसी की शहनाई तालियां बजाएगा, शोब दे कलंदर के है नजूल सहबा का, जिस्म जा के उतरन भी तार हाय सीमो जर, होंगे शहद के छत्ते, होंगे शहद के छत्ते, रात ख्वाब में देखा।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
2: बहुत अच्छा। मंदर निगारी का तो कमाल है।
0: दूसरी नज्म का उन्वान है एक सियाह मर्ज होगा
1: जी, शाबाश
0: शाबाश। रात ख्वाब में देखा नीम जान करगस सिख ना उम्मीद कुछ तरसा, तौलता है पर अपने पास गोरकन बूढ़ा, नीम जान करगस से जेरे लब मुखातिब है, शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा, सरमगी सी चादर की शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा, सुरमगी सी चादर एक दूर आसमानों से अब उतरने वाली है, माबदों के जीने सब बांग देने वाले हैं, रात मुर्गो माही के खान सजने वाले हैं। आज तुम यहीं ठहरो शहर में खमोशा के, वक्त के सलासिल के मुनहनी से कैदी हो, चाहते हो गर्दिश क्यों राह एक बेगानी, लाल जानवर वहशी मुश्क नाप की खातिर तुमको नोच डालेंगे, शहर में खमोशा के आना सहल कितना है, पर यहाँ से जाने के रास्ते गुजरते हैं, ऊंघते शराबों से मुस्तरद मकानों से, झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: शहर में खमोशा के आना सहल कितना है, पर यहाँ से जाने के रास्ते गुजरते हैं, ऊंघते शराबों से मुस्तरद मकानों से, झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से, राहगीर भी गुमसुम हापते झपटते हैं, शाहिबा सफा हूँ मैं, काजिए जहाँ हूँ मैं, बात मान लो मेरी आज तुम यहीं ठहरो, वरना बाव के झोंके, वरना बाव के झोंके और बगुले शोरीदा सारी खाक कब्रों की डाल जाएंगे तुम पर, और जमी की गहराई रास आती जाएगी तेवरों की दुनिया से, दूर एक दुनिया में चौबदारों के दस्ते और संतरी सारे, धारदार कतबों के बेशुमार टुकड़ों से संगसार कर देंगे या कि जबह कर देंगे, आज तुम यहीं ठहरो शहर में खमोशा के, बस पलक झपकते ही झिलमिलाने लगता है और एक नया मंजर, नीम जान करगस फिर तौलता है पर अपने, अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में, नीम जान करगस की
1: क्या बात,
0: अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में, नीम जान करगस की माबदों के जीने सब बांग देने लगते हैं, नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है।
1: बहुत
0: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, नीम जान करगस सिक ना उम्मीद कुछ तरसा, तौलता है पर अपने ख्वाब मैंने दोहराया।
1: बहुत अच्छा।
0: सख्त जहाँ दरिंदे हैं और वो होश जिन्नाती, करवटें तो बदलेंगे दांत कट कटाएंगे, हुक्मरान शेरों के फीलबा सजीले सब सैद होंगे हाथी के, और असीर पंजों के आजमाएंगे जादू, बूढ़ा सोच कर बोला, और गजा में शेरों की हाथियों के बच्चों की ताजियानों के टुकड़े धारदार अनी होंगी, हाथियों के पैरों में आबले पड़े होंगे।
3: अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिले इरशाद। ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नईम का आदाब कबूल कीजिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

एक मंदिर फिल्म का ये तुगाना सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। नगमा निगार थे सजयपुरी, मौसीकी शंकर जयकिशन की थी और सुनने के ख्वाहिशमंद थे कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और साथ में थे उनके बिट्टा बजाज। इसी नगमे को सुनना चाहते थे रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और अलीजा नायाब। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से फरमाइश की थी मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत और राशि रक्षित ने। इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी थे घंटाघर चौखंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। अलीगढ़ डबवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार कुलदीप गांधी की फरमाइश भी थी और इसी नगमे को सुनना चाहते थे सेक्टर

67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। हिमुडा शोघी से फरमाइश की थी शिमला से सुनील खेड़ा, नितिन और दिव्यांशु ने। इसी नकमे को सुनने के मुंतजिर थे मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज। आपने में फरमाइश 6 साल की दादा बबरो गिडी झारखंड से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुलवार, भानु प्रकाश और कमला रानी की फरमाइश भी थी। और आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष और उनके कुछ और साथी। और इसी नकमे को सुनना चाहते थे गंगा बेन बांकर, प्रीति और जूली। भुज कच्छ से आपने फरमाइश, जमथाड़ा से हमें इस साल की थी नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न और गौरव सिंह की फरमाइश थी महोबा बुंदेलखंड यूपी से। और आप हैं मास्टर एस के पाटिल, मीना रानी पाटिल, प्रियंका जय पाटिल, हल्नी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। उपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से सुनने के ख्वाहिशमंद थे इस नगमे को मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज अब्बासी। और इसी नगमे से महसूस हो रही थी राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, साथ में उनके डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। प्रोग्राम की अगली पेशकश मुबारक बेगम की आवाज में, हमारी याद आएगी फिल्म का नगमा है, नगमा निगार केदार शर्मा, मौसीकी स्नेहल भटकर की है। और इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद तमाम सामीन, बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु की फरमाइश है मुक्तसर पंजाब से। और आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, साथ में उनके योगेश शर्मा। कंडला बंदर कच्छ से फरमाइश की जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जौहरी ने। इसी नकमे को सुनना चाहते हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहिब और साथ में बिहारी बाबू। गांव नदराला अलीगंज से सुनने के मुतमन्नी इस नकमे को गुलशन परवीन, रोशन परवीन और फरीहा खान। और इसी नकमे से महजूज हो रहे हैं अजीज भाई, मतीन भाई, शेख चांद फारूक, निजामाबाद के नेहरू पार्क से अपने फरमाइश हमें साल की। तेलंगाना से आपका ये ईमेल हमें मौसूल हुआ। और अगला ईमेल है कस्बा बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल का। राजू टुटेजा खुशदिल, उर्मिला टुटेजा और शिव सेठी करणपुरी, राजस्थान से आपने फरमाइश हमें साल की है। और रविन्द्र सिंह छाबड़ा, टेबर गार्डन ने दिल से, साथ में इंद्रजीत कौर छाबड़ा, साथ में स्वीटी छाबड़ा भी हैं। अगला नकमा आपकी नजर भी करते हैं राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, तन्मय गजबी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, अजालता शहीन सुल्ताना, तोरण तस्नीम बरकाकाना से। सुनना चाहते हैं अगले नकमे को कांटा रोड वाशिंग महाराष्ट्र से फरमाइश की मास्टर विठा सरोशे, सुषमा सरोशे और मायरा सरोशे ने। तो आइए सुनते हैं मुबारक बेगम की आवाज में फिल्म हमारी याद आएगी का ये नगमा।

बेगम की आवाज में ये नगमा सुन रहे थे, हमारी याद आएगी फिल्म से। और अगला नगमा है जिसमें मुबारक बेगम का साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफी। फिल्म है फरियाद, मौसीकी स्नेहल भटकर की। सुनने के ख्वाहिशमंद एसएम जावेद शगुफ्ता न्यू टावर चौगुमला झारखंड से, सरलाही सोखना नेपाल से फरमाइश की, अरुण कुमार शर्मा, रेणुदेव शर्मा और राहुल कुमार शर्मा ने। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर से सुनना चाहते हैं इस नगमे को लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना। त्रिवेणीनगर सिद्धपुरा टाउन से फरमाइश की है जुबैर अली खान, सभिया जुबैर और अंजुमन खान ने। मोहम्मद रफीक पवार, बेनजी कौसर, मोहम्मद हसैन पवार हैं ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। और इसी नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद उमरी नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, भानु अप्पा गढ़वले, ज्योति गढ़वले और शिव सुंदर गढ़वले और अहले खाना। गाजीबाग अकोला से फरमाइश रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और धनंजय कटंकर की है। इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और फाल्गुनी जोशी। बालू कुकड़े, सविता कुकड़े, नितिन पाटिल की फरमाइश है आकोट महाराष्ट्र से। और अगला ईमेल है गुनी नाम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा का, सहसपुर लोहारा, दानिया खुर्द, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से। और आप हैं कादरगंज रोड गंज डंडवाल से शादाब शमशाद, अंदलीब खानम, सारा फातिमा शेख। और ये फरमाइश है सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक की। और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी है मुरली नगर चौबदा महाराष्ट्र से मच्छिंद्रा पाटिल, कल्पना पाटिल। राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से सुनना चाहते हैं अगले नगमे को देवान पाल, जयसिंह पाल और विमलेश और उनके बहुत सारे साथी। और ये फरमाइश आई है चांदखेड़ा अहमदाबाद से आनंद राज सागर, तरुलता सागर की। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं कस्बा गुन्नौर और यूपी से फारूक अली खान और फैजी फराज। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से आसिफ खान, आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान की फरमाइश भी है। अगला नगमा आपकी नजर पे करते हैं, आप हैं शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख, बेबी मुस्कान, गणेशपुर गंज टंडवारा एटा से। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये फरमाइशी मेर मौसूल व रोशनलाल देवांगन, कौशल देवांगन, हेमलता देवांगन का। और अगले मेल रिपीट है, इसको करते हैं जनाब रनआउट बड़े प्यार के साथ। अपागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और अनस और किशन सबकाल, आशा सबकाल, विशाल सबकाल की फरमाइश शास्त्री नगर बीड शहर से मौसूल हुई है। अगला ईमेल मौसूल हुआ है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन और शुभम सेन का। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

और उषा राय हैं कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलिया से। अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं और आप हैं सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग नारंग और आशु के साथ में सोनाली। और भिलाई छत्तीसगढ़ से फरमाइश की मुकेश शर्मा गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने। उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किशुताशु पाकुड़ झारखंड से हैं और ये फरमाइश मौसूल हुई। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी राजदास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी की। और मोहम्मद कलीम जख्मी नजमा बेगम नाज बेबी फातिमा गाजी हैं रेलवे रोड गंज टंडवारा से और ये फरमाइश आई अशोक दले सविता दले और निकेत की। आपने कुम्हार गली श्रीरामपुर से ये फरमाइश हमें साल की है तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जब सुनिए, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का दोगाना मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शैलेंद्र ने इस नगमे को कलमबंद किया, मौसीकी शंकर जयकिशन की है। फरमाइश बाद में, आइए पहले ये नगमा सुनते हैं।

0: चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स, राडार्स और जदीद तार बाड़ करने समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम किया जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्री पार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया। म्यांमार की सदर यू मीन ऑंग हेलियांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगी। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोतरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और म्यांमार के सदर दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक्किदा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुजाकिरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैरकानूनी माइग्रेंट से मुतालिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैरकानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकिरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम के भारत आने की उम्मीद है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी जिसमें एक कौमी टेस्टिंग एजेंसी को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनाकात के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरखास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से हलफनामा दाखिल करने को कहा है और इस मामले की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज्म है कि इसमें कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन यौमिया है। मुतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खोरदा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकिरात में पेशरफ्त हुई है क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हॉर्मुज को दोबारा खोलने के मुफाहमत नामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वांस ने तस्दीक की है कि मुजाकिरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी तक जेरे इल्तवा है। इसी दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालबा करता है। खलीज टाउन काउंसिल जीसीसी ममालिक के इस मामले में हंगामी बुनियादों पर आगे बढ़ रहे हैं। कतर ने आबनाए हॉर्मुज में बहरी कवानीन से मुतालिक हतमी नुकात तय करने के लिए तेहरान को अपनी खसूसी सालिसी टीमें तैनात की हैं। दोहा भी जारी किए गए ईरानी फंड्स के सख्ती से इंसानी बेहतरी में इस्तेमाल को मुमकिन बनाने के लिए तीसरे फरीक पर मबनी मुनज्जम मैकेनिज्म के कयाम पर काम कर रहा है। भारत के लिए पेट्रोल ले जाने वाला तेल टैंकर निसोज कैरोस ने कामयाबी के साथ आबनाए हॉर्मुज पार कर लिया है और वो विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। तवक्को है कि वो 3 जून तक वहां पहुंच जाएगा। मार्शल जजायर परचम्बरदार जहाज 21 मई को शारजा से रवाना हुआ था। ईरान की न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है कि ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने जारी कशीदगी के पेश नजर 24 घंटे के अंदर आबनाए हॉर्मुज के रास्ते 23 तजारती जहाजों को गुजरने के सिलसिले में सहूलत कारी की। सदर ट्रंप की कयादत में अमरीका ने आबनाए हॉर्मुज के रास्ते के जरिए समंदर में जहाजों की आजादाना नकलो हरकत की जरूरत पर जोर दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने आज कहा है कि कांगो की जमहूरिया रिपब्लिक DRC में 223 मुश्तबा अमवात समेत इबोला के 906 मुश्तबा मामलात पाए गए हैं, जिनकी तहकीकात की जा रही है। कांगो की जमहूरिया रिपब्लिक में इबोला के बुंडी बोगियो वायरस का फैलाव जारी है। इसके साथ युगांडा में भी ऐसे मामलात की रिपोर्ट मिली है। WHO के मुताबिक DRC में इबोला के 125 तस्दीकशुदा मामलात हैं। इनमें इटूरी, शुमाली कीवू और जुनूबी कीवू में 17 मुसद्दका अमवात शामिल हैं। युगांडा में इबोला के 7 मुसद्दका मामलात सामने आए हैं। नेज 1 मौत हुई है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट PTM के कारकुन फरीदुल्ला आफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतालिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतालिक अपने रिकॉर्ड के जिम्न में ताजा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मुकामी पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेज उन्होंने उनकी गुमशुदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया। बैन अल-अक़वामी हुकूक की एजेंसी ने कहा कि आफरीदी का मामला जबरी गुमशुदगी और PTM के अराकीन और हामियों को निशाना बनाने के सरकारी कार्रवाई के मामले की अक्कासी करता है। सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल जोड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रनकी रेड्डी और चिराग ने आरोन ताई और कांग खाई जिंग की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। म्यांमार की सदर यू मिन ऑंग हिलांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान को पश्तून तहफुज मूवमेंट PTM के कारकुन फरीदुल्ला आफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी के बाद इंसानी हकूक के जिम्न में ताजा तनकीद का सामना है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री रेंज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। और दोस्तों, प्रोग्राम जारी है तामिल इरशाद। अगला नगमा तामिल इरशाद प्रोग्राम का आप तमाम सामईन की नजर करते हैं। सहारनपुर कुमार हेड़ा गांव से हैं सैयद मसूद, शाहिन हसन, नाजिया और अहले खाना। किशोरनगर अमरावती से हैं हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गोंदाने और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा और ये फरमाइश आई है मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन की। अगला ईमेल है अमीर खुसरो रोड गंज डुंडवा से डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम का और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। परसोगा लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो और करिश्मा और ये फरमाइश ईमेल किशनगंज बिहार से मिला है रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, वर्षा सुमन का। अगला नगमा आपकी नजर भी करते हैं विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और आरती गौरी ओम मोटाला महाराष्ट्र से। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप और आशी राजेश और ये फरमाइश आई है आसे गांव बाजार से करण रंजीत पुनकर की और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल और बोधराज खोरवाल। मधुबटीला दिल्ली से फरमाइश की कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा ने। सुनील पाठक, कमल पाठक और दिव्या गव्या मल्होत्रा माफ कीजिएगा नारकली बाजार जगराउंड से हैं और ये फरमाइश है हरपुर मटकरी बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी की। और गोपाल तांबोली, कांता तांबोली, तिलक तांबोली, श्रीजी विहार कॉलोनी बेदला उदयपुर से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सुब्रत चौधरी कोलकाता से, और आप

ब्लॉक में हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो साइड लाइन कर दिया है आपको हमने। फातिमा कलन श्रीरामपुर माजद से, नासिर शेख नाजिर नासिर साजिद शाहिद और बाबा कुटी रायगढ़ से शिव चौहान, संक्रांति और उत्कर्ष चौहान और नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, गजानन नीले नवदीप पहले सुशील सिद्धार्थपुर दरियापुर बावली से हैं और जॉन डिकेस्टो रोजी डिकेस्टो विलिस के साथ में जनकपुरी सहारनपुर से, नैमेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर निर्मला नावकर विशाल और उनके अहलखाना और राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी बुल्केवाली फलनाजा गोकुल चौक गंगजिला सहरसा से हैं। ये फरमाइश है ये डॉक्टर सुरेश जाधव अनिता जाधव सोनल प्रसाद जाधव की नरहरी चौक पैठण से और मोटाला के दोस्त शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरमिंदर चावला सोहन जोशी साथ में शिव कुमार शर्मा अब्दुल गफ्फार डावर अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर नागचून रोड संजय कॉलोनी से, सदाशिव थोराट कविता थोराट शिया थोराट देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से और ये फरमाइश है जमशेदपुर से अपूर्व सिंह अनुपम कुमारी और राकेश कुमार की और नरोत्तम गौड़ हिमांशु गौड़ यश गौड़ उदयपुर राजस्थान से सुनना चाहते हैं अगला नगमा और रिग्नी छत्तीसगढ़ से फरमाइश की दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।

आशा भोसले हम हमारे फिर की आवाजों में ये नखमा आप सुन रहे थे हॉलिडे इन बॉम्बे फिल्म का नखमा अनवर फरूख आबादी का लिखा हुआ इन दत्ता की मौसीकी में। अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म का नखमा। इस नखमे को सुनना चाहते हैं

अजीब शख्स से नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो वो खफा ही लगे। और आइए दोस्तों अब कुछ नाम जल्दी जल्दी शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट और निखिल कागड़ा, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश दूलापुर मुरादाबाद से, रावण मनवर, सल्ला मनवर, बी प्रियांशी यवतमाल के शाहनगर से हैं, और रेखा कामले, राखी कामले, आनंद कुमार कामले गौरीनगर इंदौर से। और ये फरमाइश है राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान की। करणवीर हाउस भूचोकैचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और करणवीर करण और प्रवीण श्रीमाली, साथी मीना श्रीमाली, कंवर कॉलोनी बड़वा एमपी से। गंगाधर यमकर, प्रमोद यमकर, प्रदीप यमकर मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं। और अगला ईमेल रिपीट होगा, इसको करते हैं साइड लाइन। संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। और आप हैं बागपत यूपी से संजय ढींगा, नमन ढींगा, अपार ढींगा, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत निम्नाबाद जींद से हैं, कैलाशपुर माली, दीपक पुरमाली, वेदिका है अहमदपुर खेगांव खंडवा से। और ये फरमाइश आई है वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत खान, मास्टर अजहर खान की। और अगला ईमेल है तोरवाल नवाशहर पंजाब से डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी का। इसी नगमे को सुन रहे हैं गांधी बागकुल्ला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और धनंजय। और शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुनीत रमेश साहू हैं बक्सर बिहार से। और ये फरमाइश आई है उदयपुर से राजकुमार माथुर, अशरफ खान, गोपाल बाबू सिंधी की, अलीम पटेल, मास्टर अलीम पटेल ने, साथ में मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल, नर्मदा पाक मंगल वेडा से हैं। और जाते जाते एक और नगमा भरोसा फिल्म का आपकी नजर कर रहे हैं। जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश की रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रिफाकत और उनके बहुत सारे साथियों ने। और आप हैं भोला कॉलोनी घरौंदा करनाल से बीजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन और उनके बहुत सारे साथी, और मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान और बेगम शमा रफी। भरगत बेल हुबली कर्नाटक से फैज अहमद, शाकिर मुल्ला जी और साबिर मुल्ला जी। और ये फरमाइश आई है मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार की। छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, साथ में अयूब खत्री और कांति नगर राजनगर से हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। पुरानी भिलाई तीन चौरादा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, साथ में है बेगम हमीदुन सिद्दीकी और जीशान अहमद सिद्दीकी। अगला मेल भी हो गया रिपीट, इसको भी करते हैं साइड लाइन। गांव फरासी साथ से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, साथ में पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल है नांदेड़ा येताला से। और ये फरमाइश आई है सुशांत प्रियाजा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी की, टिम्बर मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली से। बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा और ज्योति हैं बठेना पाटन दुर्ग से। और ये फरमाइशी मेल मिला है अयोध्या नगर रालेगांव से विनोद कुमार ढवले और वेनुताई ढवले का। और आप हैं पंचकुला।

0: सेक्टर 9 से आशु चौक, अश्विनी चौक और साथ में गोविंद चौक। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय, तनु श्री गुप्ता और नन्हे मुन्ने से अन्विका बेबी और बेनजीर कौसर, हसीना बी पवार, हिना से खोकर, ताज रेडियो का कल्लनगंज खंडवा से हैं सिद्धार्थ गोंदाने, आशना ताई गोंदाने और प्रणय प्रसिद्धि, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं, सलीम अख्तर साथ में है, रेशमा बेगम अलीगढ़ यूपी से और सुरेश चौरसिया और साथ में है सरोज चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया, फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से और ये फरमाइश आई है पश्चिम थोक गंज डरवा से मुनव्वर अल्लाह पीरजादा, नसीम मिर्जा, अरबाज शहबाज की और आप हैं आंसार स्टेशन जिला नवसारी से जयंती पटेल, कुसुम और साथ में भौमिक और दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से हैं और ये फरमाइशी ईमेल मिला है गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी का, विजय महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से हैं, सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना कृष्णा पार्क दिल्ली से और ये फरमाइश आई है बांदा यूपी से फहीम मंसूरी दी, फातिमा मंसूरी की और राधानगर बेलगाम कर्नाटक से मोहम्मद आसिफ दीवान, मोहम्मद तमीम दीवान और अबुजर कौसर दीवान, प्रभुदास कोटेचा, अंसा कोटेचा, आशीष की फरमाइश है जंक्शन प्लॉट राजकोट से और अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबात हुजरे की फरमाइश सांगली जत शहर से हैं और ये फरमाइश है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की और आप हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी और साथ में है मोहम्मद अयान अंसारी और एक ईमेल जाते जाते और ले लेते हैं सागर एमपी से चंद्रेश गौर, वंदना गौर और जयपाल यादव और ये थी तमिली छात्र प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
2: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। ये केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और ये बताएं प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
3: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है, चाहे इसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहां तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है आखिरी जो प्रगति हुई थी वो क्या बनवा, तो इसपे ज्यादातर जो लिया जाता है वो है डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं, तो उसपे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही

0: होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हजार, उसके बाद 20 और 50 हजार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारे शिकायतें होती हैं, तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए जो पूरी व्यवस्था की गई है, उनकी ग्रीवेंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इस पे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है, बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम और लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विलंब होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है, तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है, जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जब आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है तो हमारे एक्सचेकर पे, हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरमेंट और जंगल की जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसको यूटिलिटी शिफ्टिंग, जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता है उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट है जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं, जो चीजें रिजर्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिरी में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते, तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं, पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई। तो एक तरह से आपका जो जिसको हम कहते फिस्कल बर्डन होता हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता, वो घटा, और समय भी इसके कारण बचा, जो बहुत डिले लगता है। जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था, वो प्रगति के कारण बहुत जल्दी संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाते उसको कम्प्लीट होने में, प्रगति होने से उस पर उसका त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग, कोई एक प्रोजेक्ट का जब हर ऑफिसर को, हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो आप देखिए कि वहां पे तत्परता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है, मैं ये जानता हूं, जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है, आप कोई भी मंत्रालय में जाइए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए, वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है, क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है, मीटिंग के पीछे की जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट, और सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे ये आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है, ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर है, जितने मंत्रालय है, सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजोल्व कर ली है। तो देखिए इसका ब्यूटी है, क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाता है, और जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को, विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं, तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है, और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन, सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है, उससे तो बच गए ना।
1: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती हैं या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके में कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
0: एकदम आपने सही कहा, और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपका लैंड एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए, आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए, अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो

0: में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत, खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल की अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है, हमारे संसद में आता है, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, या रेलवे मंत्रालय हो, या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो, ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का, तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस, क्लियरेंसेस क्या क्या है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत, एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि तीसरा कारण है कि जिसको हम यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहां पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर के जो खंभे लगे होंगे और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं, तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली यही चार पांच चीजें हैं, तीन चार चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है। और जब प्रगति होती है तो उसपे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है, जैसे मैंने आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उसपे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण की बात करें और तीसरा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, अभी प्रगति हुई थी उस पर रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था, जहां पे वहां पे भी कोई कंपनसेशन जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कंपनसेशन है दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इसपे क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिये केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया है ही, देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को, तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है, और इस रिव्यू का कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कम्प्लीट हुआ।
1: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी है और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा सका है और कुछ तो कंप्लीट भी हो चुके होंगे। ये मंच प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष देखरेख में केंद्र और राज्यों के बीच वास्तविक समय में तालमेल सुनिश्चित करते हुए जवाबदेही को और अधिक अच्छा करती है। जमीनी स्तर पर प्रगति और क्या बदलाव ला रही है, चाहे वो गवर्नेंस लेवल हो या लोगों के लिए आराम सुनिश्चित करना या ईज ऑफ लिविंग जो कि सरकार का बहुत फोकस एरिया रहा है, वो सुनिश्चित करने में कैसे मदद कर रही है।
0: जैसे आपने कहा कि करीबन 85 लाख करोड़ और उसके साथ मिला दें तो पिछले हफ्ते 30,000 करोड़ का और प्रोजेक्ट हुए हैं, तो 85 लाख 30,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट का रिव्यू हुआ है और ये करीबन 3,300 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैं। पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3,300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं, ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है, उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है और ज्यादातर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट के, हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिये एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कोई भी अगर प्रोजेक्ट, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है, उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है, इस पे मुझे सोचना नहीं, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते हैं उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली ये मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं है, देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच, ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है, तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे, वहां भी अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलंब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कम्प्लीट हो जाए, ठीक से होता है ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वार कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
1: जी आप

0: किया था, वहां पर हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा, कॉस्ट ओवररन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कम्प्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये कम्प्लीटली अपोलिटिकल सिस्टम है, इस पे केंद्र में सरकार, राज्य में कौन सरकार है, इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
1: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे
3: अभी आपने सुना प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। पेशे खिदमत है चंद कवालियां, फनकार हैं हाजी असलम साबरी कव्वाल और हमनवा।

0: बाहुजूर सरवरे कौन है, चार मिस्री पेश कर रहा हूं।
1: तेरी हुजूरी में जाने आलम मकाम अर्जो।

0: अंडा में इबोला के सात मुसद्दका मामला सामने आए हैं, नज़दीक मौत हुई है। अलबत्ता कम्युनिटी की सतह पर फैलाव की कोई रिपोर्ट नहीं है। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया है। चार्ज संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे वाइस एडमिरल अजय कोचर को जुलाई 1988 में भारतीय बहरिया में कमीशन मिली थी। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने आरोन ताई और कांग हाई सिंह की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। इनका अगला मुकाबला जनूबी कोरिया की आलमी नंबर एक जोड़ी सियाओ शांग जे और किम वांग हू से होगा। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी मलेशिया के शेन तेंग जी और तोई वाई को हराकर सेमीफाइनल में दाखिल होने में कामयाब रहे। मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को जापान के कोकी वचाम्बे से 19-21, 21-15 और 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की मुहिम क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की एनसीयू के खिलाफ सख्त जद्दोजहद के बावजूद हार पर खत्म हो गई। 2026 की एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के एथलेटिक्स ने ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में कई रिकॉर्ड बनाए। खातीन के 100 मीटर मुकाबले में निपम ने 11.62 सेकेंड की टाइमिंग के साथ कांसे का तमगा जीता। वो चैंपियनशिप के इस मुकाबले में तमगा जीतने वाली 25 साल की भारत की पहली खातून बन गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से खसार एक हफ्ते के लोकर्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए सुनिए जया बिस्वास का सितार पर बजाया राग छायानट।

बातों की समाअत कर रही थी, जिसमें एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एक मजबूत और खुदमुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से हल्फनामा दाखिल करने को कहा और इस मामले की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इसमें कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा टेस्ट के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है, जो कि तकरीबन 92,000 मैट्रिक टन योमिया है। मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है, जबकि 156 अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के लिए पेट्रोल ले जाने वाला तेल टैंकर निसॉस केरोस ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है और वो विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है। तवक्को है कि वो 3 जून तक वहां पहुंच जाएगा। मार्शल जजायर परचम बरदार जहाज 21 मई को शारजा से रवाना हुआ था। ईरान की न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी है कि ईरानी पासदाराने इंकलाब की बहरिया ने जारी कशीदगी के पेश नजर 24 घंटे के अंदर आबनाए हुरमुज के रास्ते 23 तजारती जहाजों को गुजरने के सिलसिले में सहूलतकारी की। सदर ट्रंप की क्यादत में अमरीका ने आबनाए हुरमुज के रास्ते के जरिए समंदर में जहाजों की आजादाना नकल हरकत की जरूरत पर जोर दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है, क्योंकि दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन तक बढ़ाने और आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के मुफाहमतनामे का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के नायब सदर जे डी वेंस ने तस्दीक की है कि मुजाकरात शुरुआती समझौते तक पहुंचने के बेहद करीब हैं, हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आखिरी मंजूरी अभी जेर इल्तवा है। इस दौरान ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और तेहरान लफ्जों के बजाय ठोस कार्रवाई का मुतालिबा करता है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट पीटीएम के कारकुन फरीदुल्ला आफरीदी की मुबैना जबरी गुमशुदगी से मुतालिक एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से संगीन तशवीश का इजहार किए जाने के बाद पाकिस्तान को इंसानी हकूक से मुतालिक अपने रिकॉर्ड के जिम्न में ताजा तनकीद का सामना है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि आफरीदी को पेशावर से 18 मई की शाम को अगवा किया गया था। उनके कुनबे की जानिब से बार बार अपील किए जाने के बावजूद मकामी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। नेजनों ने उनकी गुमशुदगी के बारे में किसी बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया है। आलमी सेहत की तंजीम ने कहा है कि अवामी जमहूरिया कांगो DRC में 223 मुश्तबा अमवात समेत इबोला के 906 मुश्तबा मामलात पाए गए हैं, जिनकी तहकीकात की जा रही है। DRC में इबोला के वायरस का फैलाव जारी है। इसके साथ ही युगांडा में भी ऐसे ही मामलात की रिपोर्ट मिली है। WHO के मुताबिक DRC में इबोला के 125 तस्दीकशुदा मामलात हैं। सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिंकी रेड्डी और चिराग ने अरुण ताई और कान खी शेंग की मलेशियाई जोड़ी को 19-21, 21-17 और 21-13 से शिकस्त दी। उनका अगला मुकाबला आज जनूबी कोरिया की आलमी नंबर एक जोड़ी सियो सेंग जे और किम वॉन हू से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो भी मलेशिया के शेंग ते

0: हुई और तो ईवाई को हराकर सेमीफाइनल में दाखिल होने में कामयाब रही। सुप्रीम कोर्ट ने खातून पहलवान विनेश फोगाट को आज और इस माह की 31 तारीख को होने वाले एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दायर अर्जी के बाद यह फैसला सुनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने 4 सतही सिक्योरिटी के साथ सरहदी इंतजामिया में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से खत्म करना जरूरी है। म्यांमार के सदर आज से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता सिफारती मुजाकरात में पेशरफ्त हुई है। दोनों फरीक मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत को 6 दिन बढ़ाने और अबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने का जायजा ले रहे हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से 71 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DDF रेडियो पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब का एक बजा चाहता है। हमारी तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सुबह 9:30 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब खैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट के।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मित वैता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए

क्षमा फिल्म से ये गीत आइए सुनते हैं। फिल्म क्षमा फिल्म से ये गीत आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुरी की आवाज में।

बच्चों सुन लो बात, बच्चों सुन लो बात, उठे पापा से बड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ। बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात,

सुन लो बात, बूढ़े बाप ने बड़े चाचा पे बढ़ के मिला लो हाथ। तो बच्चों सुन लो बात, बच्चों

दो चीन में तुर से भेज दूँ तुमको चीन में जो बजाऊँ मैं अपनी बीन को चॉकलेट कर दूँ जमीन को ओ बच्चों आहा आहा तुम ही बोल दूँ एक दो चीन में तुर से भेज दूँ तुमको चीन में जो बजाऊँ मैं अपनी बीन को चॉकलेट कर दूँ जमीन को ओ बच्चों सुन लो बात ओ बच्चों सुन लो बात बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से पढ़ के मिला लो हाथ ओ बच्चों सुन लो बात ओ बच्चों सुन लो बात।

अनुराधित श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म बूट पॉलिश से मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज में।

0: इसी के साथ श्रोताओं आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात्रि के 2 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट प्रोजेक्ट।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितवैयता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव R तिलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्रवाई की शुरूआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग क्लाइन 5 दिन की यात्रा पर भारत यात्रा पर बिहार

0: इसी के साथ श्रोताओं आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात के 3 बजने को हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट प्रोजेक्ट के।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ATA के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितवैयता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10-10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग फ्लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग फ्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमा के

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। पेश है प्रोग्राम गजल गीत, और इस प्रोग्राम को लेकर मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां। कबूल कीजिए प्यार भरा आदाब, नमस्कार। साथियों, कहते हैं कि जिंदगी की ये जो घड़ियां होती हैं, इसमें हमारे उन सांसों के बीच में एक अजब सा एक एहसास होता है, जहां तमाम तरह की बातें दिल में उभर कर आती हैं। कभी खुशियों की यादें भरी एक सौगात होती है, तो कभी गमों का एक कारवां सा दिल में एक टीस बनकर उठता है, और फिर याद आती है उस बेदर्द की, उस चाहने वालों की, जिसके लिए आपने तमाम जो है दुनिया की सारी खुशियाँ, सारी ऐशो आराम की चीज़ें सब कुछ न्यौछावर कर दी, सब कुछ लुटा दिया, और कहीं ना कहीं वो आपको नहीं मिला। तो कभी भी इस बात के लिए भी बेसब्र ना हो कर अपना वक्त यूँ ज़ाया करिए, क्योंकि ज़िंदगी में सारे ख्वाब पूरे नहीं होते, और जो ख्वाब पूरे हो जाएं वो ख्वाब नहीं होते, वो होती है सच्चाई, मोहब्बत की सच्चाई, दिल की सच्चाई। कहते हैं ना कि जब भी कभी आप अपने दिल के जज्बात को, अपने खुशियों को, अपने गमों को यूं ही बयान नहीं कर सकते, तो ऐसी ही कई अच्छी जो खूबसूरत गज़लें हम सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एहसासों को धीमे धीमे बयां करती है। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत एहसास को, ये खूबसूरत गज़ल फिल्म बाजार से, आवाज़ लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की।

कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आप कितना भी सोच लीजिए, होना वही है जो खुदा ने चाहा है। तो कभी कभी सारी बातों को खुदा की मर्जी समझकर उनके, कहते हैं ना कि हर चाहत जो है वो पूरी नहीं होती और हर चाहत का जो अंजाम है वो भी खुशनुमा नहीं होता। तो कभी कभी हर ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो हमें ऐसे मिलता है कि वो आगे के लिए हमें ये यकीन दिलाता है कि जो होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है।

बाकी जब दिल बहुत उदास होता है तो कुछ ऐसी ही अर्जी लगती है ऊपर वाले से। कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं, ताकत परवाज रखती है। और जिंदगी के सारे जो फलसफे हैं वो कहीं ना कहीं हमें खुद समझ में आने लगते हैं। और जब बात हो नजरों की तो हमेशा दिल और जज्बात और दिमाग में कुछ ऐसे आप जो है एक कहते हैं कि एक एहसास दिल में उतर आता है जब हम किसी की नज़रों को पढ़ लेते हैं। और नज़रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और बहुत से लोग जो हैं किसी की नज़रों को नहीं पहचान पाते। और ऐसे में जब आप ज़िंदगी के उन फ़लसफ़ों को समझेंगे, ज़िंदगी के में जो भी आपकी उतार चढ़ाव है उसे महसूस करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इसमें भी माहिर हो जाएंगे। आइए सुनते हैं अगली गज़ल।

मिटाए से नहीं मिटते ये यादों के मकान, ठहर गया है जमाना जाने छूटा है कहाँ, चले गए हो मगर आज भी लगता है तुम्हारी खुशबू से महक रहा है सारा समा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गजल गीत और ये खूबसूरत गजल आप सुनने सुनी फिल्म मौसम से।

प्रोग्राम गजल गीत में भी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गजल आवाज तलत अजीज की। आइए सुनते हैं अगली गजल हरिहरन की आवाज में।

गजल गीत के इस प्रोग्राम में आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज में। और ये आखिरी गजल आप सभी के लिए बेहद खास है हमारी ओर से।

के साथ गजल गीत का ये प्रोग्राम यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनूरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम बी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कलाकार हैं TV मनिक नंदन, राग पूर्वी कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टीवी मणिकंदन का गायन राग पूर्वी कल्याणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी लीजिए योग भद्रासन और अश्वत्थासन की। 5:20 पर प्रसारित करेंगे आपके लिए एक देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वर रंजनी का समय रहेगा 5:23। 6:40 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा चिंतन रामचरितमानस। इस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। कार्यक्रम संगीतिका आप सुनेंगे 7:10 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज बलजीत सिंह के गाए कुछ शब्द। गीतों भरी गुड मॉर्निंग फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15। 8:45 पर और 9:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम धरती आकाश। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नौतपा का वैज्ञानिक विश्लेषण, प्रकृति का संतुलन या चेतावनी। ये आप इससे कार्यक्रम में वार्ता सुनेंगे। मिट्टी दी महक इस कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:10 पर। कार्यक्रम है आपकी पसंद। 11:10 पर सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगजीत सिंह रूमा लैला गुरदास मान की गाए कुछ गीत। कार्यक्रम सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। महिला कार्यक्रम घर आंगन का समय रहेगा 12:10। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे 1:10 पर। आज की फिल्म है आरजू और कार्यक्रम एक ही कलाकार का समय रहेगा 2:30। आज कलाकार हैं परेश रावल। कार्यक्रम ब्रज माधुरी का समय रहेगा 3:00 और 3:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे नाटक सलोमी कड़ी। पर सुनिए कार्यक्रम लोक रंजनी और इसके बाद 5:30 पर दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी की प्रस्तुति होगी। ये आकाशवाणी दिल्ली।
1: बोलो जो जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दत्ते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धड़के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धड़के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जे प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचया रहा ते देख तेग फतेह गर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकारा साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे गुना तो पंथ नू विसोरिया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दान खालसा जी नू बगसो हे नमानिया देवान नतानिया देतान न्योटिया दियोट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जियो जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों करह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जियो सरबत साध संगत नू अपने दरों करो सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना सुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवा प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सुख परदे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे

0: महला पहला गो ब्राह्मण को कर लो गोबर कर न जाए तो तीत का तय जब माली तान मलेशा खाए अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुर का पही छोटी ले पखंडा नाम ले जाए तिरंगा महला पहला
1: मानस खाने करे निवास छुरी बगाए तिन गलता तिन घर ब्राह्मण पुर नाद ओ ना पे आवे कोई सा कूड़ी रास कूड़ा वार कूड़ बोल कर है आहार सर्म धर्म का डेरा दूर नान कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ छुरी जगत का साय नील वस्त्र पहर होवे परवान मलेश ताल पूज प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जान देखे चौका कड़ी पार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परे कहो नानक सच ते आई है सच होवे ता सच पाई है बड़ चित्त अंदर सब को

0: जेकर सूतक मनिए सत्य सूतक हो, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवे रसोए, नानक सूतक एवना उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना परत्र पर धन रूप, कनी सूतक कन पै लायत बारीखा, नानक हंसा आदमी बधे जम पुर जाहे महला पहला। सबो

पहले सुचा भोए सुचे बैठा सुचे अगे रखे कोई ना पटे जाए सुचा के जे व्या लगा पढ़न सलोक होती जाए सकया किसे लगा दोक अन्न देवता पानी देवता बसंत देवता लूंड

राखी है जित जा मेरा जान, सो क्यों मंदा राखी है जित जा मेरा जान। पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोय, नानक पंडे बारा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा साला ही है पागर तीचा, नानक ते मुख उजले।